0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आज शक संवत 1946 के आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तदनुसार 12 जुलाई 2026 आज दिन रविवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: जीवन सौरभ एक बुजुर्ग पिता के 3 जवान बेटे थे। जब उस पिता को लगा कि अब उसका अंतिम समय आ गया है, तो वह अपने मरने से पहले अपने 3 बेटों को अपनी संपत्ति में से बांटना चाहता था। लेकिन उसका पुश्तैनी घर यानी उसके पूर्वजों की धरोहर पुराना घर वह उस बेटे को देना चाहता था जो बहुत बुद्धिमान हो। इसलिए उसने एक दिन 3 को बुलाकर 1,000 रुपये देकर कहा, तुम 3 में से इस 1,000 रुपये से अपने अपने खाली कमरों को पूरी तरह से भर दो। जो भी अपने रूम को पूरी तरह से भर देगा उसे ये पुश्तैनी घर दे दिया जाएगा। ऐसा करने के लिए उन्हें केवल 1 घंटा दिया गया था। 3 बेटे अपने अपने कमरे में जाकर सोचने लगे। फिर बड़े बेटे ने बाहर जाकर एक कचरे वाली गाड़ी को 1,000 रुपये दिए और उस गाड़ी से आसपास के तमाम पेड़ों की पत्तियों से कमरा भरने लगा। वो अपना कमरा आधा ही भर पाया था कि पूरा 1 घंटा बीत गया और वह रुक गया। मंजला दूसरे नंबर का बेटा भी इसी प्रकार अपने रूम को बाहर की मिट्टी और रेत से भरने लगा। बड़ी मेहनत करने के बाद वह 1/4 कमरा ही मिट्टी से भर पाया था और थक गया और समय भी पूरा हो गया था। बुजुर्ग पिता ये सब बड़े गौर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि छोटा बेटा तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। इस पर बड़े भाई और बीच वाले भाई के साथ पिताजी सबसे छोटे बेटे के कमरे के दरवाजे को खटखटाया तो क्या देखा, उस कमरे के बीचों बीच छोटे बेटे ने एक मोमबत्ती जला रखी थी जिससे पूरा कमरा रोशन हो रहा था। तब छोटे बेटे ने कहा, पिताजी क्या इस कमरे में कोई भी ऐसा कोना है जो रोशनी से नहीं भरा हो? पिता को अपने छोटे बेटे की बुद्धिमानी देखकर बड़ा गर्व हुआ और खुशी हुई और उन्होंने वो पुश्तैनी मकान उसी के नाम कर दिया। तो श्रोताओं, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए ये जीवन एक वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वो धन्य है। बुद्धिमानी से जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जीवन सौरभ
0: नवे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। और अब जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक ऋचाओं पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। सुबह 8 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम। आज स्वाधीनता संग्राम सेनानी भगवती चरण वोहरा के जीवन पर केंद्रित होगा। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम बाल सभा, जिसमें आज का विषय है भाषा की मर्यादा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी और उनके साथी बाल कलाकार। सुबह 9 बजे टेक गुरु कार्यक्रम में आज का विषय होगा AI। इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ अनुग्रह नगाइच से रत्नेश सोने की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम करगिल युद्ध पर आधारित कार्यक्रम का तृतीय भाग सुनेंगे। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले। सुबह 10 बजे कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम भारत डायनामिक्स लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम को स्वर दिया है दीपक नेमा और भगवती सक्सेना ने। सुबह 10:30 पर कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा आज की कड़ी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन पर केंद्रित है। सुबह 11:00 कार्यक्रम परिक्रमा, जिसके अंतर्गत विगत दिवस भोपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही आप सुन सकते हैं देशभक्ति गीत। सुबह 11:30 पर कार्यक्रम काव्य गुंजन, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम का 6वां भाग प्रसारित होगा। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं विश्वे देवा, वाक आप, धूम सोम, अग्नि सूर्य, वायु सरस्वती, साध्य पर्जन्य अग्नि और सरस्वान। छंद है त्रिष्टुप, जगति, प्रस्तार पंक्ति और अनुष्टुप।
1: अपांग प्रांगेति स्वधया गृभीतो मर्त्यो मर्त्येना सयोनिहि ता शश्वन्ता विशूचीना वियन्ता न्यन्यम चिक्युर्न नी चिक्युरन्यम। यह आत्मा अविनाशी होने पर भी मरण धर्मा शरीर के साथ आबद्ध होने से विविध योनियों में जाती है। यह अपनी धारण क्षमता से ही उन शरीरों में आती और शरीरों से पृथक होती रहती है। ये दोनों शरीर और आत्मा शाश्वत एवं गतिशील होते हुए विपरीत गतियों से युक्त हैं। लोग इनमें से एक शरीर को तो जानते हैं पर दूसरे आत्मा को नहीं समझते। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन अस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुहु यस्तन्न वेद किम् ऋचा करिष्यति य इत्तद्वि दुस्त इमे समासते। अविनाशी ऋचाएं परम व्योम में भरी हुई हैं, उनमें संपूर्ण देव शक्तियों का वास है। जो इस तथ्य को नहीं जानते उनके लिए ऋचा क्या करेगी, और जो इस तथ्य को जानते हैं वे इस ऋचा का सदुपयोग कर लेते हैं। सूय वसाद भगवती ही भूया अथो वयम भगवन्तः स्याम अद्धि तृणमघन्ये विश्वदानीम पिब शुद्ध मुदकमाचरन्ती। हे अवधनीय गौमाता, आप श्रेष्ठ पौष्टिक घास ग्रहण करती हुई सौभाग्यशालिनी हो। आपके साथ हम भी सौभाग्यशाली हों। आप शुद्ध घास खाकर शुद्ध जल पीकर सर्वत्र विचरण करें। गौरीर मिमाय सलिलानी तक्षत्येक पदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन। गौ अर्थात वाणी निश्चित थी, फिर से कर रहे हैं, गौ अर्थात वाणी निश्चित ही शब्द करती हुई जलों रसों को हिलाती तरंगित करती है। वह गौ अर्थात काव्यमयी वाणी एक दो चार आठ अथवा नौ पदों वाले छंदों में विभाजित होती हुई सहस्र अक्षरों से युक्त होकर व्यापक आकाश में संव्याप्त हो जाती है। तस्या समुद्रा अधिविक्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ततः क्षरत्यक्षरम् तद्विश्व मुपजीवति। उन सूर्य रश्मियों से जल वृष्टि द्वारा जल प्रवाह बहते हैं, जिस जल वृष्टि से संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न होती हैं। इससे संपूर्ण विश्व को जीवन प्राण मिलता है। शकमयम धूममाराद पश्यम विषुवता पर एनावरेण उक्षाणम प्रश्नीमपचंत वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। दूर से हमने धूम्र को देखा, चतुर्दिक व्याप्त धुएं के मध्य अग्नि को देखा, जिसमें प्रत्येक उत्तम कार्यों के पूर्व ऋत्विगण शक्तिदायी सोमरस को पकाते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन।
2: अभी आप सुन रहे थे वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो तीन बातें हमेशा ध्यान रखें। पहला, आनंद में किसी को वचन ना दे। दूसरा, गुस्से में किसी को उत्तर देने से बचे। और तीसरी बात, मुश्किल के समय धैर्य बनाए रखे। जो लोग इन तीन बातों का ध्यान रखते हैं उनकी कई समस्याएं स्वतः दूर हो जाती है और जीवन में शांति बनी रहती है। सफल होने के लिए सिर्फ सपने देखने से ही कुछ हासिल नहीं होता, असफलता से सीख कर

साहसी व्यक्ति में क्षमा करने का गुण होता है। विद्वान व्यक्ति में दूसरों की गलतियां नजरअंदाज करने का गुण होता है, जबकि कमजोर व्यक्ति बदला लेने की भावना रखते हैं।

हमें सिर्फ भलाई के काम करते हुए ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। सारी बुराइयां ठीक उसी तरह दूर हो जाएंगी जैसे बहते हुए पानी में कचरा किनारे आ जाता है।

जब तक समस्याओं के हल नहीं खोजेंगे तब तक हल मिलेगा ही नहीं। लक्ष्य कभी भी बिना काम के पूरा नहीं हो सकता। हर स्थिति में काम करना और आगे बढ़ते रहना जरूरी है।

जो व्यक्ति मुश्किलों से दुखी नहीं होता, सावधानी के साथ अपने काम करता है और दुखों को सकारात्मकता के साथ सहन कर लेता है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता।

व्यक्ति कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन कर्म के फल भोगने में नहीं। जैसे कर्म किए हैं वैसे फल मिलते ही मिलते हैं।

जो लोग अपने समय की कदर नहीं करते, वे दूसरों के समय की भी कदर नहीं करेंगे। समय बर्बाद करने वाले लोगों का जीवन भी बर्बाद हो सकता है। आलस एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से अच्छे अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं।

कुछ लोग उन चीजों के लिए दुखी होते हैं जो उनके पास नहीं है या उनकी नहीं है। ऐसी स्थिति में तनाव बना रहता है। जो चीज हमारी नहीं है उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी भगवती चरण वोहरा के जीवन पर केंद्रित है।

0: स्वर स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
0: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ
1: शौर्य स्मारक भोपाल समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे बुधवार अवकाश।

हमें ऐसे लोग चाहिए जो आशा की अनुपस्थिति में भी भय और झिझक के बिना युद्ध जारी रख सकें। हमें ऐसे लोग चाहिए जो आदर सम्मान की आशा रखे बिना उस मृत्यु के वरण को तैयार हों जिसके लिए न कोई आंसू बहे और न ही कोई स्मारक बने। भारतीय स्वाधीनता के महायज्ञ में अपने जीवन की आहुति देने के लिए देश के युवाओं का इन शब्दों में आह्वान करने वाले महान क्रांतिकारी थे भगवती चरण वोहरा। भारत की स्वाधीनता के लिए बिना किसी अपेक्षा के बस क्रांति कर्म किए जाना जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। भगवती चरण वोहरा सशस्त्र क्रांति के अगुआ थे। बम बनाने में उन्हें महारत हासिल थी। वो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के सदस्य थे और सरदार भगत सिंह के साथ मिलकर इस दल में क्रांति गतिविधियों की रणनीति बनाने तथा दल को सैद्धांतिक दिशा प्रदान करने में उनकी प्रमुख भूमिका होती थी। क्रांतिकारियों के बीच प्रसिद्ध दुर्गा भाभी उनकी सहधर्मिणी थीं। भगवती चरण वोहरा दल में एक लेखक, विचारक, संगठक, सिद्धांतकार और प्रचारक की भूमिका में थे। कई क्रांति गतिविधियों में अभियुक्त होने के बावजूद न तो वो कभी गिरफ्तार हुए और न ही उन्हें कभी सजा सुनाई गई। अपराजेय, आदर्श निष्ठा, प्रतिबद्धता, साहस और मनोयोग से वो आखिरी सांस तक भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। भगवती चरण वोहरा का जन्म 15 नवंबर 1903 को लाहौर में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवचरण वोहरा था जो रेलवे के एक उच्च अधिकारी थे। बाद में वो आगरा से लाहौर चले गए थे। पिता आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध थे। ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी के कारण उन्हें राय बहादुर की उपाधि भी प्रदान की गई थी। ऐसे पारिवारिक वातावरण के बावजूद भगवती चरण वोहरा के मन में आजादी की लगन थी। उनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई। मात्र 14 वर्ष की आयु में भगवती चरण वोहरा का विवाह इलाहाबाद की 11 वर्षीय दुर्गावती देवी के साथ संपन्न हुआ। वो अपने पति के साथ सदा कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहीं और आगे चलकर दुर्गा भाभी के नाम से विख्यात हुईं। भगवती चरण वोहरा अपने पिता के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत थे। उन पर 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। इसीलिए रूसी क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर भगवती चरण वोहरा ने एक अध्ययन मंडली का गठन किया था जिसके मूल में भारत को पराधीनता से मुक्त करने का विचार था। इस अध्ययन मंडली में नियमित रूप से शामिल होने वालों में भगत सिंह, सुखदेव आदि भी थे। आगे चलकर इन्हीं साथियों ने मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन भी किया था। अभी जबकि वो कॉलेज में ही अध्ययनरत थे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और युवाओं का आह्वान किया। गांधी जी के आह्वान पर भगवती चरण वोहरा अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े।

भगवती चरण वोहरा एक अत्यंत विचारशील युवा थे। वैश्विक परिदृश्य में घटित क्रांतियों पर भी उनकी पैनी दृष्टि थी। वो भारत को गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कृषि संकट और शोषणकारी सामाजिक परिस्थितियों से मुक्ति दिलाना चाहते थे। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, इससे तमाम युवाओं की तरह भगवती चरण वोहरा भी निराश हुए। आंदोलन से वापस आने के बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर से पढ़ाई पुनः जारी रखी। यहीं उन्होंने राष्ट्र की परतंत्रता और उससे मुक्ति के प्रश्न पर स्टडी सर्कल चलाना शुरू किया, जिसमें सरदार भगत सिंह और सुखदेव भी शामिल थे। भगवती चरण वोहरा ने लाहौर नेशनल कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और भगत सिंह के साथ नौजवान भारत सभा के गठन और कार्य को आगे बढ़ाया। इस सभा के महासचिव के पद पर थे सरदार भगत सिंह और प्रचार सचिव थे भगवती चरण वोहरा। अप्रैल 1928 में नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। भगत सिंह और अन्य साथियों के सलाह मशवरे से इस मसौदे को तैयार करने का काम भगवती चरण वोहरा ने ही किया था। नौजवान भारत सभा के उत्कर्ष में भगत सिंह के साथ भगवती चरण वोहरा की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सरदार भगत सिंह के साथ वही संगठन के प्रमुख सिद्धांतकार थे। अपनी पत्नी दुर्गावती देवी को भी उन्होंने पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। खादी के वस्त्र धारण कर दुर्गावती ने पढ़ाई जारी रखी और समय आने पर प्रभाकर की परीक्षा उत्तीर्ण की। भगवती चरण वोहरा के मन में क्रांतिकारियों के प्रति असीम श्रद्धा थी। यही कारण है कि जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उन्होंने महान क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल के सम्मान में अपने बेटे का नाम शचीन्द्रनाथ ही रखा था। भगवती चरण वोहरा वैचारिक रूप से बेहद परिपक्व थे। वो अपने समय में दल के प्रमुख विचारक और लेखक रहे थे। क्रांति कर्म में हर वैचारिक लेखन में भगत सिंह के साथ उनकी जुगलबंदी थी। एक लिखता तो दूसरा उसे ठीक करता। 1 जनवरी 1925 को हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ ने द रिवॉल्यूशनरी नाम से एक 4 पेज का घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपनी विचारधारा और उद्देश्य की उद्घोषणा की थी। इस पत्र का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के समक्ष संगठन की नीतियों और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनके विचारों को स्पष्ट करना था। इस पत्र में संगठन की हिंसक गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हथियारों का उपयोग करने की भी बात कही थी। इसे हिंदुस्तान के सभी प्रमुख स्थानों पर वितरित किया गया। इसे वितरित करने की प्रमुख जिम्मेदारी भगवती चरण वोहरा पर ही थी। इस कार्य को उन्होंने अत्यंत कुशलता के साथ संपन्न किया। एक तरह से ये पत्र अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन करने की नीतियों और तरीकों पर एक प्रतिक्रिया थी। साथ ही इसमें युवाओं का आह्वान किया गया था कि वो भारत की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे इस महासमर में शामिल हों।

आगे चलकर सरदार भगत सिंह के सुझाव पर संगठन का नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ कर दिया गया। इसी संघ ने सांडर्स वध और असेंबली बम कांड जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण क्रांति घटनाओं को अंजाम दिया था। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जब सरदार भगत सिंह और राजगुरु ने सांडर्स का वध किया था, तब इस घटना के 3 दिन बाद पुलिस से बचते हुए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु भगवती चरण वोहरा के घर पहुंचे थे। उस समय भगवती चरण वोहरा भूमिगत थे, लेकिन घर पर दुर्गा भाभी थी। लाहौर से निकलने के लिए भगत सिंह ने अपनी वेशभूषा एक अफसर जैसी कर ली। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह की पत्नी का रूप लिया और राजगुरु ने अर्दली का वेश बनाया। भगत सिंह ने अपना नाम रंजीत रखा, दुर्गा भाभी का नाम सुजाता रखा गया। लाहौर स्टेशन पर भगत सिंह की तलाश में 500 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन उन सबको चकमा देते हुए दुर्गा भाभी के सहयोग से भगत सिंह लाहौर से बाहर निकल आए। असेंबली बमकांड के बाद जब सरदार भगत सिंह जेल में थे, तब भगवती चरण वोहरा और यशपाल ने दिल्ली आगरा रेल लाइन पर भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को ले जा रही विशेष ट्रेन को बम से उड़ाने की योजना बनाई। लंबी तैयारी के बाद ये हमला किया गया। बम फटा और ट्रेन के डिब्बे के परखच्चे उड़ गए। ट्रेन में सवार एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, लेकिन इरविन बच गया। हालांकि गांधी जी ने इस घटना की निंदा की थी और यंग इंडिया में बम की पूजा शीर्षक से लेख लिखा था। इस पर भगवती चरण वोहरा ने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की सलाह पर गांधी जी के लेख के जवाब में बम का दर्शन इस शीर्षक से एक लेख लिखा। सरदार भगत सिंह ने जेल में इस लेख को अंतिम रूप दिया था। इस लेख में इरविन पर किए गए हमले के पक्ष में तर्क रखे गए तथा इसे राष्ट्रहित में बताया गया, जिसकी व्यापक चर्चा हुई। दल की योजना बनी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल से कोर्ट ले जाते समय छुड़ा लिया जाए। ब्रिटिश शासन की कड़ी सुरक्षा को चकमा देने के लिए शक्तिशाली बम की आवश्यकता थी। भगवती चरण वोहरा बम बनाने में सिद्धहस्त थे। वो अपने साथियों के साथ लाहौर की कश्मीर बिल्डिंग के एक किराए के कमरे में बम बनाने का कार्य किया करते थे। कुछ ही दिनों में शक्तिशाली बम बना लिए गए, लेकिन बम मौके पर धोखा न दे इसलिए तय हुआ कि इसका एक परीक्षण किया जाए। 28 मई 1930 को परीक्षण के लिए क्रांतिकारी रावी नदी के किनारे पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से बम भगवती चरण वोहरा के हाथ में ही फट गया। उनकी कलाई के आगे का पूरा हाथ उड़ गया। पेट में हुए बड़े घाव से आंतें बाहर आ गईं और वो ये कहते हुए शहीद हो गए कि ये नामुराद मौत 2 दिन और टल जाती तो इसका क्या बिगड़ जाता। उनका आशय यही था कि तब वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को छुड़ा लेते। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी भगवती चरण वोहरा के जीवन पर केंद्रित थी।
0: नमस्कार आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
2: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बच्चों के मनपसंद इस कार्यक्रम में आज का विषय है भाषा की मर्यादा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं मनीषा चतुर्वेदी और उनके साथ है उनके साथी बाल कलाकार।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है भाषा की मर्यादा।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं बातों की बात की। आप सोच रहे होंगे ना ये कौन सी बात हुई, लेकिन यही बात है बच्चों कि हम बात कैसे करते हैं, बात करने का हमारा तरीका क्या है, बात करते करते कहीं हम ये तो नहीं भूल जाते कि हम इतना कैजुअल हो गए हैं कि किसी से कुछ भी बोले दे रहे हैं, क्या हम अपनी भाषा में बुरे शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या हमने अपनी बोली में पूरी मर्यादा रखी हुई है, या हम कुछ भी कहे जा रहे हैं। तो फिर अब हम आपको आज इसी बारे में बताने वाले हैं कि भाषा की मर्यादा क्या होती है ना। एक बहुत अच्छा दोहा है जो मुझे बड़ा पसंद भी है और वो दोहा है रहमन जिहवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूत खात कपाल। है ना, कितनी बड़ी बात है। रहीम जी कहते हैं कि जी बड़ी पागल है, या ये कह लीजिए कि बावली है, जो बिना सोचे समझे स्वर्ग और पाताल तक की उल्टी सीधी बातें कह जाती है। और खास बात ये है कि ये जीप तो बिना विचारे बोलकर तुरंत मुंह के अंदर छुपकर बैठ जाती है, लेकिन इसके द्वारा कहे गए जो कड़वे या गलत शब्द हैं उनके कारण मार किसको पड़ती है, हमारे सिर को। है ना, मतलब कहे कोई और भोगे कोई, कह रही है जीप भोग रहा है सिर, तो फिर तो गलत बात हो गई ना बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि ये जीभ जो है इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करिए। एक और बात है, जो आपके शब्दों के बाण होते हैं ना वो ज्यादा तेजी से घायल करते हैं किसी और चीज से, तो इसलिए हमें शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एक और बात कहते हैं वो ये कि कही गई बात कभी वापस नहीं लौटती। मैं आपको इतनी सारी छोटी छोटी कहावतें, इतनी सारी बातें आज आपको बता दूंगी ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए कि हमें जब भी बात करनी है बहुत सोच समझ के करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये बात करने के लिए मुझे कहाँ से दिमाग में आया, तो कहानी बड़ी सिंपल है। मैं आप जैसे ही कुछ बच्चे होते हैं जो कहीं खेल रहे होते हैं, कभी मंदिर के मैदान में, कभी कॉलोनी के पार्क में, कभी किसी के मोहल्ले में, अगर मैं जाती हूँ किसी से मिलने तो वहाँ जो बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं बच्चों से बहुत मिलती हूँ ये आपको पता है, तो बस जब मुझे ऐसे बच्चे दिख जाते हैं और वो कुछ ऐसी बात कह देते हैं तो मेरे दिमाग में ये बात आ जाती है कि मुझे बाल सभा में आप लोगों से ये बात करनी है। तो हुआ ये कि मैं अपनी कॉलोनी के पार्क में बैठी हुई थी, दो बच्चे खेल रहे थे, हालांकि टीम उनकी बहुत बड़ी थी, 10-12 बच्चे खेल रहे थे, लेकिन दो बच्चों को मैंने देखा जो खेलते खेलते किसी बात पे झगड़ पड़े। तो ठीक है, बच्चों में झगड़ा होता ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो झगड़े बहुत जल्दी से सुलझ भी जाते हैं क्योंकि बच्चे बड़े भोले भाले भी होते हैं, है ना। आप सब आज लड़े कल दोस्ती, तो ये चीज़ बहुत अच्छी भी है। अब लेकिन क्या हुआ, उसमें से एक बच्चा बोला कि तुम पागल हो क्या, तो दूसरा बच्चा बोला कि तुमने मुझे पागल क्यों कहा। अब पहले बच्चे के पास कोई जवाब ही नहीं था कि पागल क्यों कहा, उसने कहा कह दिया तो कह दिया। वो बच्चा जिद पे अड़ गया, उसने खेलने से मना कर दिया ये कह के कि नहीं ऐसे कैसे कह दिया तो कह दिया। मेरी माँ कहती हैं कि किसी को भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी जो गलत हो। मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, तुम मुझसे लड़ रहे हो, पर मैंने तुमसे ऐसी कोई बात नहीं कही जो तुमको बुरी लगे, तुमने मुझे पागल क्यों कहा। और आप भी जानते हैं बच्चों की कितनी बार हम इस शब्द का दिन भर में इस्तेमाल कर देते हैं, कभी स्कूल में, कभी लंच टाइम में, कभी शाम को बच्चों के साथ खेलते वक्त। अब आप सोचिए कि क्या ये कहना सही है? मतलब दोनों ही बच्चे हैं, वो बच्चा कह रहा है अरे कह दिया तो कह दिया, चल मैं तेरी दोस्ती हूँ। उसने कहा नहीं, पहले आप ये बोलो कि आज के बाद इस भाषा का, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब आप देखिए कि वो बच्चा अपनी जगह कितना सही है। वो न सिर्फ आपकी दोस्ती के लालच में वो किसी गलत बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है दोस्ती, सारी चीजें, खेलना सब साइड में है, पहले ये बताओ कि तुमने जो आज बात कही है वो कल कहोगे। वो कह रहा है अरे यार ये तो मुंह से निकल जाता है। अब देखिए दूसरी बात में ही क्या निकल गया, यार। ठीक है, इससे पता चलता है कि आप में भाषा की मर्यादा नहीं है। फिर उस बच्चे ने टोक दिया कि देखो अभी तुमसे पागल कहने को रोका, अभी तुम बातों बातों में यार पे आ गए। तो बोले कि नहीं, बात अच्छे से करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी तुमसे दोस्ती हो जाऊंगा, मैं अभी तुमसे गले मिल लूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर अंत में बच्चों मुझे उस लड़ाई के बीच में पड़ना पड़ा। मैंने फिर दोनों बच्चे को समझाया, मैंने कहा ऐसे नहीं करते हैं, आप दोनों एक दूसरे की दोस्ती हो जाओ। लेकिन वो बच्चा जो कह रहा है कि आज के बाद इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, तो नहीं करना। तो वो बच्चा जानते हैं मुझसे क्या बोला? वो बच्चा मुझसे बोला, आंटी मैंने कोई मारा थोड़ी है जो ये इतना नाराज हो रहा है। अब आप सोचिए कि भाषा की, बोली की मर्यादा उस बच्चे के लिए मायने ही नहीं रखती जिसने ये कहा कि मैंने तुमको मारा थोड़ी है जो तुम इतना बुरा मान रहे हो। ये सब तो चलता है। नहीं चलता बच्चों, नहीं चलता, बल्कि मैं ये कहूंगी कि नहीं चलना चाहिए। मेरे संगत में जो जो बच्चे आते हैं, मैं हर एक को एक ही बात सिखाती हूँ कि सबसे पहले आपका इम्प्रेशन होता है आप खुद, उसके बाद जैसे ही आप अपने शब्दों से कुछ अच्छी बात बोलते हो आपका इम्प्रेशन दोगुना हो जाता है, और जैसे ही आपने कुछ खराब बात की आपका इम्प्रेशन आधा रह जाता है। समझ रहे हैं आप बात? अगर आपको एक प्रभावशाली बच्चा बनना है, चाहे वो क्लास हो, स्कूल हो, आपका कोई स्कूल का ग्राउंड हो, या फिर कोई ऐसी प्रतियोगिता हो, अगर आप बात बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना बच्चों, तो आपका प्रभाव दोगुना हो जाएगा। तो बच्चा बोला कि आंटी आप इतनी देर से मुझे समझाए जा रही हैं, आप इसे क्यों नहीं समझा रही हैं? मैंने कहा बेटा समझा तो मैं उसको भी रही हूँ, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि तुम्हें दोबारा गलती नहीं करनी है। तो बस ना तुम ये गलती करोगे ना बात बिगड़ेगी, क्योंकि तुम अगर ये कह रहे हो कि मैंने मारा थोड़ी, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात मारना है, उसके पहले की कोई भी गलतियां तुम्हारे लिए गलतियां हैं ही नहीं, है ना। तब उसको समझ में आया कि शायद मैं कुछ गलत बोल गया हूँ। तब उसने कहा सॉरी, तब उसने उस बच्चे से भी सॉरी कहा, और उन दोनों बच्चों की दोस्ती हो गई। तो चलिए भाई, हमारी तो बात यहाँ शुरू हो गई है कि हमने बच्चों को समझाया, बच्चे मान गए। लेकिन आज का ये जो विषय है, आपको पता है ना, ये आपकी किताब में भी बहुत बार आता होगा, है ना, बहुत सारी जब आप हिंदी की कहानियाँ पढ़ते हैं उसमें भी ये बात आती है। इनफैक्ट मैंने आपको एक बार तोते की कहानी सुनाई थी इसी बाल सभा में, वो भी इसी बात पर थी कि एक तोता राजा को बहुत प्रिय था, याद आ गई होगी आपको सुनते सुनते ना, और एक तोता राजा को बिल्कुल अप्रिय था। दोनों में अंतर ये था, दिखने में दोनों एक जैसे थे, पर दोनों तोते जो थे उनकी भाषा में बहुत अंतर था। एक बहुत मीठा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करता था, और वहीं दूसरा बहुत गंदा, बहुत तेज, बहुत चिल्लाकर, बहुत चीखकर, और बहुत एनोइंग था। तो अब आप सोचिए बच्चों कि ये सब चीजें कितना महत्व रखती हैं हमारे जीवन में। हाँ, अभी मैं एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ आपको। इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने, और ये कविता आपको समझ में आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका छोटा छोटा सा जो अर्थ है वो हमारी बात को और बल देता है। तो कविता यहां से शुरू होती है कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशासी। इस बात का मतलब समझे आप कि भले ये शक्ति विज्ञान में है जिससे अमावस की रात भी पूर्णिमा जैसी बन जाती है, लेकिन विश्व पर आज क्यों दिन में ही अमावस जैसा अंधेरा छा जाता है। कितना बड़ा प्रश्न कर रहे हैं कवि। आगे लिखते हैं, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। कितनी सुंदर बात है। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। अब अगर हम अपनी बात को इस बात से करेंगे तो ये मैं बाद में समझाऊंगी, लेकिन तिमिर का मतलब बच्चों अंधेरा होता है। और जो दीप स्नेह के दीप की बात जलाने की कर रहे हैं कवि, वो यही है कि भले ही हम साइंस ने विज्ञान ने जो बल्ब जला दिए हैं, जितना आविष्कार हुए हैं, वो बल्ब जो जल रहे हैं अगर हम उन्हें बुझा दें, तो हमें जो विद्युत के बल्ब हैं उन्हें बुझाकर असली बल्ब यानी हमारे भीतर की असली रोशनी को, स्नेह की रोशनी को प्रकाशित करना है, प्रकाशमान बनाना है संसार को, है ना। बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा, मतलब जो इलेक्ट्रिकल लाइट हैं उनसे आपको असली रास्ता असली पथ नहीं मिलेगा, बल्कि असली पथ आपको किससे मिलेगा, उस दिए से जो स्नेह का दीपक है। जब किसी अनजान आदमी से मुस्कुराकर हम गुड मॉर्निंग कहते हैं या नमस्ते कहते हैं या प्रणाम कहते हैं, तब स्नेह का दीपक दोनों तरफ चलता है, है ना। आगे कवि कहते हैं कि मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वो, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। आगे लिखते हैं कि दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही और चलती रहेगी, जली जो प्रथम बार लौ दीप की स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। कितनी अच्छी बात है ना, मतलब एक दीपक भी अगर रह गया स्नेह का प्रेम का, तो आप यकीन करिए कि जो रात है उससे सवेरा वापस लौटेगा, मतलब अंधेरे की रात स्नेह के दीपकों से काली रात खत्म हो जाती है, और जो स्नेह का सूर्य है, स्नेह का दीप है, उससे सारा तिमिर सारा अंधकार भाग जाता है। अब आप ये देखिए कि इस तरह की कविताएं, इस तरीके की कहानियां जो हिंदी साहित्य में हमारे पास बहुत हम लोग समृद्ध हैं, अगर हम पढ़ें ना बच्चों तो हमारे शब्द भी बहुत अच्छे होते हैं। अब अगर कभी आप सोच के देखिए कि अभी आपने ये कविता सुनी है ना, अगर आप ये कविता में से दो शब्द बहुत अच्छे चुनना हो आपको, तो आप क्या चुनेंगे? कभी आप अपने घर में तिमिर का इस्तेमाल करके देखिए, कितना अच्छा लगेगा। आपके घर में सब अचानक चौंक जाएंगे कि अरे वाह, बच्चे ने कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, है ना। अब जैसे उन्होंने कहा कि भले शक्ति विज्ञान में है निहित वो, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, कितनी अच्छी बात है कि विज्ञान में ही शक्ति है जिससे हम अंधेरी रात में भी बल्ब जलाकर उजेला कर देते हैं, मतलब उजेले को वो पूर्णिमा से बता रहे हैं और अंधेरे को अमावस से। तो कभी कभी अच्छी कविताएं, अच्छा साहित्य भी हमारी भाषा को ठीक करने में बहुत मदद करता है। अब लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार मर्यादा शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसका अर्थ क्या है? बच्चों मर्यादा का अर्थ सम्मान होता है, संयम होता है और शालीनता होता है। जब हम किसी से विनम्रता से बात करते हैं, उसकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए बात करते हैं और ऐसे शब्द चुनते हैं जो किसी को चोट ना पहुंचाए, बस वही भाषा की मर्यादा कहलाती है ना। वो कहते हैं ना कि मीठे बोल अमृत समान और कटु वचन तीर और जहर के समान होते हैं, है ना। एक बच्चा कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन उसकी भाषा अच्छी नहीं है तो लोग क्या करते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं। इसके साथ मत खेलना, आपने देखा होगा ना कई बार मम्मियाँ निकलती हैं, वो कहती हैं देखो उसके साथ बिल्कुल नहीं खेलोगे, वो बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है और तुम भी वैसे ही बोलने लगोगे। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि संगत का असर पड़ता है और बहुत तेजी से पड़ता है। आपने गौर किया होगा कि छोटे बच्चे वही बोलते हैं जो वो घर में सुनते हैं। यदि घर में धन्यवाद, कृपया, क्षमा कर दीजिए जैसे शब्द सुनाई देंगे तो बच्चा वो सीखेगा, और यदि घर में हर समय ऊंची आवाज, क्या कर रहे हो, सुनते क्यों नहीं हो, इधर आओ, यहां बैठो, अगर ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होगा ना बच्चों से, तो बच्चे भी वही बात करेंगे। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, इतना एक्सपोजर आप लोगों के लिए बच्चों अच्छा नहीं है। हम जो कार्टून देख रहे हैं आज, जो वीडियो देख रहे हैं, जो रील्स देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, सब में आप देखिएगा कि भाषा की मर्यादा धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। मतलब कई बार मैंने देखा है कि आजकल बच्चे चल भग जा तू इसको बहुत आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं। हट यहाँ से, सुना है ये? धीरे धीरे बच्चों को इसमें मज़ा नजर आने लगता है। हाँ, वो इसको अपनी भाषा का हिस्सा ही बना लेते हैं। मैं आपसे अगर ये कहूँ कि कैसे हैं आप, तो कैसा लगेगा आपको? और मैं ये कहूँ और बता सब ठीक चल रहा है, कैसा लगेगा आपको? कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है? पहला वाला ना, क्योंकि उसमें आपके लिए भी एक सम्मान है। आप उम्र में छोटे हो लेकिन फिर भी मैं आपका सम्मान कर रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ आप ठीक हो ना, घर से कुछ खाकर आए हो। अब यहाँ पर कोई मैं पूछ लूँ तो ठीक है, सब ठीक चल रहा है, भूखा वूखा तो नहीं है? दोनों बातें एक हैं, ठीक, लेकिन क्या है, दोनों बातों में सबसे बड़ा अंतर है लहजे का, सबसे बड़ा अंतर है भाषा की मर्यादा का। और बच्चों ये तो हमने सीखना होगा क्योंकि हमें तो बहुत आगे जाना है ना। कवि भी कह रहे हैं ना, अभी जो कविता सुनाई उसमें, कि युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। हवा को पवन कहते हैं। उसने कई बार ऐसे खूबसूरत स्नेह के दीप बुझा दिए हैं, लेकिन तुमको क्या करना है, बार बार स्नेह का दीपक जलाना है। और जो मैंने आपसे कहा उसका भी ख्याल रखना है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो फिर आपको और ध्यान से भाषा का इस्तेमाल करना है। एक बार मैं एक घर में गई थी, वहाँ पर दादी बार बार कह रही थी कि बेटा बेटा हमारा सीरियल लगा दो, और बच्चा लगातार एक ही बात कह रहा था, दादी चुप करो यार, बहुत बोलती हो आप, नहीं लगा रहा मैं आपका। जो माता पिता थे उन्हें क्या लग रहा था, बच्चा लाड़ में बोल रहा है ना, कि ठीक है मैंने जब बोला ये बोल कैसे रहा है, तो जानते हैं उनके उस बच्चे के माता पिता ने मुझसे क्या कहा, अरे ये और उसकी दादी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनमें तो ये सब पूरे दिन चलता है, हम तो यहाँ बैठ के मज़े लेते हैं। ये बात हो सकता है कि किसी को अच्छी लगे, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, है ना। अगर दादी दोस्त हैं तब भी, दादी दादी तो पहले रहेंगी ना, दोस्त तो बाद में बनेंगी ना। दादी की उम्र, दादी का इतना लंबा अनुभव, वो सब इस भाषा के लायक है क्या? चुप रहो दादी, बहुत बोलती हो आप, इसके लायक हैं दादी? ना, बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। और आपको किसी से भी, मैं तो बोलती हूँ अपने दोस्तों से भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, दादी बहुत बड़ी बात होगी, दादी से तो बहुत और आपका रिस्पेक्ट भी दुगना हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी पापा की मम्मी है, तो आपको उस लिहाज से बोलना चाहिए, है ना। और कभी ये प्रेम नहीं कहता कि आप अपनी भाषा का संयम भूल जाए, है ना। कभी कोई किताब ये नहीं कहती कि किसी के प्रेम में पढ़कर या किसी से लाड़ में आप भाषा की मर्यादा भूल जाएं। क्योंकि बच्चों जो बातें अभी आपको मजाक लग रही हैं, वो थोड़ा बड़ा और हो जाओ आप लोग, फिर आपको लगेगा सब टोकेंगे, किसी के घर जाओगे सब टोकेंगे। और एक और चीज़ जो मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ, एक और भाषा है, वो भाषा है ब्रो, वो भाषा है सिस, वो भाषा है क्या है, अधूरी भाषा। हाँ, जब हमारे पास पूरे शब्द हैं, हमारी भाषा समृद्ध है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि बच्चों हम जो चल रहा है उस ट्रेंड को फॉलो करें, है ना। आजकल लिख भी अधूरा अधूरा रहे, है ना, प्लीज़ लिखना है तो PLZ लिख के काम चला लेंगे, सिस्टर लिखना है तो SIS लिख कर काम चला लेंगे। आपको किस चीज़ की जल्दी है, सोचिए। यहाँ तो हमारे लिखने की भाषा भी कैसी होती जा रही है, लोग कहते हैं कि ये ट्रेंड है, लोग कहते हैं कि ये चलता है, पर अगर सब कुछ अगर आप चलाने लगे ना तो आप ही चलते हो जाओगे, मतलब आप अपना स्थान बनाकर नहीं रख पाओगे, आपकी जो खूबियां हैं उसको समेट के नहीं रख पाओगे, आप भी वो भेड़ चाल चलोगे। और भेड़ चाल का तो आपको पता ही है कि भेड़ चाल का मतलब क्या होता है, भेड़ चाल मतलब एक भेड़ अगर गलत दिशा में चल दी तो सारी भेड़ें उसको फॉलो करने लगती हैं, है ना। तो हमारे पास तो दिमाग है ना बच्चों, हमें तो ये समझना है ना कि हमें क्या करना है। हमारी भाषा इतनी समृद्ध है, हम बहन भी तो लिख सकते हैं, बहन अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसके नाम से संबोधित कर सकते हैं, पूरा बोल सकते हैं, पर ये सिस ब्रो ये ठीक है कभी कभी के लिए, लेकिन इतना ट्रेंड फॉलो नहीं करें, है ना। और आपको एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि दोस्ती का मतलब और बहुत अच्छी दोस्ती का मतलब अभद्रता नहीं होती, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत प्रगाढ़ मित्र हो गए तो सम्मान बिल्कुल ही कम हो गया, बिल्कुल घट गया, बिल्कुल मतलब सिरे से ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर आप बहुत अच्छे दोस्त हो तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसको आप बिल्कुल कंधे पे हाथ रख के या हर वक्त उसका मजाक उड़ाकर उसे संबोधित करो कि अरे छोड़ो इससे क्या होता है, ऐसे नहीं चलता बच्चों। अगर आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त हो तो और सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करिए, आपको आनंद आएगा, है ना। और आज आपसे मैंने जो तीन भाषाओं की बात की, एक बोलचाल की भाषा, एक आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये भी बहुत मैटर करती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो उससे पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज मायने रखती है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपकी मैडम कुछ पढ़ा रही होती हैं और आप पेन को ऐसे करके खटपट करते रहते हो, सुनाई आ रहा है आपको, सुनाई आया मैं आपसे बात करूं और बीच में ये डिस्टर्बेंस आता रहे, अच्छा लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। ऐसे ही जब आपसे कोई बात कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, आप नज़रें झुकाए बैठे हो, आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके की हमारा इग्नोरेंस जाहिर करता है। तो हमें इस पर भी काम करना है बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे कि शब्दों की ताकत कितनी होती है, है ना। जैसे बच्चों को देखा है आपने, कुछ बच्चे हम कहते हैं ये बहुत ताकतवर बच्चा है, कहते हैं ये कुछ भी सामान उठा लेता है, ये बहुत एक्सरसाइज करता है, ये बहुत दूर तक दौड़ लेता है, कहते हैं। वैसे ही अब मैं आपको शब्दों की ताकत से परिचय करवाती हूँ। जैसे आपको बुखार होता है तो डॉक्टर दवा देता है, वैसे ही जब आप शिक्षक के पास जाते हैं वो ज्ञान देता है। लेकिन एक अच्छा इंसान अपने शब्दों से एक नहीं कई लोगों का मन जीत लेता है, बहुत लोगों का मन जीत लेता है। अब आप सोच के देखो, आप कोई काम करो और आपसे आपकी मम्मी बोले शाबाश बेटा, कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। आपका मन करता है कि आप दोबारा काम करो, है ना, और अच्छा करके दिखाओ। और वहीं एक बच्चा काम करके आए और उसकी मम्मा ये बोले ठीक है, दोबारा जब करो तो थोड़ा और ठीक करना, तो उसका क्या होता है, मनोबल हल्का सा टूट जाता है। ऐसे ही जब आपको कोई चीज़ कोई दे रहा है, आप उसको ये कह दो धन्यवाद, तो कितना अच्छा लगता है। और वहीं दूसरी ओर कोई कोई चीज़ दे और आप एकदम से पलट कर चल दो, उसको क्या लगता है, अरे मैंने इसको इतने अच्छे से चीज़ दी और इसने तो मतलब उसे जताया भी नहीं कि उसको कैसी लगी, उसको अच्छी लगी नहीं लगी, कुछ नहीं। फिर एक बार अगर गलती हो जाए कोई और आप एक बार में बिना किसी बहस के बोल दो ठीक है इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, कितनी बड़ी ताकत है ये। सोचिए कितनी बड़ी लड़ाई ख़त्म हो जाती है एक सॉरी बोलने से, कितनी सारे लोग आपसे एक बार में इम्प्रेस हो जाते हैं एक गुड मॉर्निंग करने से, एक नमस्कार करने से, एक सुप्रभात बोलने से। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अपनी वोकैबुलरी पर बहुत काम कीजिए बच्चों, अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए, है ना। रोज 5 नए अच्छे शब्द सीखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, समाचार सुनिए, बड़ों से आदरपूर्वक बात कीजिए, गुस्से में भी बोलने से पहले 10 तक गिनिए ताकि आपके पास कोई बुरा शब्द आपकी जीभ से निकलना भी चाह रहा है तो वो 10 तक की गिनती उस शब्द को रोक ले। अब शब्द की जगह सम्मानजनक शब्दों का चुनाव कीजिए। एक बार की बात सुनाती हूँ बच्चों। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तकिए की रुई हवा में उड़ा दो। शिष्य ने ऐसा कर दिया। फिर गुरु ने कहा अब सारी रुई वापस इकट्ठी कर लो। शिष्य बोला यह तो असंभव है। गुरु मुस्कुराए और बोले बेटा शब्द भी ऐसे ही होते हैं, है ना, एक बार मुंह से निकल जाए ना वापस नहीं आ सकते। जैसे तकिए की रुई एक बार आप निकाल दो, फिर आप कितने भी उसको तकिए के भीतर डालने की कोशिश करो या तो शेप बिगड़ जाएगा या तो वो तकिया पहले जैसा नहीं रहेगा। वैसे ही जब आप किसी से बुरे शब्द बोल देते हो, भले ही वापस आप जुड़ जाओ, दोस्ती हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में गांठ पड़ जाती है बच्चों। तो ठीक है, अब हम लोग संकल्प लेते हैं आज बाल सभा में, हर बार ही करते हैं। आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए, मैं जो जो बोलूंगी अब उसे आप दोहराएंगे। आज से हम सभी से सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि हर रोज नए 5 शब्द सीखें। आज से हम कोशिश करेंगे कि हम कोई ना कोई कहानी या कविता पढ़कर ही सोएं। आज से हम कोशिश करेंगे कि नियमित पूरे दिन में जो भी कुछ हुआ है उसे एक पेज में लिखने की कोशिश करेंगे, और अपने बड़ों से, अपने साथ के दोस्तों से, सभी से सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करके अपने व्यक्तित्व को और निखारेंगे। आंखें खोल लीजिए और अब अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए, क्योंकि आज की बाल सभा में इतना ही बच्चों, है ना। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा, है ना। और हाँ, जो जो बातें मैंने आज आपसे कही है ना, उनको प्लीज फॉलो करना, उनका ध्यान रखना और उन पर अमल करके मुझे जरूर अगली बाल सभा में जब मैं आऊं तो मुझे पता चलना चाहिए किसी न किसी बात से आपकी, कि आप घर में अच्छा व्यवहार कर रहे हो, है ना। और ये जरूरी नहीं है कि आप मुझे बताओ तभी पता चलेगा, मुझे तब भी पता चल जाएगा जब आपके बड़े आपसे खुश रहेंगे, है ना। तो बस अपने घर में कोशिश करिए कि सबसे अच्छे से बात कीजिए। हाँ, चलती हूँ, बाय बाय। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ ही मैं आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।
4: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा, जिसमें आज का विषय था भाषा की मर्यादा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मनीषा चतुर्वेदी और उनके साथी बाल कलाकारों ने।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम टेक गुरु। इस कार्यक्रम में आज का विषय है एआई। आज हम इस कार्यक्रम का प्रथम भाग सुनेंगे। जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ अनुग्रह नगाइच और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नेश सोनी।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे एआई पर। हमेशा की तरह हम कोई ना कोई नया सब्जेक्ट, नया विषय आपके बीच में लेकर आते हैं, और आज हमारा प्रयास है आप तक ये पहुंचाने का कि एआई क्या है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये है क्या, किसके लिए फ़ायदेमंद है, क्या नुकसान है, सुन तो सबने रख रखा है। अब इतना वृहद विषय है ये, इस पर प्रयास करेंगे कितना हम आप तक पहुंचा पाएं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर अनुग्रह नगाइच। आप मैनिट यानी MA NIT मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अनुग्रह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे स्टूडियो में आके आपके साथ इस विषय पे अपने विचार प्रकट करने दें।

0: से वास्तुकला एवं नगर नियोजन, ये मेरा ग्रेजुएशन का विषय रहा है। और मैंने 9 से 13 के बीच जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में प्रथम दृष्टया मेरे को पता चला अपने संस्थान के कंप्यूटर साइंस के लोगों के द्वारा। तो उस समय मेरा परसेप्शन ये बना कि मशीनों के शायद संवाद, जो ऑटोनोमस मशीन्स बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है हॉलीवुड की, कि मशीनों के बीच के संवाद को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बोलते होंगे, इससे हमारा कोई उतना सरोकार नहीं रहने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के उन्हीं का विषय होगा। लेकिन धीरे धीरे इसकी पड़ताल करने पर मुझे जानकारी हुई कि ये एक ऐसा विषय है जिसकी उपयोगिता मेरे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में भी है। तब मैंने धीरे धीरे इस पर शोध करना चालू किया। मैंने जैसे बताया ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर अर्बन प्लानिंग से करके मैं IIT बॉम्बे गया, वहाँ पे मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, भू संचार प्रौद्योगिकी, इस पे अपना परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहाँ पे मेरा जो काम था वो यही था कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका मशीन लर्निंग नाम का एक सब डोमेन है, उसकी मदद से हम लोग जो अपने सेटेलाइट इमेजरी रहती है उसकी विवेचना करने का, उसके विश्लेषण करने में योगदान ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो यही वो समय था जब मैंने अपनी आंखों से AI का अपने विषय में इस्तेमाल देखा। और उस इस्तेमाल को, चूंकि मैं बाहरी था, कंप्यूटर साइंस से बाहर से आ रहा था, और मैंने देखा कि जब मेरे विषय में AI इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे जब मैं यहाँ मैनेट में पढ़ता था तो किसी शहर की शहरी विकास योजना बनती है, शहर का एक नक्शा बनता है, तो 5-6 लोग 2-3 दिन बैठ के एक एक बिल्डिंग को फुटप्रिंट बनाते जाते हैं। मतलब शहर की सेटेलाइट इमेजरी इसरो से आएगी, एक एक सड़क को डिजिटाइज करेंगे, एक एक बिल्डिंग फुटप्रिंट को डिजिटाइज करेंगे, एक एक फीचर, नदी, नाले, पेड़, 5-6 लोगों की टीम 1-2 दिन लेती थी किसी भी बड़े शहर के लिए। AI की मदद से ये जो मैनुअल काम था डिजिटाइजेशन का, वो इसरो स्वयं ही करके देता था। मतलब वो अपने आप इमेज में, इसको कंप्यूटर विजन तकनीक बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंदर, अपने आप ही फीचर डेलिनेट हो गया। आप सोचिए 4-5 लोगों के 2-3 दिन की मेहनत एक क्षण में सॉल्व हो गई। उसके बाद से मेरे को ये चीज समझ में आई कि भाई इस तरीके से ये सिर्फ 2 मशीनों के बीच में संवाद का जरिया नहीं है, ये हम लोग जो कंप्यूटिंग डिवाइस को जैसा प्रयोग में लेते आए हैं आज तक, उसको पूरी तरह से बदलने वाला है। और फिर मेरे को समझ में आया कि ये मेरे विषय पे नहीं, लगभग हर विषय में जितने भी मैनुअल काम है उन सबको हटा के एक नए तरीके से काम करने की दृष्टि देगा। तो मेरे बैकग्राउंड से मैंने AI के साथ सामंजस्य बनाते हुए फिर इसी विषय को आगे ले जाने का सोचा। और फिर मेरी PhD जो संपन्न हुई वो पूरा मशीन लर्निंग बेस्ड वेटलैंड मॉनिटरिंग पे थी। और अभी मैं इसी विषय के बारे में और कैसे अलग अलग क्षेत्र को प्रभावित करता है उस पे भी लोगों में जागरूकता फैलाने का या उनको इसके प्रति सेंसिटाइज करने का प्रयास करता हूँ।
1: तो AI क्या कोई सॉफ्टवेयर है जो लोग इसका इस्तेमाल कर लें और फिर अपने काम में ले लें?
0: सर, ये आपका बिल्कुल बहुत सही पकड़ा है आपने। कंप्यूटर रेवोल्यूशन में हम लोग के सामने, नज़रों के सामने एक कंप्यूटिंग डिवाइस था, डेस्कटॉप कंप्यूटर था। आप देखे होंगे जब आप छोटे थे तो कंप्यूटर्स का जो यूज़ था वो बहुत लिमिटेड था, ऑफिसों में, पावर प्लांट्स में रहता था। आज इस स्टूडियो से लेके रेलवे स्टेशन के काउंटर तक या अस्पताल के फ्रंट डेस्क तक या किसी होटल के रिसेप्शन में लॉबी तक आप कंप्यूटर को हर जगह पाएंगे। कंप्यूटर एक प्रोडक्ट के कारण होने के कारण हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर के कितने उपयोग हो सकते हैं। AI वस्तुतः सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर कहने का तात्पर्य यह है कि वो टेंजेबल प्रोडक्ट नहीं है जैसे कंप्यूटर था, जैसे TV था वो एक प्रोडक्ट था, लेकिन जैसे इंटरनेट है 2 कंप्यूटर्स के बीच में, चलिए इंटरनेट भी मैं कहता हूँ कि कुछ हार्डवेयर रहता है, वायर्स या वायरलेस, लेकिन AI जो रहेगा वो कंप्यूटर के बैक एंड पे कंप्यूटर के प्रयोग को 10 गुना या 100 गुना या 1000 गुना और प्रभावी बनाएगा। उदाहरण मैंने आपको बताया कि 4-5 लोग जो मिलके एक शहर के खांचे को डिजिटाइज करते थे वो AI कुछ क्षणों में, कुछ सेकेंडों में कर लेता है। या आपके पास मान लीजिए सेंसस डेटा है एक शहर का, लगभग 20 लाख लोगों के अलग अलग उनके सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया, उसकी आप जानकारी है, उससे अगर आपको एनालाइज करना है किसी विशेष पहलू पे तो आपको पहले उसमें कुछ प्रक्रियाएं लगती थी, कुछ समय लगता था, कुछ ऊर्जा लगती थी, अब वो आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो मूल रूप से ये बैकएंड में काम करने वाला एक टेंजेबल माध्यम, मीडियम फॉर्म में ना होने के कारण इसको सॉफ्टवेयर तो सही नहीं होगा, लेकिन एक नॉन टेंजेबल रेवोल्यूशन है जो कंप्यूटर्स के बैकएंड पे हो रहा है, जो हमारे कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। ChatGPT आपने बोला, अब ChatGPT आने से पहले लेखकों के, कॉपीराइटर्स की बहुत अच्छी दुकान चलती थी, लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन जो हर मोबाइल में जाके आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट दे दे, आपको कॉपीराइट दे दे, तो ये बैकएंड में ही संचालित हो रहा है, वही AI है।
1: एक बात जो अभी भी आपने कही कि 5 या 6 लोगों का फुटप्रिंट लगता था, 5-6 लोग उस पर 2-3 दिन 6 दिन काम करते थे, तो अब वो 5-6 लोग नहीं लग रहा है, एक बात। दूसरी चीज, उतना समय भी नहीं लग रहा।
0: बिल्कुल।
1: तो क्या माने AI आने से लोगों के काम छिन गए?
0: देखिए, कोई भी नई तकनीक जब आती है तो अपने साथ कुछ तो कार्य क्षेत्र में चेंज लाती है। कंप्यूटर्स के आने के पहले मुझे याद है जब मैं छोटा था तो टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट रहते थे, शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती थी, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग के कोर्सेज होते थे और इसमें कई लोग जाते थे। कंप्यूटर्स आने के बाद और कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन के बाद जब कंप्यूटर्स का फॉर्म फैक्टर जब स्मार्टफोन आ गए या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते गए, इंटरनेट पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती गई, तो अब ये टाइपराइटर भी ऑब्सोलीट हो गया। DTP का जो एक व्यवसाय चलता था अपने भोपाल के जवाहर चौक में, आपको याद होगा कितने सारे DTP की जगह थी, या साइबर कैफे चलते थे। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपने साथ डिसरप्शन लाती है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सच है कि जो मैनुअल रिपीटेटिव काम है, जैसे नक्शे में फीचर्स को आइडेंटिफाई करना या रिसर्च करना, लाइब्रेरी में जाके अपने काम की चीज ढूंढ के लाना, तो जो मैनुअल रिपीटेटिव टास्क है वो काफी हद तक ऑटोमेट होने से मैन पावर काफी फ्री हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इसका एक पहलू को देख के ये बोलना कि इतने सारे लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो वो करेंगे क्या, ये थोड़ा बेमानी होगा। क्योंकि एक तरफ तो लोग फ्री हो रहे हैं रिपीटेटिव टास्क, तो ChatGPT उनको ये सुविधा भी देता है कि वो चाहें तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनने में सबसे बड़ी बाधा आती है टेक्नोलॉजी के, कैमरे की, आज सबके पास स्मार्टफोन है, विषय की और विषय के प्रस्तुतिकरण की। आज ChatGPT में आप अपने एक स्क्रिप्ट डालिए या उससे बोल दीजिए कि भाई इस विषय के बारे में कोई जानकारी दे। हाँ, ये जरूर है कि वो जानकारी सही है कि नहीं है वो हमको देखना है, लेकिन अगर जानकारी आ गई तो उसे किस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म वीडियो में 30 सेकंड 60 सेकंड में क्लब डाउन करना, ये हर कोई कर सकता है अपने मोबाइल से। तो लोगों के पास जीविकोपार्जन के, स्किल डेवलपमेंट के नए आयाम भी खुलेंगे। तो स्किल रिफॉर्म करना, स्किल डेवलपमेंट करने की तो आवश्यकता रहेगी, लेकिन इस विषय में बहुत ज़्यादा सोचना कि बेरोजगारी बढ़ाएगा, मेरे ख्याल से जॉब का नेचर बदल जाएगा और बदलते समय में लोगों को भी उस स्किल को रीडेवलप करना पड़ेगा। ये AI एक आयाम लाने वाला है। मैं यहाँ पे जो प्रशासनिक अकेडमी है वहाँ पे भी इसी विषय पे ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि बदले समय में AI के युग में सफलता पाने के लिए, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, प्रोफेशनल में हो, सबसे ज़रूरी रहेगा 3 चीज़ों करना, लर्न, अनलर्न और रीलर्न, यानी सीखना, फिर उसे भुलाना और पुनः सीखना। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से परिवर्तन लाएगी उसमें मुझे भी एज अ शिक्षक, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक डिटेल उदाहरण दूंगा, IIT और के मेरे कुछ साथी शिक्षक हैं और हम लोग किस विषय में विवेचना करते हैं कि AI हमको रिप्लेस ना कर दे, हमें भी अपने फील्ड में रिलेवेंट बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा और रीलर्न करना पड़ेगा।
1: मैन पावर की भी आपने बात कही थी, तो इसे मैन पावर फ्री करना बेरोजगारी ही बढ़ाना तो है या नहीं है?
0: देखिए, जो 5 दिन हम लोग नक्शा बनाने में लगाते थे वो 5 दिन बचा के हम उसको नक्शों की अच्छे से विवेचना करने में लगा सकते हैं, एडवांस स्टडी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी शहर के सड़कों को डिजिटाइज करने में 2 दिन लगाता था, अब मेरे को सड़कें बन रही हैं। और इनफैक्ट मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला था अमृत के मास्टर प्लान प्रोजेक्ट में, मणिपुर के इम्फाल शहर के मास्टर प्लान प्रिपरेशन में, वहाँ पे हमें जो इसरो से शीट्स आई, सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजी, वो ऑलरेडी डिजिटाइज थी। हमको वो नक्शा ले जाके ग्राउंड ट्रूथिंग करनी थी, मतलब वो नक्शे ले जाके साइट में चेक करना था कि कौन से फीचर सही है कौन से गलत है। तो जो प्रक्रिया 6 महीने लेती थी वो अब मेरे ख्याल से 25 या 30 दिन में पूरी हो गई। हम लोग नक्शे लेके जाते थे, पेंसिल से मार्क करते थे और वही भेज के इसरो में अपडेट कर लेते थे। इस बचे हुए समय को हमने उस नगर का, इम्फाल की, अच्छे नगरी नियोजन, शहरी नियोजन कैसे किया जाए, कैसे हरियाली के बारे में क्वांटिफाइड स्टडी की जाए, उसमें लगाया। तो जहां समय बचता है वहां पे उसे दूसरे तरीके से उपयोग करने की सुविधा बढ़ जाती है। कई लोग जो AI विषय विशेषज्ञ है वो कहते हैं कि वर्क डेज लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब जो 6 दिन या 7 दिन या 5 दिन काम होता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ये वर्क आवर्स कम हो जाएंगे, तो इस चीज को हम चैनलाइज कर सकते हैं दूसरे उसमें। हाँ, ऐसे लोग जो मैं कह सकता हूँ शैक्षणिक स्तर पे नीचे हैं, जो इतने स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए भी चीजों या तकनीक के प्रति उनकी पहुंच जो है वो और सुविधायुक्त हो जाएगी, तो अगर वो चाहे तो इसकी मदद से नए स्किल्स को सीख के अपने आप को मार्केट रिलेवेंट बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हर युग में हुआ है। ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन चूंकि AI इतनी तेजी से चेंज हो रही है तो बहुत आसानी से लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, देखा जाए तो लोगों के पास ये संभावना रहेगी कि अपनी स्किल को अनलर्न करके कैसे वो रीलर्न करके मार्केट रिलेवेंट बन सकते हैं।
1: अनुग्रह जी, एक बात और कि अभी AI को आए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं अगर माने, तो अभी सबसे ज्यादा उपयोग इसका कहाँ हो रहा है?
0: देखिए, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोध विषय है ये 1960 से चल रहा था। 2-4 साल पहले इसलिए हुआ है क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई थी कि हम AI के एडवांटेजेस को रियल लाइफ में देख पाए। जैसे मैंने बताया कि मैं 2014 से 16 के बीच में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने AI के कुछ परिणाम देखे थे। 2022 के एंड में जब ChatGPT लॉन्च हुआ, वो पहला ऐसा स्टेज था कि एक सामान्य आदमी भी एक तरह से यूज कर सकता था AI को अपने दैनिक डेली डे टू डे टास्क के लिए। तो आज की डेट में मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 साल में ChatGPT हो गया है, Gemini हो गया है, Airtel के यूजर है तो Perplexity मिल जाता है फ्री में, इतने ज्यादा लार्ज ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल्स हैं। तो ऑलमोस्ट हर विषय में ही इनकी उपयोगिता हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रहा है। इसकी बजाय अगर प्रश्न ये हो कि कहाँ यूज नहीं हो रहा है, वो है जैसे मैं अपने IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस के बहुत वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर है उनके साथ बैठा था, IIT हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और रुड़की के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और भी मेरे साथी लोग थे। हम लोग एक वर्कशॉप में गए थे, वहां पे चर्चा हो रही थी, तो वहां पे कंप्यूटर साइंस कानपुर वाले कंप्यूटर साइंस के सीनियर प्रोफेसर ने बोला कि भाई ये AI हम लोग को भी रिप्लेस कर देगा। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने बोला यार IIT के कंप्यूटर साइंस के जिन्होंने मशीन लर्निंग पे पिछले 20-30 सालों से शोध किया हो, वो प्रोफेसर ऐसा बोला। मैंने पूछा प्रकाश डाली, तो बोला कि IIT में उनका एक स्टूडेंट है उनके विषय का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया करता है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाता है, मतलब ही इज वेरी शार्प, लेकिन वो क्लास अटेंड नहीं करता
1: जी।
0: तो जब उनसे पूछा गया, चूंकि उसमें मेंटरशिप होता है IIT में, डिप्रेशन में नहीं चले जाए, सुसाइड नहीं हो, तो संवाद अच्छा रहता है टीचर और स्टूडेंट का, तो उसको बुला के पूछा भाई आप पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन क्लास नहीं आ रहे हो, कुछ सब कुछ कुशल मंगल है, क्या समस्या है? तो बच्चे ने बोला सर जो मैं कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो मैं AI की मदद से इंटरैक्टिव तरीके से, एक घंटे का मान लीजिए क्लास है तो 15 मिनट में वो टॉपिक समझ जाता हूँ। और ऐसे टूल्स हैं, मैं भी अपने टीचिंग पेडागोजी में पढ़ाने के लिए कई ऐसे टूल्स यूज करता हूँ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, कैसे इसको सरल भाषा में समझाया जा सके। तो बोले सर एक घंटे की क्लास का मटेरियल मैं 15 मिनट में कंज्यूम कर लेता हूँ और वो मेरे रिजल्ट में प्रोजेक्ट में दिख रहा है, बचे हुए 45 मिनट में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या ऐसा कोई नया स्किल सीखता हूँ जो मेरे जीविकोपार्जन में या प्लेसमेंट में मेरे काम आए। तो मेरे लिए क्लास आने का इंसेंटिव क्या है? अब ये प्रश्न देखिए, कॉलेज IITs में अगर एक उद्देश्य देखा जाए तो ठीक है, आप लोगों को पैकेज अच्छा मिले, इंस्टीट्यूट्स शुड गिव गुड प्लेसमेंट टू द स्टूडेंट्स, तो बच्चा कमाने लायक स्किल सीख रहा है, और जो कॉन्सेप्ट उसको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा, वो बोल रहा है कि वो 15 मिनट में सीख रहा है। तो प्रोफेसर ने यही कहा कि भाई AI तो हमको भी रिप्लेस कर देगा। अब इस बदलते दौर में हम ऐसा क्या करें कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बेहतर बच्चों को एंगेज करके रख पाए, ये चैलेंज है। ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए बताया कि टीचिंग एक ऐसा विषय है जहाँ पे अपन कोशिश करते हैं कि 1-on-1 बात करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया जाए, वहाँ पे भी AI घुस चुका है। और ये एक फील्ड का है, जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया में आजकल कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर्स की भरमार आ गई है। आपके आजू बाजू भी कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि ये लेखनी में उतने उत्कृष्ट हो सकते हैं, वो सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कैमरे में ऑटोमेटेड फिल्टर्स हैं। आप किसी व्यक्ति को निजी रूप से जानते हैं लेकिन आप उसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा यार इसने प्रोफेशनल फोटोशूट करवाया हो, उसके पास AI इनेबल्ड कैमरा या फिल्टर्स है। तो प्रश्न अगर ऐसा हो कि कौन से ऐसे विषय हैं जहाँ पे AI पेनिट्रेट नहीं करेगा,
1: वो DP में बड़ा भारी एक परिवर्तन दिख ही रहा है।
0: हाँ,
1: मतलब वो ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अपन ने बात ही शुरू करी थी, विषय भी अपना AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कुल मिला के आर्टिफिशियल उसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है, वास्तविक कितना है ये एक अलग विषय है, उस आर्टिफिशियल को कितना आप और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात आपने कही थी अभी अभी, 15 मिनट में कोई भी स्टूडेंट वो अपने विषय को उससे बेहतर समझ लेता है, तो ये अंतर कैसा है? क्या मतलब वाकई जैसे कोई 10वीं का 12वीं का स्टूडेंट या कहीं का पढ़ने वाला इंजीनियरिंग का मेडिकल स्टूडेंट, ऐसा क्या है कि वो उसको उसमें 15 मिनट में उस चीज को समझ लेता है बनस्पत टीचर के समझने से?
0: देखिए आप भी कभी कोशिश करके देखिएगा, कोई ऐसा तकनीकी विषय जिसके बारे में आपको जानना है, जैसे AI मान लीजिए, आप ChatGPT खोल के उसमें लिखिएगा इमेजिन यू आर अ टीचर
1: जी,
0: एक्सप्लेन AI टू मी लाइक IIM क्लास 10th स्टूडेंट
1: जी,
0: क्लास 5th स्टूडेंट करके देखिएगा, उसका आउटपुट अलग रहेगा। आई हैव अ स्टूडेंट परस्यूइंग लेट्स से BA इन पॉलिटिकल साइंस, तो आप पाएंगे कि वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है कोई भी ChatGPT हो या एंथ्रोपिक, वो हर बार आपके उस स्तर के हिसाब से आपको आंसर दे रहा है। इन सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का सर जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो बहुत विशाल है, मतलब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की काम करने की प्रक्रिया ऐसी रहती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं, वो ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत बड़े ट्रेनिंग डेटा सेट पर ट्रेन किया गया। इसको मैं अगर एक शब्दों में समझाना चाहूं तो एक पूरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें होती हैं उन किताबों की 10 गुना किताबों से उनको ट्रेन किया गया, मतलब उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उन सारी किताबों को एक तरह से पढ़ा हुआ है, और उस पूरे पढ़े हुए टेक्स्ट की मदद से वो अगला शब्द या अगला सेंटेंस प्रिडिक्ट करते हुए अपनी बात कहता है। तो उसका जो कॉर्पस ऑफ नॉलेज है वो बहुत ज्यादा विशाल है। मैं फिर दोहराऊंगा कि वो समझता नहीं है उन टेक्स्ट उन लाइनों का, उन शब्दों का अर्थ नहीं समझता, लेकिन उसने चीजों के पैटर्न को समझा है, ग्रामर के पैटर्न को समझा है, सब्जेक्ट के पैटर्न को समझा है, और उसी तर्ज पे वो अगले शब्द अगले वाक्य अगले पैराग्राफ रिक्रिएट कर रहा है। तो उसका कॉर्पस ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा है, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जितनी किताबें नहीं पढ़ पाएगा, आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑलरेडी उससे ज्यादा किताबें पढ़ चुके हैं, तो उस ब्रॉड कॉर्पस ऑफ नॉलेज से वो कैसे कंटेक्चुअलाइज करके अपने सवाल को जवाब दे पा रहा है, वो उसे बहुत इफेक्टिव बनाता है टीचिंग के लिए। दूसरा होता है जैसे अपन टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात करते हैं, आमतौर पे देखा जाए तो जितने कम स्टूडेंट होंगे पर टीचर, उतना बढ़िया टीचिंग पेडागॉजी होगी। अब समस्या यही आती थी कि भाई ऐसा तो कोई परिस्थिति बनती नहीं है कि एक टीचर एक स्टूडेंट के ऊपर हो, एटलीस्ट 10 या 15 का तो बैच हो गई, और जितने ज्यादा बच्चे होंगे टीचर के लिए एक बच्चे पे ध्यान देना उतना मुश्किल होगा। यहाँ पे आपके पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से, उसके रुचि के विषयों के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से इंडिविजुअली उसको कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है
1: जी।
0: तो ये AI का एडवांटेज है। दैट बीइंग सेड, इतना सब करने के अलावा AI के बहुत भयंकर दुष्परिणाम भी है। यहाँ पे एक दुष्परिणाम जो मैं बताना चाहूंगा ताकि बैलेंस हो जाए कहानी, वो ये है कि चूंकि AI समझता नहीं है शब्दों को, वाक्यों को, वो स्टैटिस्टिकल पैटर्न पे अगला वर्ड, अगला लाइन, अगला पैराग्राफ प्रेडिक्ट कर रहा है, तो AI कई बार हेलुसिनेट भी कर लेता है या गलत जानकारी भी दे सकता है। तो ये चीज भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो AI बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ट्रेनिंग डेटा सेट में जो है वो अगर सही है तो AI सही प्रेडिक्ट करेगा, अगर उसमें ट्रेनिंग डेटा सेट में बायस है, जैसे आज से 2-3 साल पहले बड़ा अच्छा एक केस हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे बताया कि ChatGPT से अगर आप बोले इमेज जनरेट करने को कि एक व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा है, लेफ्ट हैंड से, तो वो क्रिएट नहीं कर सकता। लोगों ने बड़ा इसको हल्के पे लिया कि यार बताइए प्रधानमंत्री जी कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो सही था, ChatGPT से अगर आप प्रॉम्प्ट में लिखेंगे कि भैया एक ऐसे फोटो जनरेट करो जिसमें व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा, वो लेफ्ट हैंड से लिखने वाले व्यक्ति की फोटो बना ही नहीं सकता था। ये मैंने क्लास में बच्चों को करके दिखाया था, शायद अब वो बता सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जिन इमेजेस पे वो ट्रेन हुआ होगा या जिन कॉन्टेक्स्ट में वो ट्रेन हुआ होगा उसमें उसके पास कोई लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करते हुए व्यक्ति की इमेज उसने देखी या समझी नहीं होगी, तो उसके ट्रेनिंग डेटा सेट में चूंकि सब राइट हैंड से लिख रहे थे इसलिए वो भी राइट हैंड से क्रिएट कर रहा था। तो एक तो ट्रेनिंग डेटा सेट की उपलब्धता, उसके बायसनेस, और दूसरा वो जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो सही है कि नहीं, ये देखना आवश्यक है, अन्यथा जो एडवांटेज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी तरह उल्टा जा सकते हैं।
1: डॉक्टर अनुग्रह नगाइच हमारे साथ मौजूद थे आज स्टूडियो में, उन्होंने इतना तफसील से इस विषय को बताया हमें। कार्यक्रम टेक गुरु में आज AI पर जो हमने बातचीत की उसमें इस भाग में हमने जाना कि आखिर AI है क्या, AI कहां कहां अपना असर डालने वाला है, और ऐसे कई सारे प्रश्न। डॉक्टर अनुग्रह नगाइच का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: ये चर्चा जारी रहेगी आगे भी। तो ये था कार्यक्रम टेक गुरु जिसमें आज हमने बात की AI पर। ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच में जो पहुंचाया इसके मार्गदर्शक थे संतोष कुमार वर्मा जी, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा हमारे साथ सतीश पाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आपका अपना 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर, जानकारी दे रहे थे विषय विशेषज्ञ अनुग्रह नगाइच, और इनसे बातचीत कर रहे थे रत्नेश सोनी। इसके साथ ही हमारा आज का टेक गुरु कार्यक्रम संपन्न होता है।
3: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: लेसन।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज हम कारगिल युद्ध पर आधारित कार्यक्रम का तृतीय भाग सुनेंगे। जानकारी दे रहे हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत कर रही हैं हमारे सहयोगी पूर्वा खले।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओ, आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ और इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। आइए आज इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं चंद पंक्तियों से, जो कि कुछ इस तरह से हैं। दिलों में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, दिलों में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, आसमानों से ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश जुनून को, वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश जुनून को, हम तो मुट्ठी में अपनी जान लिए फिरते हैं। वाकई में श्रोताओं, इन दिनों कार्यक्रम में हम जिस जंग की बात कर रहे हैं, यानी कि कारगिल की लड़ाई की, इसकी गौरव गाथा हमारी सेना के ऐसे ही नौजवानों की कहानी है जिन्होंने सीमा पर अपनी बहादुरी, अपनी दिलेरी और बलिदान से एक मिसाल कायम की है। श्रोताओं, कारगिल का युद्ध सबसे मुश्किल जंगों में यूं ही नहीं गिना जाता। ये युद्ध बेहद ही कठिन परिस्थितियों में लड़ा गया था, जिनका जिक्र हम कार्यक्रम के पिछले एपिसोड से कर रहे हैं। और इन परिस्थितियों का भी सामना करते हुए हमारे देश की सेना के बहादुर सिपाहियों और अफसरों का अपनी मुट्ठी में देश के लिए जान रखने का जज्बा और दिलेरी ने कारगिल के पहाड़ों को भी नतमस्तक कर दिया। उनकी वीरता, उनकी सुनियोजित रणनीति और देश के प्रति मर मिट जाने के जज्बे ने ही इस युद्ध में हमें सफल बनाया और दुश्मन को उखाड़ फेंका। श्रोताओं, कारगिल के युद्ध में हमने अब तक जाना कि द्रास सेक्टर को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कर दिया था। आइए चलते हैं सन 1999 के कारगिल में एक बार फिर, जहां कारगिल की दूसरी चोटियों पर बैठे दुश्मन से लड़ने की चुनौती भारतीय सेना के लिए अभी बाकी थी। कार्यक्रम में इस जंग के हर पहलू को, हर तथ्य को हमारे सामने रखने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और कारगिल के इन क्षेत्रों का स्वयं भी अनुभव रखते हैं। स्वागत है सर एक बार कार्यक्रम में फिर से आपका।
4: जय हिंद पूर्वा जी।
3: जय हिंद सर।
4: जय हिंद श्रोताओं। पूर्वा जी, इससे पहले कि हम एपिसोड में बात करें
3: जी,
4: कुछ एक बातें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ।
3: जी बिल्कुल सर।
4: जैसे आपने अभी बोला कि हमने द्रास सेक्टर में विजय हासिल करी, फिर हम बाकी देखते हैं। जो ये इंट्रूजन था, जैसे पूरा हमने पहले भी बताया कि जैसे 134 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली था, तो इसमें जो अलग अलग जगह पे इंट्रूजन हुआ था, जिसमें कि द्रास सेक्टर है, उसके अगर हम वेस्ट में देखें श्रीनगर की तरफ, तो मशको वैली में इंट्रूजन हुआ था
3: जी।
4: और अगर द्रास से हम कारगिल की तरफ जाते हैं
3: जी,
4: उस इलाके में, एंड देन बटालिक सेक्टर उसके ऊपर जो आते हैं, ये जो पूरे इलाके थे
3: जी,
4: बटालिक चोर बाटला सेक्टर है, ये सभी इलाकों में एक साथ
3: जी,
4: जो है युद्ध हो रहा था,
3: पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था ये युद्ध, क्योंकि घुसपैठिए तो
4: जी
3: सारे तरफ थे,
4: सारी तरफ से, मतलब जो युद्ध हो रहा था, जो हम इनको धकेल रहे थे, जो ये कैप्चर हो रही थी
3: जी,
4: तो ये सारी की सारी जो है कार्रवाई एक साथ चल रही थी।
3: ये पूरी युद्ध की प्रक्रिया सब तरफ चल रही थी
4: जी, सब तरफ
3: एक ही समय
4: थी। और जस्ट टू अंडरस्टैंड इट इन मच बेटर मैनर, वी आर टेकिंग इट वन बाय वन।
3: जी बिल्कुल सर, ये इस तरह से हम इसको आसानी से समझ भी सकते
4: हैं। एग्जैक्टली। एंड दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, जब हम किसी सेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ एक लोकेशंस के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं
3: जी।
4: जैसे हमने टाइगर हिल के बारे में जिक्र किया था, जैसे कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मतलब और भी जो है लोकेशन है तो उसके आसपास जैसे एनिमी है
3: जी।
4: तो उनको भी कैप्चर करने के लिए यूनिट्स ने जो है पूरा दमखम लगाया था
3: जी, बिल्कुल सर।
4: एक एक लोकेशन के ऊपर जो है कैप्चर करने के लिए एक एक मतलब ऑपरेशंस लॉन्च हुए थे। जैसे माउंटेन्स में क्या होता है कि इन्फेंट्री डोमिनेटेड ऑपरेशंस होते हैं
3: जी, मतलब पैदल सेना
4: जो है प्राइमरीली वो अधिक प्रभावी रहते हैं, उनका रोल रहता है
3: जी, बिल्कुल।
4: लेकिन जो ये युद्ध था इसमें मतलब इट वाज अ कोऑर्डिनेटेड बैटल जिसमें कि सेना के जितने भी मतलब आर्म्स एंड सर्विसेज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उनका जो कंट्रीब्यूशन था विच वॉज इक्वली देयर,
3: बराबरी
4: से था जी। और इस वक्त जब कारगिल का युद्ध हो रहा था पूरे देश में सेनाएं सतर्क थी
3: जी,
4: यहाँ तक कि इंडियन नेवी ने भी उस समय ऑपरेशन तलवार अरेबियन सी में लॉन्च किया था ताकि अगर किसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से कुछ होता है तो उसके लिए वो लोग अलर्ट थे।
3: एंड यदि युद्ध फैल जाए तो हम उसको हैंडल कर सकें।
4: तो इट मतलब एवरीबॉडी वाज एक्टिव ड्यूरिंग दिस वॉर, नॉट दैट कि ओनली द पीपल हु वर देयर इन कारगिल
3: जी,
4: ऑफ कोर्स दे वर फाइटिंग द वॉर बट अदर्स वर आल्सो अलर्ट,
3: उतनी सतर्क और चौकन्ने थी
4: जी,
3: चारों सीमाओं पर, चारों दिशाओं।
4: जैसे इसमें अगर हम IAF इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो वो पूरे देश की जो बॉर्डर्स के ऊपर वो चौकन्ने थे
3: जी।
4: इसके अलावा जो है कारगिल में तो उनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था,
3: ऑपरेशन सफेद सागर के,
4: ऑपरेशन बिल्कुल सही बोला आपने, ऑपरेशन सफेद सागर के अंतर्गत जिसमें कि उन्होंने जो है एनिमी जहां इंट्रूडर्स थे
3: जी, जी।
4: इनके ऊपर अटैक्स लॉन्च किए थे, बमबारी करी थी, प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल जो थी वो थे, बॉम्ब्स गिराए थे, देन उसके अलावा उन्होंने रेकी मिशंस किए थे जिससे हमें पता चला था कि सिचुएशंस क्या हैं। उनके पास भी ये रिस्ट्रिक्शन थी कि उनको LOC क्रॉस नहीं करना था।
3: ये सबसे बड़ा सर एक सीमा थी हमारी इस युद्ध में, ये हमको
4: सीमा नहीं लांघनी ये हमारी सीमा थी। उसके बावजूद जो है जैसे उनका हेली लिफ्ट के जो ऑपरेशन थे, कैजुअल्टी इवैक्यूएशंस के थे, एंड इवन जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने मोबिलाइजेशन में जो है
3: पहाड़ी क्षेत्रों में तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है
4: जी, तो उसमें जो है मोबिलाइजेशन में जो उनका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस वॉर वॉज फॉट बाई ऑल फोर्सेस एंड इट वॉज absolutely a coordinated effort by everyone. Of course, on ground it was the infantry which was predominantly fighting the battle. तो इसलिए हम जब जिक्र कर रहे होते हैं तो आपको ज्यादा इन्फेंट्री का जिक्र आता है बार बार। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने पिछली बार द्रास सेक्टर देखा था इसी तरह से उसके जो वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो मशको वैली आती है,
3: मतलब श्रीनगर की ओर,
4: श्रीनगर की ओर जो है तो ये जो है मशको वैली आती है। अब यहाँ पे भी जो है पाकिस्तान आर्मी ने काफी उनका इंट्रूजन था और उन्होंने कुछ डोमिनेटिंग हाइट्स जो थी वो ऑक्यूपाई करी हुई थी जिसके कारण कि अगेन द सेम थिंग वो नेशनल हाईवे को डोमिनेट कर रहे थे, हमारी मूवमेंट्स के जो है मुश्किल पैदा कर रहे थे। तो उसमें एक हाइट थी 0.4875 जिसका जिक्र बार बार अगेन आता है, उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था और वहां से उनको हटाना हमारे लिए भी इसलिए जरूरी था क्योंकि हम नेशनल हाईवे को बचाना था, नेशनल हाईवे को हम रोक नहीं सकते, उसमें रुकावट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए जो है इसको कैप्चर करने की जिम्मेवारी प्राइमरीली 13 जैकरीफ यानी 13 बटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स उनको दी गई थी। ये जो बटालियन है अगर आपको याद होगा द्रास में भी इन्होंने बहुत अच्छा
3: रोल निभाया था सर,
4: निभाया था 0.5140 के कैप्चर में
3: जी।
4: तो इस बटालियन को फिर से ये टास्क मिला था। तैयारी के बाद जो है उन्होंने 4 जुलाई पे अटैक लॉन्च किया इसके ऊपर। अब अगेन सेम सिचुएशन, सेम काइंड ऑफ माउंटेनियस टेरेन जो हम जिसका हम जिक्र बार बार करते आ रहे हैं। तो सोल्जर्स जो थे आगे बढ़ रहे थे, फायरिंग आ रही थी, इंटेंस फायरिंग आ रही थी, तो मतलब प्रोग्रेस स्लो रहती है थी, बट इट वाज अ वेरी डिटरमाइंड एफर्ट्स कि हमारा काम है, हमने करना है, कुछ भी हो जाए। कैजुअल्टीज हो रही थी लेकिन उसके बावजूद भी कोई पीछे नहीं हट रहा था। तो जब ये अटैक लॉन्च हुआ रात हुई, पूरा रात के बाद जो है इवन डेलाइट हो गई। अब डेलाइट के ऊपर जो है दुश्मन को आप दिख रहे हैं, उसमें आर्टिलरी प्लेड ए वेरी मेजर रोल, जो है आर्टिलरी का मैसिव फायर जो है एनमी के ऊपर डाला गया।
3: जी
4: बिल्कुल। एंड फिर भी देखिए, ये एक क्वालिटी होती है सोल्जर्स की कि कितना भी खतरा है, कितनी भी मुश्किलें हैं, लेकिन वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहे थे। भूखे थे, प्यासे थे, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी जगह पे डटे रहे और निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो जो ये जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं हाइट का, जो इनका ऑब्जेक्टिव था, उससे पहले भी मतलब उस नीचे कुछ पोस्ट थी तो उनको कैप्चर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि तभी जो है आप आगे बढ़ के चौड़े पे जा सकते हैं। तो ये जब लड़ाई चल रही थी तो एक तरह से स्टेलमेंट आ रहा था, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किल जैसे आ रही थी। तो इसमें एक सोल्जर थे, राइफलमैन संजय कुमार
3: जी,
4: जो आज आप जानते हैं ऑलरेडी कैप्टन हैं,
3: जी
4: परमवीर चक्र विजेता हैं। तो उन्होंने काफी अदम्य साहस का परिचय दिया था। वो अपनी लीडिंग प्लाटून में थे कंपनी की, उन्होंने वॉलंटियर किया, वॉलंटियर करके जो है वो आगे अटैकिंग कॉलम के साथ गए थे और दुश्मन पे जो है उन्होंने आगे बढ़ते हुए हमला किया था। एंड सी अगेन जो है इट नीड्स लॉट ऑफ करेज ऐसे कार्य करने के लिए, जो है आगे बढ़ने के लिए। जब एक तरह से आप देखिए बिल्कुल सामने से मौत आ रही है, फिर भी जो है अपनी परवाह ना करके, बिना किसी जो है अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये वीर बहादुर सोल्जर जो है
3: जानबूझकर निर्णय लेना आगे बढ़ने का।
4: हाँ, अगर सोच समझ के करेंगे तो हो ही नहीं करते, कर ही नहीं सकते हैं।
3: जी जी बिल्कुल सर।
4: नहीं सर, ये एक जोश होता है ये जोश होता है, ठीक है। और मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई जानबूझ के कर रहा है, मतलब बट ये एक जोश जो होता है वो उस समय एक अपने अंदर इतना हौसला होता है, ये नहीं होता कि हम सोचते हैं कि हम मर जाएंगे, ये होता है कि मैं उसको मारूंगा। अ सोल्जर इज मेंट नॉट टू डाई फॉर हिज कंट्री, ही इज टू इंश्योर दैट द अदर चैप डाइज फॉर हिज कंट्री।
3: बिल्कुल सर।
4: है ना
3: सर, वो बोला भी गया है ना कि बंदूक में दम नहीं होता, सिपाही में दम होता है।
4: Exactly.
3: जज्बा सिपाही में होता है,
4: जज्बा सिपाही में होता है। तो संजय कुमार जी जो थे उन्होंने जो है बिल्कुल अदम साहस का परिचय दिखाते हुए आगे बढ़े, दुश्मनों पे उन्होंने अटैक किया था और उनको देख के जो है फिर बाकी जो उनके साथ जोश बड़ा वो काफी ज्यादा था। वी आर एबल टू कैप्चर अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, उसको फ्लैट टॉप बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि देखिए फ्लैट टॉप से एक फुटहोल्ड मिला जिसके कारण जो है 0.4875 पे हम मतलब जो है 13 जैकरी कब्जा करने के लिए रास्ता आसान हो गया। अब इसमें जो है संजय कुमार जी को भी खुद को भी जो है घायल हुए थे, बुलेट इंजरीज हुई थी। बट ऐसे ही लोग होते हैं जो अपनी ड्यूटी और अपने देश को आगे रखते हैं, जिनके कारण बैटल्स जीती जाती हैं। एंड इन्हीं लोगों के जो बहादुरी होती है जो बाकी लोगों को भी मोटिवेट करती है, इसलिए जो है इनका नाम इतनी इज्जत से लिया जाता है। जैसे कि आपने जिक्र किया था, उनको इस अदम्य साहस के लिए, उनके आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी के लिए जो है परमवीर चक्र से
3: सम्मानित
4: किया गया था। आज वो ऑनरेरी कैप्टन है एंड आज भी जो है उनकी जो वीरता है उसको याद करके लोगों में काफी सोल्जर्स में काफी जोश भरते जाता है। तो 13 जैकरिफ ने ये फ्लैट टॉप फीचर कैप्चर करने के बाद अपने एफर्ट्स लगाने शुरू किए 0.4875 को कैप्चर करने के लिए। अब 4875 की लोकेशन ऐसी थी कि उसके पीछे मतलब नॉर्थ में एक पोस्ट थी जो जहां से एनिमी जो है फायर कर रहा था और इंटरफेरेंस कर रहा था, आगे बढ़ने से मतलब जो है रोक रहा था। अब उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी था और ये जो काम है मतलब लोकेशन के कारण आर्टिलरी फायर वगैरह से नहीं हो सकता था, उसके लिए इन्फेंट्री को ही जाके करना था। तो इस समय जो है हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा जो ऑलरेडी अपनी बहादुरी और अपनी लीडरशिप प्रूव कर चुके थे, उन्होंने वॉलंटियर किया, वो सामने आए
3: एक बार फिर से, उन्हें जिम्मेदारी दी गई,
4: उन्होंने जिम्मेवारी ली कि मैं जाऊंगा और इसको मैं निस्तनाबूद करके जाऊंगा।
3: दिल मांगे मोर के कारण
4: ये लोकेशन ऐसी थी कि जो इट्स वेरी स्टीप क्लाइम जैसे है, और बहुत नैरो था, मतलब उसके दोनों तरफ खाई है, बहुत छोटा सा सकरा सा रास्ता था जिसपे चलते हैं। अगर मैं उसका एग्जांपल आई डोंट नो, लेकिन जब आप जाते हैं तो आपको दोनों तरफ खाई दिखती है और आप बहुत ही नैरो उसमें चल रहे होते हैं एंड अब आप सामने से फायर आ रहा है, आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं,
3: बचना भी है
4: और साथ में दुश्मन को मारना भी है। तो कैप्टन विक्रम बत्रा विद हिज टीम मूव्ड अहेड एंड ही अटैक द एनिमी, ठीक है, और करके जो है हैंड टू हैंड फाइट में, मतलब दे वर एबल टू कैप्चर द पोस्ट बाय किलिंग ऑल ऑफ देम। पोस्ट तो मतलब उनके साहस के कारण, इनके मोटिवेशन, आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के कारण कब्जे में आ गई, बट अनफॉर्चुनेटली कैप्टन विक्रम बत्रा ही सकम्ड टू हिज इंजरीज एंड देश ने एक बहुत ही बहादुर वीर को खोया था। मेरे ख्याल से शायद ही कोई भारतीय होगा जो ये सुन के जिसकी आंखें नम ना हुई हों उस समय। एंड राइटली एंड वेरी करेक्टली ही वाज अवार्डेड परमवीर चक्र। ही इज एक्चुअली द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। एंड मैं इतना जरूर कहूंगा कि आने वाली सदियों तक जो है
3: इनको याद रखा जाएगा,
4: इनको याद रखा जाएगा,
3: इनके बलिदान को भूला नहीं जा सकता सर, हम हमेशा इनके ऋणी रहेंगे।
4: बिल्कुल, और जो सोल्जर्स हैं वो उनसे काफी प्रेरित रहते हैं
3: जी सर,
4: और रहेंगे भी। तो आप ये देखिए 13 जैकरिफ, मतलब 13th बटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, इस ऑपरेशन में उनके सोल्जर्स ने कितना मतलब
3: वीरता दिखाई,
4: कितना बलिदान किया कि उनको दो दो परमवीर चक्र मिले, जो को बहुत यूनिक होता है
3: जी सर,
4: बहुत ही एक ही युद्ध में जो है उनको जो है दो दो जो है परमवीर चक्र मिले थे। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब एक हाइट कैप्चर होती है तो उसके आसपास भी जो होता है और भी लोकेशंस होती हैं, तो इसमें 13 जैकरिफ के अलावा भी बटालियंस थी जिनको टास्क दिया गया था और भी इम्पोर्टेंट जो लोकेशंस थी उनको कैप्चर करने का। और इन सभी जगहों पे जो हमारे यंग ऑफिसर्स थे, यंग सोल्जर्स थे, इनकी जो परफॉर्मेंस थी आउटस्टैंडिंग थी, ठीक है। अगर आपको याद हो उसमें कैप्टन अनुज नायर होते थे 17 जाट के जो है, और उनके आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी और लीडरशिप के लिए उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ऑल्दो वी लॉस्ट हिम, लड़ते लड़ते जो है वो शहीद हुए थे।
3: हर सिपाही या हर अफसर की एक कहानी है सर।
4: बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, हर एक की अपनी अपनी कहानी है, इन्हीं के कारण जो है हमें सफलता मिली थी। तो इसी तरह से अगर हम आगे देखेंगे तो द्रास के बाद कारगिल आता है, कारगिल से अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो बटालिक आता है
3: जी।
4: तो बटालिक सेक्टर से आगे एक पास आता है चोरबाटला, उसका नाम है चोरबाट और ला
3: ला,
4: ला, ला इधर पास दर्रा
3: जी।
4: ठीक है, तो इस इलाके में भी जो है पाकिस्तान ने घुसपैठ किया था
3: जी।
4: और उनकी जो नदन लाइट इन्फेंट्री है पाकिस्तान की
3: जी।
4: उसके जो ट्रुप्स हैं वो करीब 8-10 किलोमीटर तक अंदर आए थे।
3: अच्छा,
4: और उन्होंने जो है डोमिनेटिंग रिज लाइन थी वहां पे, उनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। ने भी उस समय भी नाम सुनोगा, जुबार, कुकरथांग, खालूबार, ठीक है, पॉइंट 5203। तो इस इलाके में भी मतलब ये सब जैसे मैंने पहले ही बोला समांतर उस ग्रुप में जो है वॉर चल रहा था
3: जी, बिल्कुल।
4: तो यहाँ पे भी जो है बटालियंस जो है जिनको की टास्क दिया गया था
3: वो इसी दौरान ये भी यहाँ पर लड़ रहे थे।
4: बिल्कुल
3: जी।
4: उनके भी प्रयत्न जारी थे कि इनको जो है यहाँ से निकाला जाए जो है। तो इस सेक्टर में प्राइमरीली अगर आप देखेंगे तो 12 जैकलाई, मतलब अगेन वो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स थी, ये जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री है, दोनों इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं। तो ये थी लद्दाख स्काउट्स थी, देन हमारी जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं उनकी टीम्स थी, एंड फाइव पैरा थी जो पैरा बटालियन है
3: जी, जी।
4: तो ये मेजर फोर्सेस थी जो मतलब जिनको की रिकैप्चर करने का और जिम्मेदारी गई थी और जो इवैक्यूएट करने की, दुश्मनों को भगाने की जिम्मेदारी गई थी। इसमें भी जो है जो फॉर्मेडेबल फीचर्स थे काफी जो है, जिसमें कि जिसको कि अटैक करके जो है मल्टी डायरेक्शन से अटैक करके जो है लॉन्च करके जो है विद द सपोर्ट ऑफ मैसिव आर्टिफायर इनको जीता गया था
3: जी।
4: यहाँ पे भी जो है अगर आप देखेंगे बहुत सारी लोकेशंस थी, ठीक है, उसमें एक जो लोकेशन जिसको बोला 5203 थी
3: जी।
4: एंड इस पे जो कैप्चर किया था इट वॉज ए मेजर सक्सेस फॉर इंडियन आर्मी, क्योंकि इसके कारण जो है जो खालूबार जो रिश थी दूसरी जो है, शायद आपको ये नाम अजीब लग रहे होंगे जब मैं बोल रहा हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये लोकेशंस हैं
3: जी सर,
4: जिसको कि मतलब आप जब हम अभी तक जिक्र कर रहे थे 4875 हाइट जिक्र कर रहे थे, ऐसे 5203 मतलब उससे भी ऊंची हाइट, ऊंची हाइट है, उतनी ही मुश्किलें हैं जो है। तो यहाँ पे भी जो है लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, अगेन जो है ही हैज बीन अवार्डेड परमवीर चक्र पोस्टमसली, अगेन ए वेरी फियरलेस यंग बोल्ड ऑफिसर। ये जो थे ये 11GR 11 गोरखा राइफल्स की रेजिमेंट जो है उसकी फर्स्ट बटालियन जो है उसको बोलते हैं 111GR उसके थे। तो लड़ते लड़ते शहीद हुए थे और इनके कारण जो है इनकी जो सक्सेस थी जिसमें जो अगेन जैसे हमने थोड़ी देर पहले एरिया फ्लैट टॉप की बात करी थी, ऐसे ही इस रिज लाइन के ऊपर वो जो है अपना फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करने में सफल रहे थे और जिसके कारण जो है फिर उनकी बटालियन को फाइनली जो है कालूबार कैप्चर कर पाई थी। एंड अगेन
3: आर्मी के लिए हुआ था तो उनसे पूछा गया था कि आप आर्मी में क्यों आना चाहते हैं, तो उनका एक ही जवाब था कि मुझे परमवीर चक्र चाहिए।
4: शायद दिली इच्छाएं थी
3: जी सर,
4: जज्बा था
3: जी सर,
4: हौसला था और शायद भगवान ने वो मौका भी दिया
3: जी सर,
4: लेकिन शायद अगर हमारे साथ रहते तो और भी अच्छा
3: और भी अच्छा बिल्कुल सर, पर भी वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायक रहेंगे, प्रेरणा स्रोत रहेंगे।
4: बिल्कुल, ये लोग तो वो हैं जिनके कारण जो है आर्मी फक्र से जो है चलती है
3: जी, बिल्कुल सर,
4: हम जो है फक्र से इन्हें याद करते हैं
3: जी,
4: और इनके कारण ही जो है एक मोराल बूस्टिंग रहता है
3: जी सर।
4: और ये फैक्ट भी है जब हम इस लोकेशंस पे जाते हैं तो यू ऑलवेज रिमेम्बर देम
3: जी सर, जैसे अब कैप्टन बत्रा के नाम से बत्रा टॉप है।
4: हाँ बिल्कुल है, जब हमने चोर बाटला के एरिया की बात करी उसके आगे मैं एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा जिसको कि सब सेक्टर हनीफ बोलते हैं। जहाँ चोर बाटला है उससे अगर हम LOC के साथ साथ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ये सब सेक्टर हनीफ आता है। सब सेक्टर हनीफ के आगे फिर जो है सदर्न ग्लेशियर यानी कि जो ग्लेशियर वाला एरिया है वो शुरू हो जाता है
3: जी।
4: अब ये जो सेक्टर है अगेन साल्टोर रिज पे जो है काफी इम्पोर्टेंट हाइट्स थी। तो May 1999 में जब युद्ध शुरू हुआ था जब हमें इंट्रूजन के बारे में पता चला था तो ये डिसाइड किया गया कि इसके ऊपर जितनी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनको हमको ऑक्यूपाई करना जाना चाहिए ताकि वहां पे किसी तरह का इंट्रूजन ना हो। तो इसके लिए जो 11 राजर अगेन दैट इज 11th बटालियन ऑफ राजपुताना राइफल्स को ये टास्क दिया गया था कि वहां पे लोसी के ऊपर लोकेशन थी 5500 ठीक है, और वहां पे डिफेंसेस इख्तियार करने का और उसके साथ साथ आसपास का जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है उस पे भी। कैप्टन हनीफ जो थे वेरी यंग ऑफिसर, वो आर्मी सप्लाई कोर के थे और उस समय जो है 11 राजीव के साथ अटैचमेंट पे थे।
3: अच्छा।
4: जो सप्लाई ऑफिसर्स होते हैं सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं वो अटैचमेंट करते हैं इन्फेंट्री बटालियंस के साथ ताकि उनको एक एक्सपीरियंस रहेगा पूरा। ये जो यंग ऑफिसर था ही वॉज लीडिंग ए पेट्रोल टू कैप्चर एनिमी पोजिशन। तो उस दौरान ये जो है जब पहुंचे थे दुश्मन के लोकेशन के पास तो इनके ऊपर काफी इंटेंस फायरिंग हुई और जो हनीफ साहब थे ही अगेन जैसे यंगस्टर्स के बारे में अभी तक हमने जिक्र किया है सेम काइंड ऑफ क्वालिटीज, फियरलेस, आउटस्टैंडिंग लीडरशिप, आगे से मोटिवेटेड फ्रंट से लीड कर रहे हैं एंड ही एंगेज द एनिमी ठीक है। एंड इन स्पाइट ऑफ हैवी अपोजिशन मतलब जो है क्योंकि दुश्मन ऊपर से फायर और ये फिर भी जो है एक फुटहोल्ड बनाने में सफल रहे थे।
3: अच्छा।
4: और इस दौरान जो है उनको काफी गोलियां लगी थी जिसमें बहुत घायल हो गए थे बुरी तरह से। घायल होने के बाद बावजूद जो है वो लड़ते रहे एंड तब तक की जब तक की उनमें जान थी। अगेन ही मेड अ सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री और उनके कारण जो है ये फुटहोल्ड एस्टैब्लिश हुआ जिससे कि 11 राजीव जो है आगे चल के चोटी पे कब्जा करने में कामयाब हुई थी। तो उनके ऑनर में
3: जी जी,
4: ये जो है सेक्टर को हम सब सेक्टर हनीफ के नाम से जानते हैं।
3: जी,
4: आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं पर्सनली गया हूँ इस सेक्टर में।
3: अच्छा अच्छा।
4: जब मैं सियाचिन में था
3: जी,
4: उस समय जो है मुझे मौका मिला था यहाँ जाने का, एंड बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है जिसमें हमारी पोस्ट नीचे दिखती है, उनकी पोस्ट ऊपर दिखती है।
3: अच्छा।
4: इट इज वेरी वेरी मतलब सरप्राइजिंग टू इवन इमेजिन कि वो उस समय मतलब कितना हौसला और कितना जज्बा था इनमें जवानों में और उनको लीड करने वाले अफसरों में जो ऐसे हालात में भी लड़े थे और बिल्कुल डटे रहे थे। एंड इन हिज ऑनर दिस सेक्टर इज नोन एज सब सेक्टर हनीफ।
3: सर, इनके इस बलिदान के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
4: बिल्कुल, उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था
3: जी।
4: इस युद्ध में और भी बहुत सारे वीर सैनिक और अफसर थे जिन्हें कि ये सम्मान जो है हासिल हुए थे। हम चाहेंगे कि उसका जिक्र हम आगे करें।
3: जी बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, ये युद्ध ऐसे नौजवानों की गौरव गाथा है जिन्होंने सीमा पर अपनी बहादुरी, दिलेरी और अपने बलिदान से एक मिसाल कायम की। इस युद्ध में जिन नौजवानों ने अपना बलिदान दिया है उनमें से ज्यादातर ने अपनी उम्र के 30 बसंत भी नहीं देखे थे। श्रोताओ, कारगिल की लड़ाई 22 से 24 साल के कुछ असाधारण नौजवान अफसर और सिपाहियों की जबरदस्त हिम्मत की लड़ाई है जिन्होंने अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। चाहे उनका जिक्र हो या ना हो, वो हमेशा हमारे हीरो रहेंगे और ये देश सदा उनका ऋणी रहेगा। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं संपन्न करते हैं। सर, आप यहाँ आए और अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू पूर्वा जी। जय हिंद एंड जय हिंद श्रोताओं।
3: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। श्रोताओं, मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो दीजिए अनुमति अब इस कार्यक्रम से। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय था करगिल युद्ध। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत कर रही थी पूर्वा खले।

0: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज हम भारत डायनामिक्स लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम को स्वर दे रहे हैं दीपक नेमा और भगवती सक्सेना।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL आत्मनिर्भर भारत की मिसाइल शक्ति के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: दादू दादू दादू कहाँ हो आप?
2: दादाजी, हमारे कॉलेज में रक्षा प्रौद्योगिकी पर विशेष व्याख्यान हुआ था।
3: अरे अरे अरे बेटा, एक मिनट पहले आराम से बैठ जाओ।
2: दादू सुनो तो, वहाँ पर मैंने भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL का नाम सुना था और सर कह रहे थे कि ये संस्था भारत की सुरक्षा का एक मजबूत आधार है। दादू, क्या आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएंगे ना?
3: हाँ हाँ जरूर बेटा, आज मैं तुम्हें इसी संस्था की कहानी सुनाऊंगा।
2: ओके दादाजी।
3: हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो आराम से। देखो बेटा, इसने भारत को मिसाइल निर्माण में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: अच्छा दादाजी, यानी

0: इसीलिए भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अधीन एक ऐसे संस्थान की स्थापना की जो देश में ही आधुनिक मिसाइलों और रक्षा प्रणालियों का निर्माण कर सके।
1: दादाजी, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे हमने पिछली बार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के बारे में जाना था। वो भी देश की रक्षा यानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई थी, है ना? तो क्या भारत डायनामिक्स लिमिटेड उससे अलग है?
0: बहुत बढ़िया, लगता है तुम्हें हमारी पिछली चर्चा अच्छी तरह से याद है बिटिया।
1: वो तो है दादाजी।
0: वास्तव में BEL और BDL दोनों ही भारत की रक्षा शक्ति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां BEL मुख्य रूप से रडार, संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण करती है, वहीं BDL का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार की मिसाइलों, टॉर्पीडो और हथियार प्रणालियों का निर्माण करना होता है बेटा।
1: तो दादाजी, BDL का मुख्यालय कहाँ पर है?
0: ये बेटा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। और मजे की बात ये है कि ये आज भारत की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में से एक माना जाता है।
1: हैदराबाद? ये तो वही शहर है दादू जहाँ पहले से कई वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान भी हैं।
0: हाँ बेटा, सब कुछ याद है तुमको। हैदराबाद को भारत की रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है बिटिया। यहाँ DRDO की कई प्रयोगशालाएं, रक्षा अनुसंधान केंद्र और अत्याधुनिक औद्योगिक इकाइयां स्थित है। इसी कारण BDL के विकास में भी इस शहर की विशेष भूमिका है।
1: लेकिन दादाजी, एक बात अभी भी मेरे मन में।
0: पूछो।
1: जब मिसाइलें और हथियार दूसरे देशों से खरीदे जा सकते थे, तब भारत को अपनी अलग संस्था बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
0: इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारी परीक्षा कल है, तुम्हें पढ़ाई के लिए किताब चाहिए। अगर वो किताब तुम्हारे पास है तो तुम जब चाहो पढ़ सकती हो, लेकिन तुम्हें हर बार किसी दूसरे से किताब मांगनी पड़े तो क्या होगा?
1: तो ये हो सकता है कि समय पर किताब ही ना मिले।
0: बिल्कुल, ऐसे ही अगर परीक्षा के ठीक पहले कोई दोस्त किताब देने से मना कर दे, तब
1: तो दादू परेशानी और बढ़ जाएगी ना।
0: हाँ बेटा, यही स्थिति किसी देश की सुरक्षा की भी हो सकती है। अगर कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर रहे तो संकट के समय उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। युद्ध या आपातकाल के समय हथियारों, मिसाइलों और रक्षा उपकरणों की आवश्यकता अचानक बढ़ जाती है बेटा। अब ऐसे समय में यदि विदेशी आपूर्ति रुक जाए तो देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है कि नहीं?
1: यानी अपनी मिसाइलें खुद बनाना सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है दादाजी।
0: हाँ मेरी प्यारी बिटिया, यही सोचकर भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया और आज आत्मनिर्भरता की दिशा में BDL की स्थापना भारत का एक अहम और बड़ा कदम है। तुम जानती हो, जब BDL की स्थापना हुई तब उसका उद्देश्य केवल मिसाइल बनाना नहीं था बेटा, इसके पीछे एक बड़ा राष्ट्रीय सपना था।
1: कैसा सपना दादाजी?
0: यही कि भारत की अपनी रक्षा तकनीक स्वयं विकसित हो, भारतीय वैज्ञानिकों को अपनी काबिलियत साबित करने का अवसर मिले, विदेशी निर्भरता कम हो, देश की सुरक्षा और मजबूत बने। इसके अलावा सबसे जरूरी कि युवाओं के लिए नए नए रोजगार और अनुसंधान के अवसर भी पैदा हो।
1: तो दादाजी, BDL केवल एक संस्थान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने का एक जरूरी हिस्सा है।
0: बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने।
1: दादाजी, क्या सन 70 के उस समय भारत के पास मिसाइलें बनाने का अनुभव था?
0: मेरे ख्याल से बेटा बहुत नहीं था, बहुत कम अनुभव था। लेकिन भारत के पास प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे DRDO और BDL ने मिलकर ऐसी तकनीकें विकसित की जिनकी बदौलत आज हमारा भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल है, जो आधुनिक मिसाइल प्रणालियां खुद विकसित और निर्मित कर रहा है।
1: यानी आज जिन मिसाइलों पर हम गर्व करते हैं ना दादाजी, उनके पीछे सालों की मेहनत और कई सारे वैज्ञानिकों का समर्पण छिपा है।
0: बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, और यही बात हमें प्रेरित करती है कि अगर लगन, ज्ञान और राष्ट्र सेवा का भाव हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।
1: दादाजी अब मैं जान गई हूँ कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं थी, बल्कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था। दादू अब ये बताइए ना कि BDL किन किन आधुनिक मिसाइलों का निर्माण करता है और उनमें कौन सी अद्भुत तकनीकें काम करती हैं?
0: लगता है तुम्हारे अंदर भी एक वैज्ञानिक जाग रहा है।
1: हाँ दादू।
0: अच्छी बात है, अब हम भारत की मिसाइल शक्ति की दुनिया में चलते हैं। लेकिन पहले एक बात समझ लो, मिसाइल कोई आम हथियार नहीं है। ये विज्ञान, गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम है।
1: दादू, थोड़ा आसान तरीके से समझाइए ना, रुचि को समझ में नहीं आया।
0: अच्छा बेटा ठीक है, देखो इसका मतलब ये है कि तुम जैसे जो विद्यार्थी विज्ञान और तकनीक में रुचि रख रहे हैं, उनके लिए ये क्षेत्र बहुत रोमांचक है।
1: ओ, अब समझी। तो अब बताइए कि हम सबसे पहले किस मिसाइल के बारे में जानने वाले हैं?
0: सबसे पहले सुनो बेटा, आकाश मिसाइल के बारे में। कल्पना करो कि कोई दुश्मन विमान या हेलीकॉप्टर हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करे, ऐसे समय में उसे रोकने का काम करती है आकाश मिसाइल। ये एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
1: यानी यह जमीन से छोड़ी जाती है और आसमान में उड़ते लक्ष्य को नष्ट करती है। दादू ये तो किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा है।
0: बिल्कुल सही बेटा, आकाश मिसाइल में अत्याधुनिक रडार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण प्रणाली लगी होती है। ये लक्ष्य की गति, दिशा और ऊंचाई का लगातार विश्लेषण करती रहती है।
1: यानी ये केवल ताकतवर नहीं है बल्कि मेरे जैसी बुद्धिमान भी है।
0: बिल्कुल भाई, हमारी प्यारी रानी बिटिया तो बुद्धिमान है ही।
1: वो तो है।
0: हाँ बेटा देखो, आधुनिक युद्धों में केवल शक्ति नहीं बल्कि सटीकता और बुद्धिमत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
1: दादू मैंने अस्त्र मिसाइल का नाम भी सुन रखा है।
0: हाँ हाँ बेटा, अस्त्र भारत की अत्याधुनिक हवा से हवा में ही मार करने वाली मिसाइल है। इसे लड़ाकू विमानों से छोड़ा जाता है बेटा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ऐसे लक्ष्य को भी नष्ट कर सकती है जो पायलट की आंखों से दिखाई नहीं देता।
1: अच्छा।
0: हाँ।
1: लेकिन जब लक्ष्य दिखाई ही नहीं देता तब मिसाइलों से खोजती कैसे होगी?
0: यही तो इसकी अद्भुत तकनीक है। अस्त्र में अत्याधुनिक सेंसर, रडार और मार्गदर्शन प्रणाली होती है बेटा। ये दुश्मन के विमान से आने वाले संकेतों को पहचान लेती है और उसी के आधार पर लक्ष्य तक पहुंचती है।
1: वाह, जैसे कोई बाज दूर बैठे शिकार को पहचान लेता है।
0: बिल्कुल वैसा ही।
1: अच्छा दादू, और ये नाग मिसाइल क्या है?
0: नाग मिसाइल को विशेष रूप से दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है बेटा। तुमने टैंक देखे हैं?
1: टैंक गणतंत्र दिवस की परेड में देखे थे दादाजी मैंने।
0: हाँ हाँ।
1: पर ये तो बहुत मजबूत और भारी होते हैं।
0: हाँ बेटा, आधुनिक टैंकों पर मोटी बख्तर बंद परत होती है, लेकिन नाग मिसाइल उन्हें भी भेद सकती है। इसे फायर एंड फॉरगेट तकनीक से बनाया गया है बेटा।
1: फायर एंड फॉरगेट तकनीक?
0: हाँ।
1: दादू ये किस तरह की तकनीक है?
0: इसका मतलब है कि बेटा एक बार लक्ष्य निर्धारित करके मिसाइल छोड़ दी जाए तो वो स्वयं लक्ष्य का पीछा करती है, उसे बार बार नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती।
1: दादू ये तो बड़ी कमाल की मिसाइल है। अच्छा, और ये हेलेना मिसाइल का नाम तो बहुत आधुनिक सा लगता है।
0: क्योंकि ये वास्तव में बहुत आधुनिक है बेटा।
1: अच्छा,
0: हेलेना को हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। ये दूर स्थित टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने में बहुत सक्षम है बिटिया। युद्ध के समय हेलीकॉप्टर ऊंचाई से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ऐसे में हेलिना जैसी मिसाइलें सेना को बड़ी जीत दिला देती हैं।
1: आकाश आसमान में काम करती है, नाग जमीन पर काम करती है और हेलिना हेलीकॉप्टर से काम करती है। लेकिन दादू समुद्र में क्या होता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, शाबाश। देखो बेटा, समुद्र की सुरक्षा के लिए टॉर्पीडो का उपयोग किया जाता है। टॉर्पीडो पानी के भीतर चलने वाला एक विशेष हथियार होता है। इसका उपयोग दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्ध पोतों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। बीडीएल हल्के और भारी दोनों प्रकार के टॉर्पीडो का निर्माण करता है बेटा।
1: यानी बीडीएल धरती, आकाश और समुद्र तीनों मोर्चों पर देश की सुरक्षा में अपना योगदान देता है।
0: एकदम सही बेटा, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।
1: दादू, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मिसाइलें सोच भी सकती है।
0: एक तरह से तुम सही कह रही हो बेटा।
1: अच्छा?
0: हाँ हाँ, आज की आधुनिक मिसाइलों में लगे कंप्यूटर प्रति सेकंड हजारों गणनाएं करते हैं। वे ये तय करते हैं कि लक्ष्य कहाँ है, उसकी गति कितनी है, दिशा क्या है, उसे पकड़ने के लिए किस मार्ग से जाना चाहिए। इसीलिए आधुनिक मिसाइलें अत्यंत सटीक होती जा रही हैं बेटा।
1: तो दादाजी, क्या एक मिसाइल बनाने में केवल इंजीनियर ही काम करते हैं?
0: नहीं नहीं बेटा, इसके पीछे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की पूरी टीम काम करती है। सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, भौतिक वैज्ञानिक, गणित कंप्यूटर, इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ, एरोस्पेस इंजीनियर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ, रोबोटिक्स इंजीनियर, यानी विज्ञान की अनेक शाखाएं मिलकर एक आधुनिक मिसाइल का निर्माण करती है बेटा।
1: दादू, ये तो कमाल है भाई, मुझे तो ये जानकर बहुत अचंभा हो रहा है। मैं तो सोचती थी कि मिसाइल बनाने का काम केवल कुछ इंजीनियर ही करते होंगे, लेकिन यहाँ तो विज्ञान की इतनी सारी शाखाएं मिलकर काम करती हैं।
0: बिल्कुल बेटा, वास्तव में किसी भी बड़ी तकनीक के पीछे हजारों लोगों का परिश्रम और वर्षों का अनुसंधान छिपा हुआ होता है। एक मिसाइल केवल धातु, ईंधन और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का समूह नहीं होती, बल्कि ये देश की वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक होती है।
1: दादू, क्या भारत ने हमेशा से मिसाइलें बनाई है?
0: नहीं नहीं बेटा, भारत को क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया था।
1: अच्छा?
0: जिसका नाम था एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि भारत अपनी विभिन्न प्रकार की मिसाइलें स्वयं विकसित करे, और ऐसा हुआ भी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियां विकसित की गई बेटा।
1: दादू, क्या मैं सही सोच रही हूँ? क्या इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी योगदान था?
0: बहुत बड़ा योगदान था बेटा। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने भारतीय मिसाइल कार्यक्रम को नई दिशा दी। उनका मानना था कि यदि भारत को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनना है तो उसे विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ना होगा।
1: दादाजी, मैंने उनके बारे में पढ़ा था। डॉक्टर कलाम बहुत ही साधारण सा जीवन जीते थे।
0: हाँ बेटा, वे केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि महान शिक्षक भी थे। वे हमेशा विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते रहते थे।
1: सही कहा दादाजी आपने। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या ये कारखाने सामान्य फैक्ट्रियों जैसे होते हैं?
0: नहीं नहीं बेटा, रक्षा उत्पादन इकाइयां अत्यंत आधुनिक और सुरक्षित होती हैं। यहाँ हर प्रक्रिया का कड़ा परीक्षण किया जाता है। कई स्थानों पर रोबोट भी कार्य करते हैं। कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें अत्यधिक सटीकता के साथ पुर्जों का निर्माण करती है।
1: रोबोट? सचमुच?
0: हाँ हाँ, आज बीडीएल अपने कई उत्पादन कार्यों में रोबोटिक्स का उपयोग कर रहा है बेटा। कुछ ऐसे कार्य जिनमें अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है, उन्हें रोबोटिक अधिक कुशलता से कर सकते हैं। इससे गुणवत्ता भी बढ़ती है और समय की बचत भी होती है।
1: अच्छा दादू, मैंने हाल ही में इंडस्ट्री 4.0 शब्द सुना था। क्या इसका भी बीडीएल से कोई संबंध है?
0: बिल्कुल, इंडस्ट्री 4.0 का मतलब है आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन प्रणाली को अधिक बुद्धिमान बनाना। और इसमें शामिल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा विश्लेषण, स्मार्ट मशीनें, स्वचालित उत्पादन। बीडीएल भी इन आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपने उत्पादन को और अधिक उन्नत बनाता जा रहा है बेटा।
1: दादू, आजकल एआई की भी तो बहुत चर्चा होती है ना? क्या रक्षा क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है?
0: हाँ बेटा, दुनिया के अनेक देश अब एआई आधारित रक्षा प्रणालियां विकसित कर रहे हैं। एआई की सहायता से लक्ष्य पहचानना आसान होता है, निर्णय लेने की गति बढ़ती है, सुरक्षा प्रणाली अधिक सक्षम बनती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, और इसी दिशा में BDL भी विभिन्न संस्थानों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम कर रहा है।
1: अच्छा दादाजी, क्या युवा भी इसमें योगदान दे सकते हैं?
0: क्यों नहीं, आज भारत में अनेक युवा स्टार्टअप चला रहे हैं। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं भी शुरू की हैं बेटा। युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता नई तकनीकों पर लगातार कार्य कर रहे हैं।
1: दादू, आपने पहले आईडेक्स का नाम लिया था?
0: हाँ हाँ, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, आईडेक्स। ये एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य है कि युवा नव प्रवर्तक और स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र के लिए नई तकनीकें विकसित करें। BDL भी इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेता है बेटा।
1: दादू, फिर भी किसी एक देश के लिए सब कुछ बना लेना तो बहुत मुश्किल लगता है, तो क्या आज भी कुछ उपकरण विदेशों से आयात किए जाते हैं?
0: हाँ, एकदम सही कहा बेटा तुमने। कुछ विशेष तकनीकें अभी भी आयात की जाती हैं, लेकिन भारत तेजी से देशीकरण की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। BDL लगातार ऐसे पुर्जों और तकनीकों को भारत में विकसित करने का प्रयास कर रहा है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें।
1: और इसके फायदे क्या क्या होंगे?
0: लाभ ही लाभ है बेटा। विदेशी मुद्रा की बचत, रोजगार में वृद्धि, तकनीकी ज्ञान का विकास, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा में मजबूती और निर्यात की नई नई संभावनाएं।
1: तो क्या भारत अपने रक्षा उत्पाद दूसरे देशों को भी बेचता है?
0: हाँ बेटा, आज भारत केवल आयातक नहीं है, निर्यातक भी बन रहा है। भारतीय रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है, इससे अनेक देशों की रुचि भारतीय प्रणालियों में लगातार बढ़ती जा रही है बेटा। रुचि बिटिया, अब तुम भला किस सोच में पड़ गई?
1: दादू, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास जो अगला सवाल है ना, वो तो बच्चों वाला है।
0: अच्छा,
1: पर पूछ लेती हूँ कि क्या वैज्ञानिक जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं?
0: नहीं नहीं बेटा, अधिकांश वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है जिज्ञासा, अनुशासन, निरंतर सीखने की आदत और असफलताओं से कभी ना घबराना, समझी?
1: समझ गई। अच्छा ये बताइए,
0: हाँ,
1: कि आने वाले भविष्य की मिसाइलें कैसी होंगी?
0: बहुत रोचक सवाल है। भविष्य में हम देख सकते हैं अधिक बुद्धिमान प्रणालियां, AI आधारित निर्णय क्षमता, अत्यधिक सटीक लक्ष्य भेदन, तेज प्रतिक्रिया प्रणाली, मानव रहित युद्ध प्रणालियां, उन्नत सेंसर तकनीक।
1: और संभव है कि इसमें भी कुछ तकनीकों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों में आज के विद्यार्थी भी शामिल होंगे भविष्य में।
0: बिल्कुल ऐसा हो सकता है बिटिया। याद रखो, हर बड़ा आविष्कार एक छोटे प्रश्न से शुरू होता है। हर वैज्ञानिक कभी ना कभी एक जिज्ञासु विद्यार्थी था, और हर महान उपलब्धि के पीछे सीखने की निरंतर इच्छा होती है।
1: दादू, आज मुझे समझ में आ गया कि विज्ञान केवल पाठ्य पुस्तकों का विषय नहीं है, ये देश की सुरक्षा, प्रगति और भविष्य से जुड़ा हुआ है।
0: और यही कारण है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाएं केवल मिसाइलें नहीं बनाती, बल्कि राष्ट्र के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक सोच को भी मजबूत करती हैं।
1: सच कहूं दादू, अब तो मुझे विज्ञान और भी रोचक लगने लगा है।
0: और यही इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात है बिटिया। जब तुम गणित का कोई प्रश्न हल करती हो, विज्ञान का कोई सिद्धांत समझती हो, या कंप्यूटर पर कोई नया प्रयोग करती हो, तब तुम भी उसी ज्ञान की दुनिया में कदम रख रही होती हो जहां से भविष्य के वैज्ञानिक और इंजीनियर निकलते हैं। कौन जाने, आने वाले वर्षों में भारत की किसी नई मिसाइल, नई रक्षा उपकरण और नई तकनीक के पीछे तुम्हारा भी योगदान हो।
1: ओ दादू, आपका बस चले ना, तो आप तो मुझे आज के आज ही वैज्ञानिक बना दे। लेकिन कम से कम आज मैंने ये तो जाना कि आत्मनिर्भर कैसे बना जा सकता है।
0: बिल्कुल बेटा, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाएं हमें यही तो सिखाती हैं कि ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के बल पर कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बन सकता है।
1: दादाजी, थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे इतना कुछ बताया।
0: अरे बाप रे, तुम्हारी बातों के चक्कर में मेरी चाय का जाने क्या हाल हुआ होगा। चलो चलो चलो चलो, जल्दी से घर चलो बेटा।
1: चलिए चलिए, आपकी चाय पीने का समय हो गया है।
0: हाँ बेटा।
2: श्रोताओं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की मिसाइलें केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों के परिश्रम, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा की भावना का प्रतीक है। अगले भाग में हम जानेंगे किसी और तकनीक के बारे में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाले संस्थान के बारे में। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र भगवती सक्सेना
3: और दीपक नेमा
2: को दीजिए आज्ञा, नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित गुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: देश के संस्थान इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने जानकारी प्राप्त की भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बारे में। इस कार्यक्रम को स्वर दे रहे थे दीपक निमा और भगवती सक्सेना।
1: निजी भर के देखा

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगा हर्ट्ज पर सुनते रहें रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा। आज की कड़ी में हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आज की कड़ी में हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन के बारे में जानेंगे।

0: बांदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के तटवर्ती नगर रत्नागिरी में हुआ था। सन 1857 के विप्लव के बाद हताश भारत को एक ऐसे नायक की जरूरत थी जो लोकमान्य हो, और तिलक परतंत्र भारत के पहले महान लोकनायक बन गए। तिलक के कार्यों के फलक की विशालता उनके व्यक्तित्व को अनायास ही विराट बना देती है। वे यदि प्रखर चिंतक थे तो ओजस्वी वक्ता भी। वे विचारवंत लेखक भी थे और दार्शनिक भी। वे समाज सेवी भी थे और समाज सुधारक भी। वे शिक्षा शास्त्री थे और पत्रकार भी, और उनका मूल मंत्र था किसी भी कीमत पर आजादी। वे ऐसे कर्मयोगी थे जिसने अपनी वाणी और कलम से एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। बापू के शब्दों में कहें तो तिलक का एक एक शब्द लोगों के लिए कानून था। उन्होंने जनजागरण के लिए शिक्षा के प्रसार को जरूरी बताया। उनकी नजर में व्यक्ति के विकास के माने बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी था। जनजागृति की अपार व्यग्रता ने उन्हें पत्रकार बना दिया। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन करके वे भारतीयों के सशक्त प्रवक्ता बन गए। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सूरत अधिवेशन के बाद उन्हें 6 साल के निर्वासन का दंड देकर मांडले जेल भेज दिया गया। मांडले जेल में साहित्य की अनमोल धरोहर गीता रहस्य अपने रचनाकार का इंतजार कर रही थी। जीते जी तिलक का स्वराज का सपना भले ही सच न हुआ हो, लेकिन वे एक ऐसी मशाल जला गए जिसने हमेशा के लिए आजादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
3: हाँ भाई, ये आ गया काका का ढाबा।
4: हाँ, पर तुम्हारा दोस्त तो शायद अब तक यहाँ नहीं पहुँचा।
3: आता ही होगा रमेश भाई, काका की चाय पिए बगैर हम लोगों को चैन कहाँ पड़ता है। लो, वो आ गया।
4: क्या बात है भाई, किस बात पर हंस रहे हो?
3: बस यूं ही, वो कहते हैं ना, आने वाले का स्वागत हंसते मुस्कुराते करना चाहिए।
4: शुक्रिया शुक्रिया। और रमेश भाई, लगता है आपको हमारा शहर रास आ गया।
5: वो तो है भाई, पर जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए सोचा कि एक बार और काका की चाय और कहानी का लुत्फ ले लिया जाए। क्यों नवीन भाई?
6: हाँ भाई, क्यों नहीं। आपकी पहली फरमाइश तो अभी पूरी किए देता हूँ। अरे छोटू बेटा, 4 चाय लाना जरा।
5: और दूसरी?
6: अब भाई, दूसरी फरमाइश पूरी करने के लिए तो सोचना पड़ेगा, अब कुछ सूझ ही नहीं रहा किसके बारे में बताऊं। हाँ भाई छोटू, ला चाय दे सबको, लीजिए चाय।
3: यार छोटू, ये बता, तेरा कद तो अच्छा खासा है, फिर ये नाम छोटू कैसे पड़ा?
6: अरे भाई मैं बताता हूँ, असल में ये अपने सब भाई बहनों में सबसे छोटा है।
4: अच्छा अच्छा, मतलब परिवार में सबसे छोटा है इसलिए ये नाम पड़ा।
6: हाँ लो, इसी बात पे मुझे रमेश की दूसरी फरमाइश पूरी करने का भी मौका मिल गया। असल में देश के ओजस्वी पुरुष लोकमान्य गंगाधर तिलक को यदि बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है तो उसके पीछे भी यही कारण है।
5: अरे वाह, मतलब तिलक जी भी भाई बहनों में सबसे छोटे थे?
6: हाँ, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखल गांव के तिलक परिवार में जन्मे गंगाधर जी को घर में बाल और केशव कहकर बुलाया जाता था। घर में शिक्षण अध्यापन का माहौल होने के कारण उन्हें स्कूल जाने के पहले ही संस्कृत और गणित में महारत हासिल हो गई थी।
7: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्।
8: बाल
7: जी, पिताजी
8: देखो, अब तुम्हें गणित और संस्कृत का ठीक ज्ञान हो गया है, मेरी दृष्टि से अब तुम पाठशाला में पढ़ने के लिए तैयार हो, इसलिए तुम कल से पाठशाला जाओगे। जाओगे ना?
7: जी पिताजी।
9: बच्चों, आज हम सुभाषित श्लोकों का अभ्यास करेंगे।
0: माधव तुम एक श्लोक सुनाओ।
9: गुरुर ब्रह्मा गुरुर
0: एक श्लोक भी ठीक से याद नहीं है। ठीक ठीक ठीक चलो चलो बैठ जाओ। अब कौन सुनाएगा?
7: मैं सुनाऊ मास्टर जी।
0: बाल तुम बेटा तुम्हारा प्रवेश तो अभी हुआ है, क्या तुम्हें श्लोक आते हैं?
7: जी।
0: अच्छा तो फिर सुनाओ।
7: लेकिन कौन सा?
0: अब कोई भी सुनाओ जो याद हो।
7: लेकिन मुझे तो पूरी पुस्तक याद है।
0: हैं? चुप चुप चुप सब चुप हो जाओ। हाँ बेटा बाल तुम श्लोक सुनाओ।
7: गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
0: ये क्या कक्षा में किसने कूड़ा फैलाया है? कहते क्यों नहीं किसने फेंके ये छिलके? बताते हो या लगाओ सबको दो दो। अच्छा तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, सब हाथ आगे करो। कक्षा में मूंगफली खाओगे ये लो। तुम हाँ हाँ तुम इधर आओ ये लो। अब तुम इधर आओ ये लो। अब बाल तुम आओ अपना हाथ आगे करो।
7: नहीं मैंने मूंगफली नहीं खाई इसलिए मैं बेत की मार भी नहीं खाऊंगा।
0: अच्छा तो फिर सच सच बताओ किसने मूंगफली खाई थी?
7: नहीं।
0: क्या
7: मैं किसी का नाम भी नहीं बताऊंगा और बेत की मार भी नहीं खाऊंगा?
0: ये हिम्मत, निकल जाओ कक्षा से।
8: बाल मैंने जो सुना वो ठीक है?
7: जी पिताजी।
8: लेकिन क्यों?
7: क्योंकि मैंने जो अपराध किया ही नहीं था उसका दंड मैं क्यों भोगू? और फिर अपने साथियों के साथ मैं गद्दारी भी नहीं करना चाहता था। पिताजी मैं बड़े होकर अंग्रेजों की बात भी नहीं मानूंगा, उनकी गलत बातों का भी विरोध करूंगा।
5: वाह इतनी सी उम्र में सच के लिए इतना साहस।
6: हाँ तिलक जी के विचारों में यह दृढ़ता उम्र और हालात के चलते और भी दृढ़ होती गई। बचपन से ही उन्हें माँ के गुजर जाने का दुख सहन करना पड़ा और फिर जब थोड़े बड़े हुए तो परंपरा अनुसार 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया। तिलक जी जब कॉलेज में गए तो अक्सर अपने दुबले पतले शरीर और पत्नी सत्यभामा के चलते हंसी का पात्र बन जाते थे।
10: भाई बाल तुम बड़े तो हो गए पर रहे वही बाल गोपाल।
4: हाँ देखो ना कहाँ बाल का बाल जैसा शरीर और कहाँ हमारी भाभी सत्यभामा।
10: सत्य वचन सत्य वचन।
6: अब देखना तुम लोग ये बाल अपने शरीर को कैसे ढाल बनाता है।
11: एक सौ एक एक सौ दो एक सौ तीन ये 115।
10: अरे बाल ये तो तुम्हारा कायाकल्प ही हो गया। ये सब ये चौड़ा सीना ये भरी हुई भुजाएं, वाह मित्र तुमने तो कमाल ही कर दिया। कोई निश्चय करना तो तुमसे सीखे, सच में तुम तो बिल्कुल मिस्टर ब्लंट हो।
6: कौन?
4: बाल एक बुरी खबर है मित्र।
6: क्या हुआ?
4: तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया।

0: मित्र, मुझे दुख हुआ सुनकर कि यदि मैं तुम्हारे कोई काम आ सकूं तो कहने में संकोच न करना।
1: अगर कर, जो नियति में था वो हुआ। वैसे नियति में तो ये भी लिखा है कि यहाँ पुणे के डेक्कन कॉलेज में तुम्हारे जैसे मित्र मिलेंगे, तभी तो यहाँ चला आया। खैर बताओ, आगे क्या करना चाहते हो?
0: तिलक, मैं तो यहीं से LLB करना चाहता हूँ।
1: अरे वाह, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोच रखा है। लेकिन हाँ, वकालत करने के बाद देश को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित हूँ।
0: अरे वाह, अब जब तुमने ये सोच रखा है मिस्टर ब्लंट, तो तुम इस काम को पूरा करके ही रहोगे, और इस काम में भी मैं तुम्हारी मदद के लिए पूरी तरह तैयार हूँ।

0: मित्र, हमारी वकालत की पढ़ाई तो यहाँ समाप्त हुई और अब हमें जल्द से जल्द अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए।
1: तो कोई योजना है या यूं ही हमें बस रास्ते ढूंढते चलना है?
0: योजना भी है और उसके क्रियान्वयन का मार्ग भी।
1: वो क्या?
0: देखो, हमें यदि अंग्रेजों की नीतियों से आम जनता को अवगत कराना है तो हमें समाज का शिक्षा स्तर बढ़ाना ही होगा और इसके लिए हमें सरकारी नौकरी न करके एक स्कूल की स्थापना करनी होगी।
1: स्कूल की?
0: हाँ मित्र, ये एक अंग्रेजी का स्कूल होगा जिसका नाम हम रखेंगे न्यू इंग्लिश स्कूल। अपने नाम के मुताबिक हमारे स्कूल के विद्यार्थी न केवल नई पद्धति से बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगे बल्कि उसका इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भी कर सकेंगे।
1: वाह, बहुत खूब मित्र। लेकिन हमें इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के बड़े बड़े शिक्षाविद और कुछ अध्यापकों की आवश्यकता भी होगी।
0: ठीक कहते हो, लेकिन इतना समर्पित शिक्षाविद हमें मिलेगा कहाँ?
1: दरअसल मैं महान शिक्षाविद श्री विष्णु शास्त्री चिपलूणकर को जानता हूँ। उन्होंने हाल ही में सरकारी नौकरी भी तज दी है।
0: अरे वाह, तो भाई देर किस बात की, चलिए।

0: तो क्या नवीन भाई, चिपलूणकर जी उनकी मदद को तैयार हो गए?
1: हाँ हाँ बिल्कुल। तिलक जी और चिपलूणकर जी दोनों ही एक दूसरे के विचारों से प्रभावित हुए बिना रह ना सके, और अब तो महादेव जोशी और शिवराम आपटे जैसे शिक्षकों के साथ ही स्कूल का शुभारंभ भी हो गया।

0: और अब श्री बाल गंगाधर तिलक हम सभी को संबोधित करेंगे।
1: आज हमारा देश गुलाम है, अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं और हम उसे चुपचाप सहन कर रहे हैं। यह हमारी कायरता है। आज हमें देश की दुर्दशा को समझना होगा, उसे दूर करने का प्रयास करना होगा। इसका मुख्य कारण है शिक्षा का अभाव। शिक्षा के क्षेत्र में भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, इसीलिए इस स्कूल की स्थापना की गई है जहां पर सभी लोगों को भारत की आधुनिक शिक्षा की जानकारी दी जाएगी। इससे सबका विकास होगा। अतः आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे स्कूल में आकर शिक्षा प्राप्त करें। नमस्कार।

0: बधाई हो मित्र, हम सबकी और खास तौर पर आपकी मेहनत रंग लाई।
1: और मैट्रिक की परीक्षा परिणाम में तो हम औरों से बहुत आगे हैं।
0: तो आप तक ये खबर पहुंच ही गई?
1: हाँ अगर कर, लेकिन शिक्षा के साथ हमें सदैव दूसरे संदेशों को समाज में पहुंचाना होगा।
0: बिल्कुल ठीक, तो क्यों ना इस खुशी के मौके का ही लाभ लिया जाए।
1: ये भी ठीक है, चलिए
0: चलिए।

नमस्कार। सर्वप्रथम तो विद्यालय की सफलता के लिए श्री चिपलूणकर जी का, आगरकर जी का, समस्त शिक्षक गण एवं छात्रों को बहुत बहुत बधाई। इस खुशी के मौके पर मैं आप सभी को कुछ सामाजिक कर्तव्यों की याद दिलाना चाहता हूं। आप सब जानते ही हैं कि इस समय देश का क्या हाल है। एक तो अंग्रेजों का राज और ऊपर से हमारी पुरातन कुरीतियां, हमें बाल विवाह, छुआछूत, अशिक्षा, विधवा शोषण जैसी कुरीतियों के खिलाफ लगाम कसनी होगी। जब तक हम स्वयं इन बुराइयों की गुलामी में जकड़े रहेंगे, तब तक अंग्रेजी शासन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इन सामाजिक बुराइयों से समाज को छुटकारा दिलाने के लिए आप सबको हमारी आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना होगा। हमारे स्कूल का मूल उद्देश्य है देश की स्वतंत्रता, जिसे हम सामाजिक सुधार के साथ पाकर रहेंगे।

0: वाह, सचमुच तिलक जी कितने महान उद्देश्य को लेकर चल रहे थे।
1: हाँ, उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन स्कूल के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब स्कूल कार्यकारिणी और तिलक के बीच मतभेद हो गए।
0: वो कैसे?
1: दरअसल तिलक जी तब राजनीतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने लगे थे, और ये बात न्यू इंग्लिश स्कूल के कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों को नागवार गुजरी। इस मसले पर जब सदस्यों के दो समूह बन गए तो तिलक जी ने स्कूल सोसाइटी से इस्तीफा देना ही ठीक समझा।
2: तिलक जी, अब आगे आपकी क्या योजना है?
3: भाई, मैंने सिर्फ स्कूल से त्याग पत्र दिया है, अपने उद्देश्यों को नहीं तजा है।
2: मतलब?
3: मतलब ये कि अब शिक्षा के विस्तार का सबसे व्यापक तरीका अपनाऊंगा।
2: कौन सा तरीका?
3: पत्रकारिता। मैं अब समाचार पत्रों के जरिए शिक्षा का प्रचार करूंगा।
2: लेकिन इसमें तो बहुत खर्च है, आप ये सब कैसे करेंगे?
3: हौसला हो तो सब संभव है मित्र। मैं दफ्तर के नाम पर टूटी फूटी कुर्सी और मेज से ही काम चला लूंगा। कंधे पे टाइप के केस छापे खाने तक ले जाऊंगा और पत्र भी घर घर जाकर स्वयं ही बांटूंगा।
2: वाह तिलक जी, देखिएगा, एक दिन आप इस देश के ललाट की शोभा तिलक बनकर बढ़ोगे।

0: वाह, बाल गंगाधर तिलक ने तो कमाल ही कर दिया। इतने कम समय में इतना बढ़िया अंग्रेजी और मराठी पत्रों का प्रकाशन कर दिया।
1: What an excellent article in Kesari. Beautiful.
2: वाह, क्या संपादकीय लिखी है तिलक जी ने।
3: वाह वाह वाह, तिलक जी ने गाय छान लेख लिया है।

0: सॉन्ग। इंग्लिश न्यूज़पेपर केसरी में ब्रिटिश एजेंट के खिलाफ लिखा गया है।
1: व्हाट?
0: यस सर, लिखा है कि रियासत के शासक राजा शिवाजी राव पर अत्याचार करते हैं।
1: रबेश, पता करो हु इज द एडिटर।
0: सर, ये आर्टिकल खुद एडिटर लोकमान बार घांगड़ ठीलक ने लिखा है।
1: ओह, ठीलक पर मान हानि का मुकदमा दायर करो।

0: पेपर के एडिटर और संरक्षक को 4 महीने की सजा सुनाई जाती है।
1: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
2: जिंदाबाद जिंदाबाद।
1: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
2: जिंदाबाद जिंदाबाद।
1: तिलक जी संघर्ष करो,
2: हम तुम्हारे साथ हैं।
1: तिलक जी संघर्ष करो,
2: हम तुम्हारे साथ हैं।
1: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
2: जिंदाबाद जिंदाबाद।
1: लोकमान्य बाल

0: फिर क्या हुआ नवीन भाई?
1: अब होना क्या था दोस्त, अपनी पहली जेल यात्रा के बाद भी तिलक जी ने अपना काम जारी रखा।
2: तिलक जी, अब तो आपके लेखों का व्यापक असर हो रहा है। आपके आह्वान पर न जाने कितने लोग मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
1: संकोच पूछिए।
2: ये मराठी तो ठीक है, लेकिन आपने हिंदुस्तानियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अंग्रेजी भाषा का चुनाव क्यों किया?
1: देखिए, व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मुझे अंग्रेजी भाषा से गहरा लगाव है, लेकिन मैं अंग्रेजों को भारत में कतई देखना नहीं चाहता। केसरी की भाषा मैंने अंग्रेजी इसलिए चुनी ताकि उसमें लिखी सामग्री से ब्रिटिश शासन भली भांति परिचित होता रहे और हमारे अटल इरादों को अच्छी तरह जान ले।
2: वैसे राजनीतिक चेतना को लेकर तो कांग्रेस भी अच्छा काम कर रही है, आप क्या कहते हैं?
1: मेरा भी कुछ ऐसा ही विचार है, इसीलिए मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूँ और इसके अधिवेशनों के लिए मेरे पास और योजनाएं भी हैं।
3: नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में पधारे सभी कांग्रेसी जन, लोकमान बाल गंगाधर तिलक से तो परिचित हैं ही। लीजिए, अब वो अपना आर्म्स एक्ट सबके सामने रखेंगे।
1: आदरणीय वरिष्ठ जन एवं साथियों, सरकार सेना में जवानों की भर्ती करना चाहती है, लेकिन वो जवानों को ढूंढने में असमर्थ है। यदि उसने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो उसे और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार रणभूमि में लड़ने वाले नौजवानों को नपुंसक बना रही है। यही कारण है कि जनता की निगाह से उसका विश्वास हटता जा रहा है, इसीलिए सरकार हमको संदेह की दृष्टि से देखती है। अतः हमने आर्म्स एक्ट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य सेना में भर्ती होने की कठिनाइयों को दूर करना होगा ताकि हमारे नौजवानों की दुर्दशा ना हो सके।
0: तो नवीन जी, क्या अधिवेशन में आर्म्स एक्ट पास हो गया?
4: हाँ बिल्कुल,
0: सचमुच तिलक जी ने तो कमाल ही कर दिया।
4: अरे, आज जो पूरे देश में और खास तौर पर महाराष्ट्र में जो सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाया जाता है ना, वो भी तिलक जी का ही कमाल है।
0: तिलक जी का?
4: हाँ, उन्होंने ही अपनी संस्कृति को हमेशा अक्षुण बनाए रखने के लिए सार्वजनिक गणपति और शिवाजी समारोह की शुरुआत की थी।
5: अच्छा नवीन भाई, उस अधिवेशन के बाद तो तिलक जी की भूमिका काफी बढ़ गई होगी।
4: हाँ, उसके बाद तो उन्होंने देश के लिए कई काम किए, जेल यात्राएं की, अकाल पीड़ितों की मदद जैसे न जाने कितने सामाजिक कार्य किए, जिन्हें ना तो गिनाया जा सकता है और ना ही भूला जा सकता है। उन्होंने अपने उद्देश्यों को कभी नहीं छोड़ा। इस दौरान उन्हें 52 वर्ष की उम्र में काला पानी तक की सजा भुगतनी पड़ी। कुल मिलाकर अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए लड़े वो, और बीमारी के चलते 1 अगस्त 1920 को हमेशा हमेशा के लिए चले गए।
0: सच में नवीन जी, तिलक जी हमेशा भारत के ललाट पर तिलक की तरह चमकते रहेंगे, भारतीय संस्कृति के प्रतीक पुरुष रहेंगे, और उनकी रोशनी से हरदम रोशन रहेगा हिंदुस्तान हमारा।
4: हाँ भाई, बिल्कुल सच कहते हो तुम। ऐसे ही न जाने कितने लोग हैं जिनके बलिदानों के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं।
0: अच्छा नवीन जी, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है।
4: हाँ हाँ, भगवान आपकी यात्रा सफल करे।
5: अच्छा नवीन जी, नमस्कार।
4: नमस्कार
0: नमस्कार, नमस्कार।
6: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की, क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

फरवरी 1537 में गुजरात के तट पर खारे पानी की लहरें एक ऐसी कूटनीतिक त्रासदी की गवाह बनी जिसने 100 से अधिक वर्षों तक एस्टाडो द इंडिया की प्रतिष्ठा पर एक गहरा दाग लगा दिया। गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर की मृत्यु। सुल्तान बहादुर एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य का संचालन कर रहा था और पुर्तगाल के राजा जोआओ तृतीय के साथ सीधे कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के प्रयासों में अग्रसर था। हालांकि उसके राज्य का तात्कालिक भाग्य पुर्तगाली गवर्नर नूनो दा कुन्हा के साथ एक तनावपूर्ण बैठक पर टिका था। यह वार्ता गवर्नर के जहाज पर हुई जिसे बातचीत की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बजाय यह एक घातक विश्वासघात का मंच बन गया। जैसे ही सुल्तान कतूर नामक एक छोटी नाव में गवर्नर के जहाज से जाने के लिए तैयार हुए, उनके साथ पुर्तगाली अधिकारी मैनुअल डी सूसा भी थे। कुन्हा के बाद के चालाकी भरे विवरण के अनुसार उन्होंने जियाओ डे सेंटियागो नामक एक अनुवादक के माध्यम से सुल्तान को अंतिम संदेश भेजने का प्रयास किया था। उस पल के भ्रम में मैनुअल डी सूसा सुल्तान की अपनी छोटी नाव फुस्टा पर सवार हो गए। कुन्हा ने आरोप लगाया कि सुल्तान ने ही पहले हमला किया था। उन्होंने दावा किया

0: सुल्तान की नाव पर धावा बोल दिया। इस हाथापाई के बीच वो अनहोनी हो गई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सुल्तान बहादुर पानी में गिर गए और संघर्ष और लहरों के बीच डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। गवर्नर कुन्हा ने इस घटना को अपने राजा के सामने एक दैवीय कृत्य के रूप में पेश करने की कोशिश की, जिसने क्षेत्र की शांति सुनिश्चित की थी, लेकिन इसके परिणाम बिल्कुल विपरीत निकले। एक औपचारिक वार्ता के दौरान एक संप्रभु राजा के डूबने की घटना ने पूरे एशिया के दरबारों में पुर्तगालियों की धोखेबाज छवि पक्की कर दी। कई लोगों ने इसे एक गलतफहमी नहीं बल्कि एक ऐसे सम्राट की सोची समझी हत्या माना जो पुर्तगाली ताज का एक वैध कूटनीतिक भागीदार था। इस क्षण के अपराध बोध की गूंज वैश्विक स्तर पर सुनाई दी। इस घटना ने ऑटोमन साम्राज्य को हिंद महासागर में हस्तक्षेप करने के लिए एक नैतिक और कानूनी आधार प्रदान किया। उन्होंने तर्क दिया कि फ्रैंक्स अर्थात पुर्तगालियों के विश्वासघात से मुस्लिम शासकों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। इस घटना को अकबरनामा ने भी अमर कर दिया। एक 17वीं सदी की लघु पेंटिंग सुल्तान को पुर्तगाली नावों से घिरा हुआ दिखाती है, जो साम्राज्य की जवाबदेही की कमी का एक अदृश्य रिकॉर्ड है। बहादुर शाह की मृत्यु ने साबित कर दिया कि साम्राज्य के शुरुआती वर्षों में एक गवर्नर की कार्यवाही दशकों की कूटनीति को कमजोर कर सकती थी, जिसमें अविश्वास और संघर्ष की एक ऐसी विरासत पैदा हुई जिससे पुर्तगाली कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सके।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है विगत दिवस भोपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी। विगत दिवस भोपाल में शामे गजल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश की प्रसिद्ध गजल गायिका कीर्ति सूद और आकृति मेहरा ने प्रस्तुति दी। शनिवार की शाम दिवंगत पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके सदाबहार गीतों से सजी विशेष संध्या दिल ने फिर याद किया का आयोजन भोपाल में किया गया। और अब जानकारी आज के दिन भोपाल में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। श्यामला नृत्य कला अकादमी की ओर से आज शाम 6:30 पर रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप ऑडिटोरियम में भरतनाट्यम आधारित नृत्य संध्या नृत्यांजलि का आयोजन किया जा रहा है। ये था हमारा आज का परिक्रमा कार्यक्रम। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: सन 1498 में जब वास्को डी गामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा, तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे, ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थी, जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात क्रैगनोर के 4 जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। यह समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस यानी एपोस्टल थॉमस से जोड़ता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहली शताब्दी में भारत आए थे और यहीं बस गए और संभवतः यही उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था। जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार एल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरो अर्थात मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टाडो द इंडिया की स्थापना की, उन्हें समझ आया कि यह समुदाय उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। उन्होंने क्रैगनोर और कोलम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे। उनकी आस्था यूरोप के लैटिन संस्कार ईसाई धर्म से मौलिक रूप से भिन्न थी। इस खोज का दिलचस्प विरोधाभास तब सामने आया जब धार्मिक टकराव शुरू हुआ। पुर्तगाली इन खोए हुए ईसाइयों को खोजने के लिए महासागर पार कर आए थे, लेकिन उन्हें पाने के बाद उन्होंने उनकी आस्था को मान्य और धर्म सम्मत मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों की नजर में सेंट थॉमस ईसाई विधर्मी पूर्वी संस्कारों से दूषित थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में जेसुइट्स के आगमन और काउंटर रिफॉर्मेशन की उग्र भावना के साथ पुर्तगाली दृष्टिकोण जिज्ञासा से बदलकर सुधार में बदल गया। 1560 तक इंक्विजिशन को गोवा लाया गया और पुर्तगालियों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को जबरदस्ती रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया। वह प्राचीन समुदाय जो कभी पुर्तगालियों की यात्रा का औचित्य था, अब उनके आध्यात्मिक अनुशासन का लक्ष्य बन गया। ये कहानी एक डरावना उदाहरण है कि कैसे साम्राज्यवादी आंखें वही ढूंढती है जो वे देखना चाहती है और फिर उसे केवल इसीलिए नष्ट कर देती है क्योंकि वे उनके घर से लाई गई छवि से मेल नहीं खाता।
3: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: भारतीय रसायन विज्ञान के थ्री मस्केटियर्स 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की प्रयोगशालाओं में एक गहरा बौद्धिक परिवर्तन आकार ले रहा था। प्रतिष्ठित रसायन शास्त्री F.G. डोनन के मार्गदर्शन में तीन युवा भारतीय विद्वानों ने एक ऐसा बंधन बनाया जो अंततः उनके स्वदेश के वैज्ञानिक और औद्योगिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने वाला था। इतिहास में रसायन विज्ञान के थ्री मस्केटियर्स के रूप में प्रसिद्ध इस समूह में शांति स्वरूप भटनागर, ज्ञानचंद्र घोष और ज्ञानेंद्र नाथ मुखर्जी शामिल थे। उनकी ब्रिटेन की यात्रा भारतीय छात्रों के उस रणनीतिक आंदोलन का हिस्सा थी जो सर्वोत्तम वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पश्चिम में उच्च शिक्षा की तलाश कर रहे थे। यूनिवर्सिटी कॉलेज में उन्हें डोनन के रूप में एक ऐसा गुरु मिला जिसने उपनिवेशिक परिधि और महानगरीय वैज्ञानिक प्रतिष्ठान के बीच एक महत्वपूर्ण संस्थागत सेतु के रूप में कार्य किया। डोनन की प्रयोगशाला एक ऐसी भट्टी साबित हुई जहां इन विद्वानों के साथ औपनिवेशिक अधीनस्थों जैसा व्यवहार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें एक वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के समान भागीदारों के रूप में देखा गया। लंदन में इन वर्षों के दौरान बनी इस मित्रता ने आपसी समर्थन का एक आजीवन नेटवर्क तैयार किया जो उपमहाद्वीप में लौटने पर अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1920 के दशक में भारत लौटने पर थ्री मस्केटियर्स ने एक ऐसी शैक्षणिक दुनिया में प्रवेश किया जो तेजी से विस्तार कर रही थी। जेसी बोस और पीसी राय जैसे वरिष्ठ दिग्गजों की सलाह पर शांति स्वरूप भटनागर को 1921 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भौतिक रसायन विज्ञान के अध्ययन के रूप में नियुक्त किया गया। भटनागर का करियर भारतीय वैज्ञानिक उत्कृष्टता का प्रमाण बन गया। वे रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए नाइट की उपाधि दी गई। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला महानिदेशक उन्हें ही नियुक्त किया गया। जेसी घोष ने भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया और बाद में स्वतंत्र भारत के योजना आयोग में सेवा दी। मुखर्जी के साथ मिलकर इन तीनों ने भारतीय वैज्ञानिकों की उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व किया जिसने यूरोपीय सिद्धांतकारों के लिए केवल तथ्य संग्रहकर्ता की उपनिवेशिक भूमि को अस्वीकार कर दिया था। उनकी सफलता H.B. मेडलिकॉट जैसे ब्रिटिश अधिकारियों के उन नस्लीय पूर्वाग्रहों को सीधा जवाब थी जिन्होंने कभी दावा किया था कि भारतीय मौलिक कार्य करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। इन थ्री मस्केटियर्स ने साबित कर दिया कि भारत का वैज्ञानिक तार मौलिक और प्रभावशाली था। अपने स्वयं के शोध संस्थानों और संघों की स्थापना करके उन्हें भारतीय विज्ञान का ध्यान शुद्ध प्रयोगशाला अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोग की ओर स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने वैज्ञानिक गुरुओं के रूप में कार्य किया और विज्ञान के आधुनिक मंदिर में शोधकर्ताओं की एक नई पीढ़ी को तैयार किया। अंततः उनकी कहानी दर्शाती है कि कैसे एक महानगरीय गुरु और उनके भारतीय शिष्यों के बीच का व्यक्तिगत संबंध एक राष्ट्रवादी वैज्ञानिक भावना को जन्म दे सकता है जिसने भारत को एक आत्मनिर्भर और आधुनिक वैज्ञानिक शक्ति में बदल दिया।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों,
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गुंजन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का ऐसा गुच्छा जिसकी हर पंखुड़ी में इतिहास की धड़कन बसती है, जहां शब्द दीपक बनकर जलते हैं और भावनाएं गंगा जल सी मन को पवित्र करती चली जाती हैं। यहां कविताएं केवल सुनाई नहीं जाती, वे समय के बंद कपाट खोलकर मनुष्य को उसके भीतर छिपे सत्य से मिला देती हैं।
3: श्रोताओं, पिछले अंक में आपने रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 8, 9 और 10 का काव्य पाठ सुना, जहां कर्ण की साधना उस दीपक की तरह दिखाई दी जो आंधियों के बीच भी अपनी लौ बचाए रखता है। महेंद्र पर्वत की नीरवता में बैठा वह सूर्यपुत्र अपने भाग्य से नहीं, स्वयं से युद्ध कर रहा था। गुरु परशुराम के चरणों में बैठकर वह केवल अस्त्रों का ज्ञान नहीं पा रहा था, वह अपने जीवन की टूटी हुई तकदीर को नए पुरुषार्थ से गढ़ने में लगा था। किंतु श्रोताओं, कहा भी तो गया है कि सत्य की डोरी चाहे जितनी लंबी हो, एक दिन सामने आ ही जाती है। नियति ने भी वहीं अपना दांव चला। विषधर का दंश सहकर भी कर्ण की पलकों का न हिलना उस अग्नि का प्रमाण बन गया जो साधारण मनुष्य में नहीं जलती, और उसी क्षण गुरु परशुराम के सामने वह रहस्य खुल पड़ा जिसे कर्ण अपने प्राणों की तरह छिपाए फिर रहा था।
1: श्रोताओं, विश्वास जब टूटता है तो उसकी प्रतिध्वनि पत्थरों में नहीं, हृदय में सुनाई देती है। परशुराम के भीतर भी यही तूफान उठ खड़ा हुआ। एक ओर उनका अटल व्रत, दूसरी ओर पुत्र व्रत प्रिय शिष्य के प्रति उमरता वात्सल्य। मानो धर्म और करुणा आमने सामने खड़े हों और दोनों ही पीछे हटने को तैयार ना हो। और कर्ण, वो अपराधी की तरह नहीं, तपस्वी की भांति खड़ा है। उसके चेहरे पर भय नहीं, केवल ये पीड़ा है कि जिसने उसे अपने हृदय का स्थान दिया, उसी के विश्वास को वो अनजाने में छल बैठा। यही कारण है कि ये प्रसंग केवल शाप की कथा नहीं बनता, ये मनुष्य के भीतर चलने वाले उस महासंग्राम का स्वरूप ले लेता है, जहां प्रेम और प्रतिज्ञा दोनों अपनी अपनी कीमत मांगते हैं।
3: श्रोताओं, समय का रथ अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां शब्द अंगार बनेंगे, आंखें अश्रु से भरेंगी और नियति अपना कठोर निर्णय सुनाएगी। गुरु का क्रोध वज्र की तरह गिरेगा, किंतु उसके भीतर स्नेह की धधकती राख भी दिखाई देगी। और कर्ण, वह टूटकर भी झुकेगा नहीं, क्योंकि उसके भीतर का स्वाभिमान हिमालय की चोटी की तरह अडिग है। तो आइए अब बढ़ते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 11, 12 और 13 की ओर, जहां करुणा महाकाव्य बनती है, वियोग इतिहास रचता है और गुरु शिष्य का ये संबंध मानवता की सबसे उज्जवल गाथाओं में परिवर्तित हो जाता है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं दूसरे सर्ग के भाग 11 का काव्य पाठ और चर्चा।
1: तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या पता था लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला, लेकिन कहां उतारूं मैं, लेकिन कहां उतारूं मैं।
3: इस पद पर बोला कर्ण,
4: दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को, अनल आज है गुरु ज्ञानी, परसाई ये अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग कर जलकर मुनि सत्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा, दंड भोग कर जलकर मुनि सत्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा।
3: परशुराम ने कहा,
1: कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे, पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा, मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं, सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा, है ये मेरा शाप समय पर, उसे भूल तू जाएगा, उसे भूल तू जाएगा, उसे भूल तू जाएगा।
3: परशुराम आहत हैं, उन्हें छल से अधिक उस विश्वास के टूटने की पीड़ा है जिसे उन्होंने पुत्रवत संजोया था। और कर्ण, कर्ण अपराधी सा नहीं तपस्वी सा खड़ा है, दंड को दया समझकर स्वीकारने को तत्पर। श्रोताओं, वे बड़े खरे लोग थे जो अपने धर्म से तनिक भी डिगते नहीं थे, प्रेम को अपने स्वार्थ सिद्धि की ढाल नहीं बनाते थे। आज हम सभी इन मानव मूल्यों और नैतिक बल से कितनी दूर निकल चुके हैं। यही श्राप की त्रासदी है जब स्नेह को भी धर्म के आगे झुकना पड़ता है।
1: श्रोताओं, कर्ण पर श्राप का वज्र गिरा, पर उसके साथ आशीर्वाद की धूप भी झर पड़ी। कर्ण व्याकुल है, उसे जीवन नहीं साधना के निष्फल हो जाने का दुख साल रहा है। और परशुराम, वे भी पत्थर नहीं है, व्रत की मर्यादा उन्हें कठोर बनाती है, पर भीतर का स्नेह बार बार आंखों तक आ जाता है। वे शस्त्र का तेज हरते हैं, पर कर्ण के पौरुष पर विश्वास भी जताते हैं, दंड देते हैं, पर भविष्य की कीर्ति का वरदान भी। यहीं भाग 12 की भूमि तैयार होती है, जहां शाप केवल क्षति नहीं चरित्र की अग्नि परीक्षा बन जाता है। गुरु और शिष्य दोनों अपने अपने धर्म के प्रति अडिग हैं, पर दोनों के हृदय भीग रहे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं द्वितीय सर्ग के भाग 12 का काव्य पाठ।
3: कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहे,
4: हाय हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारूढ़, लिया नहीं जीवन क्यों हर, वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं।
3: परशुराम ने कहा,
1: कर्ण ये शाप अटल है, सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो, इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है, रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से नवीर कोई सब दिन कहलाता है, नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन, तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी, अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओ, अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहां पर हम अभिशप्त किसी जन को, हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच ये बहुत विकल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है। इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो। देखो मत यूं सजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो। व्रत मेरा मत भंग करो, व्रत मेरा मत भंग करो।
3: यह आत्मसंयम की चरम स्थिति है। गुरु स्वयं को कठोर बना रहे हैं ताकि उनका व्रत न टूटे। यह विछोह करुण और उदात्त दोनों है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोह पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूल गुरुह कृपा। अर्थात गुरु मूर्ति का ध्यान करना ही सभी ध्यानों का मूल है। गुरु चरणों की पूजा करना ही सभी पूजाओं का मूल है। गुरु का वाक्य ही सभी मंत्रों का मूल है और गुरु की कृपा ही मोक्ष के समान है। श्रोताओं, अब यदि हम इस श्लोक की भावना को परशुराम और कर्ण के प्रसंग से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि परशुराम के भीतर केवल क्रोध नहीं था, वहां गुरु का वही विराट स्वरूप उपस्थित था। उन्होंने श्राप दिया क्योंकि व्रत और धर्म उनके लिए सर्वोपरि थे, किंतु कर्ण के प्रति उनका स्नेह कम नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तेज हर लिया पर उसकी कीर्ति का वरदान भी दिया। यह द्वंद नहीं गुरु हृदय की व्यापकता है। कर्ण एकलव्य से कम नहीं था गुरु भक्ति में। श्रोताओं, कर्ण की सबसे बड़ी पहचान उसका कवच कुंडल नहीं, उसकी गुरु भक्ति है। जब सत्य उजागर हुआ, जब श्राप मिला, तब भी उसने दृष्टि उठाकर प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि वह गुरु चरणों में झुक गया। जिसने उसे दंड दिया उसी के प्रति उसका सम्मान तनिक भी कम नहीं हुआ। यही तो शिष्यत्व की पराकाष्ठा है, जहां अहम नहीं केवल समर्पण बोलता है। यही गुरु भक्ति कर्ण को महान बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति विपत्ति में भी अपने गुरु का मान रखे वही सच्चा शिष्य कहलाने योग्य होता है।
1: आज के समय में हम देखते हैं कि कई स्थानों पर शिक्षक पात्र और कुपात्र का विवेक खो बैठते हैं। कहीं स्वार्थ, कहीं पक्षपात, कहीं निजी लाभ शिक्षा के पवित्र संबंध को कलुषित कर देते हैं। गुरु का स्थान तभी ऊंचा है जब वो निष्पक्ष हो, न्यायप्रिय हो और शिष्य के उत्थान को अपने अहम से ऊपर रखे। परशुराम का यह प्रसंग हमें स्मरण कराता है कि गुरु का धर्म कठोर हो सकता है पर उसका हृदय करुणामय होना चाहिए। जहां व्रत और प्रेम साथ चलें, वहीं सच्चा शिक्षण जन्म लेता है।
3: श्रोताओं, यही से द्वितीय सर्ग के अंतिम चरण की महाकाव्यात्मक भूमिका प्रकट होती है। श्राप और आशीष, त्याग और करुणा दोनों मिलकर इस क्षण को दिव्य वियोग में रूपांतरित कर देते हैं। गुरु शिष्य को दूर भेजते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रेम का परम रूप विरह ही होता है। आइए अब बढ़ें उस अंतिम प्रसंग की ओर, जहां काल का रथ अविराम है और चलना ही नियति। आइए अब हम बढ़ते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के अंतिम भाग की ओर, भाग 13, जहां करुणा महाकाव्य बनती है और वियोग इतिहास रचता है। परशुराम कहते हैं,
1: आह, बुद्धि कहती थी कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा। जाने क्यों जाए, अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा ना लूं अभिशाप, पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए, पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए।
3: इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वही कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने, अर्ध्य अश्रु का दान दिया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूली लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरि श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, जैसे चांद चलता हो गगन में। यह गुरु का आंतरिक द्वंद है, धर्म और स्नेह का संघर्ष। बाहर कठोरता, भीतर करुणा की गंगा प्रवाहित हो रही है। यह मौन विदाई है, शब्द समाप्त हो गए हैं, केवल अश्रु संवाद कर रहे हैं। यह केवल गुरु शिष्य का वियोग नहीं, यह धर्म और प्रेम के बीच की मौन अग्नि परीक्षा है। परशुराम की बुद्धि अडिग है, पर हृदय भीग चुका है। कर्ण की साधना टूट गई, किंतु उसकी श्रद्धा नहीं टूटी। वह चरण धूलि लेकर चला है, मानो अपने जीवन की शेष ज्योति उसी भक्ति से प्रज्वलित करने लगा हो।
1: श्रोताओं, कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस प्रसंग को केवल करुण घटना नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे मनुष्य के भीतर चलने वाले सनातन संघर्ष, कर्तव्य और करुणा, व्रत और वात्सल्य, न्याय और प्रेम का महाभाव बना दिया। यही कारण है कि यह प्रसंग काल की सीमाओं से परे आज भी उतना ही स्पंदित है जितना तब था, क्योंकि मनुष्य का हृदय आज भी उसी द्वंद्व से गुजरता है। श्रोताओं, इसी करुण दीप्त क्षण के साथ द्वितीय सर्ग को प्रणाम। काव्य गुंजन के आगामी अंक में हम इस महाकाव्य यात्रा के अगले चरण की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां नियति का रथ और भी वेग से आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
3: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
1: और मैं संदीप शर्मा,
5: और मैं दीपक नेमा।
3: श्रोताओं, इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं पर विराम लेती है। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
6: नमस्कार, मैं
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन, जिसके अंतर्गत हमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ सुना। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
6: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ। उसके बाद शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। शाम 6 बजे वतन का राग कार्यक्रम आज केंद्रित होगा स्वाधीनता संग्राम सेनानी भगवती चरण वोहरा के जीवन पर। शाम 6:30 पर कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा भाषा की मर्यादा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी और उनके साथी बाल कलाकार। शाम 7 बजे कार्यक्रम टेक गुरु में आज का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जानकारी देंगे विषय विशेषज्ञ अनुग्रह नागाइच और इनसे बातचीत करेंगे रत्नेश सोनी। शाम 7:30 पर कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज की कड़ी कारगिल युद्ध पर केंद्रित होगी। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले। रात्रि के 8 बजे कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज हम भारत डायनामिक्स लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त करेंगे। रात्रि के 8:30 पर कार्यक्रम हिंदोस्तान हमारा, जो कि केंद्रित होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन पर। और रात्रि के 9 बजे सुने देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। रात्रि के 9:30 पर कार्यक्रम काव्य गुंजन, जिसके अंतर्गत हम कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की, जिन्हें आप शाम 5 बजे से रात के 10 बजे तक सुन सकेंगे। दोपहर के 12 बज रहे हैं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत एवं अन्य सांगीतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहें।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज की इस दोपहर कालीन प्रसारण सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, मैं सुनीता सिंह। कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले आपको बता दें कि क्या कुछ खास है आज दिन में आपके लिए। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने आजादी के। 1 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम भारत भारती। 2 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक और 2:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम अतुल्य भारत। तीन बजे देशभक्ति गीतों का आनंद लीजिएगा तराने आजादी कार्यक्रम में और 4 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम भारत भारती। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज दिन में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। खास आपके लिए बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा अंतराल लेंगे और उसके बाद आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम तराने आजादी के।
1: नमस्कार, आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
2: दिल में रख लो के निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति रचना।

तराने आजादी के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से मुझे, नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार, भारत भारती कार्यक्रम का आज का अंक लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, लोकगीतों में एक पूरी पीढ़ी, एक सदी दर्ज होती है। उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनके सुख दुख, उनकी खुशी उल्लास, उनके पर

श्रोताओं, किसी घर में बच्चे के जन्म से बड़ा भला कौन सा उत्सव हो सकता है। बच्चे का जन्म यानी घर के आंगन में एक फूल का खिल जाना, जीवन की बगिया का महक जाना। शहरी जीवन की बात हो या ग्रामीण अंचल के जीवन की, बच्चे के जन्म की खुशी दोनों ही जगह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। तो आइए आपको सुनवाते हैं मालवा अंचल में बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला ये लोकगीत स्वाति ओखले और साथियों के स्वरों में।

बच्चे के जन्म के साथ खुशियों का वातावरण छा जाता है पूरे घर में। उसकी छोटी छोटी बातें, हल्की सी मुस्कान, जरा सा बोल देना, जैसे खुशियों का झरना बह उठता है घर में। सभी लोग खिलखिला उठते हैं। घर के हर सदस्य का ध्यान उस बच्चे पर ही होता है, वो सो रहा हो या जाग रहा हो। बच्चे की हर बात मन भावन होती है। हल्की सी मुस्कान होठों पर लिए सोती हुई बिटिया, पालने में माँ उसे झुलाती है, लोरी सुनाती है। कैसा अद्भुत दृश्य है, एक माँ जब अपनी बेटी को झूले में झुलाती हुई लोरी गाती है तो किस तरह अपने हृदय के भाव को अभिव्यक्त करती है, इसी का वर्णन इस लोकगीत में। आइए सुनते हैं।

मालवांचल में श्राद्ध पक्ष में संजा पर्व मनाया जाता है। छोटी छोटी कुंवारी कन्याओं का ये पर्व है। गोबर से कुछ चित्र बनाए जाते हैं, चांद और सूरज की आकृति बनाई जाती है, गीत गाए जाते हैं और जीवन के सभी संस्कारों से इन छोटी छोटी कन्याओं को शिक्षित किया जाता है। तो लीजिए प्रस्तुत है इसी पर्व पर गाया जाने वाला लोकगीत स्वाति उखले और साथियों की आवाजों में।

श्रोताओं, हमारा लोक संगीत संस्कार गीतों से समृद्ध है। हर संस्कार पर कोई न कोई लोक गीत अवश्य गाया जाता है। शादी में हल्दी लगाने की परंपरा है। ब्याह के कितने ही दिन पहले से लड़की को हल्दी लगाना शुरू कर दिया जाता है। उसकी सारी सखियां इकट्ठी हो जाती हैं, बारी बारी से हल्दी लगाती हैं, छेड़छाड़ करती हुई, मस्ती करती हुई, खूब मजाक करती हैं और एक अलग ही उल्लास और उमंग का वातावरण तैयार हो जाता है। गाते नाचते हुए हल्दी लगाई जाती है। आइए इसी अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत अब हम आपको सुनवाते हैं। कलाकार हैं स्वाति उखले और साथी।

बारात जब द्वार पर आती है तो कितना उल्लास होता है दोनों ही पक्ष में। जी हाँ, सजे हुए बाराती, घोड़ी पर चढ़ा दूल्हा। भाई, ये मेहमान कोई आम मेहमान थोड़े ही हैं, तो स्वागत भी विशेष होता है। जी हाँ, कंचन थाल सजाया जाता है, मोतियों से चौक पूरे जाते हैं, एक भव्य स्वागत बारातियों का। आइए, ऐसा ही लोकगीत अब आपको सुनवाते हैं स्वाति ओखले और साथियों के स्वरों में।

और श्रोताओं अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं मालवांचल के कुछ ऋतु गीत। जी हाँ, मौसम के अलग अलग रंग अलग अलग स्वर में हमारे मन से संवाद करते हैं और इस संवाद की सांगीतिक अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर होती है, मनोहारी होती है। तपती धूप है, गर्मी का मौसम है, पत्नी खेत में काम कर रहे अपने पति को खाना देने जाती है। रास्ते में बीच में एक कोयल अपनी मीठी बोली से उसे लुभाती है, उसका ध्यान खींचती है। वो किस तरह से उस कोयल से अपने मन की बात करती है, आइए सुने। मारो जी का रोता देवा, जावो हो कोयलिया, मीठी मीठी घणी प्यारी, लागे थारी बोलिया।

कड़कती धूप के बाद ठंडी हवा और बारिश की जरूरत मन को भी होती है और धरती को भी। वर्षा शुभता है, मंगल है, समृद्धि है, धन है, जीवन है। इसलिए सहज ही इंद्रदेव से प्रार्थना आरंभ हो जाती है।

श्रोताओं, हम बात करें साहित्य की, नृत्य की, चित्रकारी की या गीत संगीत की। राधा कृष्ण की उपस्थिति हर जगह है, तो भला लोक जीवन में, हमारे लोक संगीत में राधा कृष्ण की उपस्थिति कैसे न हो। धरती से वर्षा विदा ले चुकी है और शरद ऋतु उतर आई है। जमुना के तीर पर राधा और कृष्ण की अटखेलियां देखते ही बनती हैं। इसी मनोहारी दृश्य का वर्णन इस लोक भजन में। स्वर स्वाति उखले और साथियों के हैं।

श्रोताओं, अब शरद ऋतु के बाद वसंत का आगमन हो चुका है। जी हाँ, ऋतुराज का आगमन। पलाश दहकने लगे हैं, गुलाब खिलने लगे हैं, बुलबुल गाने लगी है, महुए पक गए हैं, आम्र मंजरियों की भीनी भीनी सी महक हवाओं में घुलने लगी है, खेतों में सरसों फूल उठी है, रंग बासंती धरती पर तो है ही, तन और मन पर भी चढ़ने लगा है।

श्रोताओं, ये थी वसंत की छटा। जी हाँ, इस लोकगीत के साथ ही रंग बासंती आपके चारों ओर बिखर गया है। वसंत यानी प्रेम, वसंत यानी आरंभ, वसंत यानी उल्लास, उमंग, खुशी। तो ये उल्लास, ये उमंग, ये खुशी आप सभी के जीवन में बनी रहे, यही शुभकामना है हमारी। चलते चलते आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे स्वाति उखले और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब भारत भारती कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद प्रस्तुत करता है प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चिंतन की गौरवशाली परंपरा की वानगी देने वाला अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।
2: इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक से जिनकी सृष्टि और जीवन के किसी विशिष्ट अंग से जुड़ी अवधारणा ने एक महती वैज्ञानिक परिकल्पना को जन्म दिया।
1: वो परिकल्पना और सिद्धांत जिसका विकास पश्चिमी जगत 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद ही कर पाया। उदाहरणार्थ ज्यामिति का 29वां प्रमेय, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, वस्तुतः ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का नहीं है। इसकी खोज शताब्दियों पूर्व ऋषि बोधायन कर चुके थे। ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा हमें बताएगी वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था, चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति या सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नक्षत्रों की गतियों का सटीक हिसाब हो, या सूर्य चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणियों का अथवा कैलेंडर का निर्माण, पदार्थों की संरचना की बात हो अथवा पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की चर्चा।
2: दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ग्रहों नक्षत्रों ज्योतिष गणित से लेकर वनस्पति चिकित्सा शल्य औषधि रसायन आदि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान की सुव्यवस्थित और सुदृढ़ प्रणाली को जन्म दिया।
1: ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा देश की नई पीढ़ी को रूबरू कराएगी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में वेदकालीन भारत की अद्वितीय और गौरवशाली उपलब्धियों से, ताकि हमारे युवा साथी हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित हो सकें, उस पर गर्व कर सकें और प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की खोज के लिए प्रेरित हो सके।
3: नमस्ते गुरुजी।
1: नमस्ते नमस्ते। सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं।
4: जी गुरुजी।
1: अच्छा, आज कौन कौन नहीं आया? अरे, ये सीट नंबर 5 पर कौन बैठता है?
5: कुमारी रचना।
1: उसे क्या हुआ? वो आज क्यों नहीं आई?
6: गुरुजी, उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो कल जब अपनी स्कूटी से घर जा रही थी

0: 26 शताब्दी पहले महर्षि सुश्रुत ने युद्ध में घायल एक सैनिक की कटी हुई नाक को इस तकनीक द्वारा फिर से यानी कि पहले की ही तरह बना दिया था।
1: फिर तो गुरुजी महर्षि सुश्रुत दुनिया के पहले प्लास्टिक सर्जन हुए ना?
0: बिल्कुल ठीक, तुम सही कह रही हो। आज विश्व भर के सभी शल्य चिकित्सक महर्षि सुश्रुत को दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक के रूप में स्वीकार करते हैं। बच्चों, हाल ही में इंग्लैंड के शल्य चिकित्सकों के संगठन ने विश्व के श्रेष्ठ और महान शल्य चिकित्सकों के चित्रों का एक कैलेंडर निकाला था, और जानते हो जिसमें सबसे पहला चित्र विश्व के सबसे पहले शल्य चिकित्सक के रूप में महर्षि सुश्रुत का था। हाँ, उन्होंने उनका चित्र छापकर उनको सम्मानित किया है।
1: यह तो हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है गुरुजी।
0: बिल्कुल ठीक, और ये सही है। यथार्थ में आज महर्षि सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जनों का पिता कहा जाता है। उनके चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत संहिता में जो चिकित्सा संबंधी ज्ञान दिया गया है वो आज भी उपयोगी है। इससे सहज सिद्ध हो जाता है कि चिकित्सा संबंधी ज्ञान में भी भारत विश्व के बाकी सभी देशों से आगे था। बच्चों, एक बात और।
2: क्या बात गुरुजी?
0: 8वीं शताब्दी में सुश्रुत संहिता का अनुवाद अरबी भाषा में हुआ। इसका नाम था किताब शाशुने हिंदी। अन्य एक और अनुवाद किताबे सुश्रुत के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है।
3: गुरुजी, क्यों ना आज हम महर्षि सुश्रुत के विषय में और जानकारी प्राप्त करें?
0: क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन इसके लिए हमें वेदकालीन भारत में चलना होगा। मैं तुम्हें ईसा से पूर्व 1500 वर्ष पूर्व के भारत की झलक दिखाने महान शल्य चिकित्सक महर्षि सुश्रुत के आश्रम में ले चलता हूँ।

0: महर्षि सुश्रुत आचार्य श्री कृपया द्वार खोले, आपात स्थिति है आचार्य श्री।
1: अरे कौन है भाई, इतनी अर्ध रात्रि में आखिर किसे हमारी आवश्यकता पड़ गई? अरे भाई आ रहा हूँ, क्या दरवाजे के किवाड़ तोड़कर ही दम लोगे? थोड़ा धीरज रखो, खोल रहा हूँ। कौन है? थोड़ा दीपक के प्रकाश में आओ तो। अरे तुम तो काफी घायल हो, चेहरा रक्त से सना हुआ है, वस्त्र भी रक्त में भीगे हुए हैं।
0: क्षमा करें महर्षि, आपात स्थिति नहीं होती तो मैं इस अर्ध रात्रि में आपको यूं कष्ट नहीं देता।
1: ओह, तुम्हारी नासिका तो पूरी तरह कट गई है, कंधे और हाथ पर भी घाव है। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सैनिक दिखते हो।
0: आचार्य श्री का अनुमान सही है, महल परिसर में आतताई आक्रमण हुआ था। अचानक हुए प्रहार से नासिका कट गई, हालांकि आतताई मारा गया। महाराज की आज्ञा थी आपकी शरण में आऊं, आप ही इसका उपचार कर पाएंगे।
1: ठीक है ठीक है, अधिक वार्तालाप करना ठीक नहीं है, शांत होकर इस आसंदी पर बैठो, रक्त काफी बह रहा है। मैं तुम्हें औषधि मिश्रित जल देता हूं, तुम इससे मुंह को अच्छी तरह धो लो, इससे रक्त बहना तो बंद होगा ही, साथ ही घाव पकने की संभावना भी समाप्त हो जाएगी।
0: इससे मुंह धोने पर तो बहुत तीव्र जलन हो रही है।
1: जलन की चिंता छोड़कर मुंह को इस औषधीय जल से एक बार और धो लो, आरंभ में थोड़ी जलन अवश्य होगी, इसे तुम्हें सहना पड़ेगा, थोड़ी देर पश्चात तुम्हें आराम मिलने लगेगा।
0: दो बार मुंह धो लिया, अब
1: वस्त्र उतार कर घायल कंधे और हाथों को भी अच्छी तरह इस जल से धो डालो और फिर इस अंदर वाले कक्ष में आ जाओ, मैं उपचार की तैयारी करता हूं।
0: जी। महर्षि हम आ गए, कंधा और हाथ धो लिए।
1: आओ आओ, इस तखत पर बिछे गद्दे पर शांत होकर बैठ जाओ। लो ये पेय पी लो।
0: जी, गंध बता रही है, ये तो मदिरा है।
1: हाँ ये मदिरा ही है, ये निश्चेतक का कार्य करेगी, इसे पीने से शल्य क्रिया के समय तुम्हें अधिक पीड़ा महसूस नहीं होगी।
0: अच्छा, शल्य क्रिया? आप ये चाकू और चिमटी किस लिए निकाल रहे हैं आचार्य?
1: शल्य क्रिया के लिए, तुम्हें अपनी नासिका पहले जैसी बनवानी है ना?
0: इसीलिए तो महाराज ने हमें आपकी शरण में भेजा है। ये आप चाकू और चिमटी को आग में तपा क्यों रहे हैं? क्या तप्त चाकू से शल्य क्रिया करेंगे? इससे तो पीड़ा काफी बढ़ जाएगी आचार्य।
1: तुम्हें अपनी नासिका ठीक ठीक बनवानी है कि नहीं?
0: बनवानी है आचार्य।
1: तो एकदम शांत होकर बैठे रहो, बिना कुछ बोले। शल्य क्रिया के पहले उपकरणों को आग में तपा लेने से घाव पकने की संभावना समाप्त हो जाती है। अब ये बताओ, मदिरा ने कुछ असर किया है या नहीं? नहीं तो एक पात्र मदिरा और पिलाओ।
0: नहीं, अब तो नशा धीरे धीरे बढ़ चला है और पीड़ा भी काफी कम हो गई है। ये आप लता के बड़े बड़े से पत्ते से नाक पर क्या कर रहे हैं?
1: तुम्हारी नाक का माप ले रहा हूँ। अब इस चाकू से तुम्हारे माथे से नाक के लिए त्वचा काट कर निकालूंगा।
0: क्या चाकू से त्वचा?
1: अचेत हो रहा है, यानी मदिरा ने अपना कार्य कर दिया है, अब शल्य क्रिया प्रारंभ की जा सकती है।
2: आचार्य श्री।
1: अरे आत्रेय मुनि आप, मैं विचार ही कर रहा था इस अवसर पर आपको यहां होना चाहिए था, पर अर्धरात्रि का समय देखकर मैंने आपको निद्रा से जगाना उचित नहीं समझा।
2: आपने मुझे स्मरण किया और देखिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो गया। संभवतः इस पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा असह्य थी, सो यह आपकी कुटी का द्वार जोर जोर से पीट रहा था और आपको पुकार रहा था, उसी ने मुझे निद्रा से जगा दिया। फिर आपकी चिकित्सा कक्ष में मशाल के तीव्र प्रकाश ने मुझे बता दिया आप किसी शल्य क्रिया में व्यस्त हो गए हैं, सो मैं जिज्ञासावश चला आया। हर शल्य क्रिया कुछ न कुछ नवीन शिक्षा तो देती ही है।
1: बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे काफी सहायता मिल जाएगी।
2: आचार्य श्री, यह तो मैं नहीं कह सकता कि मैं आपको आपके कार्य में कितना सहायक हो सकूंगा, पर हाँ यहां उपस्थित होकर मुझे अवश्य बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
1: मुनिवर, आप देख रहे हैं ना, इस सैनिक की नासिका पूरी तरह कट गई है
2: जी।
1: मैं इसके चेहरे पर नई नाक लगाने के लिए एक नई पद्धति विकसित कर रहा हूँ।
2: पिछली बार तो आपने व्यक्ति के गाल से चमड़ी निकालकर नाक बनाई थी, इस बार?
1: हाँ, वो आनंद पल्ला विधि थी, आज मैं ललाट पल्ला विधि विकसित कर रहा हूँ।
2: अच्छा।
1: इसमें गाल के स्थान पर माथे यानी ललाट से चमड़ी निकालकर नाक बनाई जाएगी। देखिए, मैंने महीन मोम की ये कृत्रिम नाक बनाई है, अब मैं इसे कटी नाक के स्थान पर लगाता हूँ। देखो ठीक लगी है ना?
2: हाँ बिल्कुल सही बैठी है, जैसे असली नासिका हो।
1: ये कृत्रिम नाक का आकार बन गया। अब मैं इसे यहाँ से निकालता हूँ और इसे फैलाकर इस सैनिक के ललाट पर लगा देता हूँ। देख रहे हैं ना, कृत्रिम नाक बनाने के लिए जितनी चमड़ी हमें चाहिए उसका आकार इसके माथे यानी ललाट पर लगी मोम की इस परत से स्पष्ट हो जाएगा। अब मैं चाकू से निशान लगाकर ललाट से इस आकार की चमड़ी निकालता हूँ। आप जरा इसका सिर पकड़ लें, देखिए हिले नहीं।
2: जी जी,
1: ये निशान लगाए और ये चमड़ी को काटा और ये चिमटी से उठा ली। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आंखों के मध्य छोटे से स्थान से चमड़ी जुड़ी रहनी चाहिए। अच्छा। आप देख रहे हैं ना?
2: हाँ हाँ हाँ, देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। अब आप इसे ऊपर से चिमटी के सहारे नीचे कटी नाक के स्थान पर जोड़ देंगे।
1: आपने बिल्कुल ठीक समझा। ये मैंने बची नाक के दो हिस्से कर पीछे की ओर चीरा लगाया और अब माथे की चमड़ी को नीचे लाकर नाक का आकार देते हुए इन चीरों में फंसा दिया। आगे की प्रक्रिया तो वही है जो हम आनंद पल्ला विधि में अपनाते हैं।
2: हाँ।
1: आप ललाट से निकाली गई चमड़ी के स्थान पर औषधि लगाकर पट्टी बांधिए।
2: जी।
1: मैं कृत्रिम नासिका में दो नलिकाएं डालकर दिए गए आकार पर औषधि लगाकर घुंची और लाल चंदन का महीन बुरादा छिड़कता हूँ और मदिरा हल्दी का लेप लगाता हूँ।
2: ये मैंने ललाट पर औषधि लगाकर पट्टी बांध दी है, अब तो नाक के स्थान पर भी रोई रखकर घी छिड़कना है और पट्टी बांधनी है ना?
1: जी हाँ, इसके साथ ही शल्य क्रिया पूरी हो जाएगी, पर रोगी को 5 दिनों तक बिस्तर पर ही लेटे रहना होगा और हमें औषधि और जड़ी बूटी का प्रयोग निरंतर करते रहना होगा। कुछ समय बाद नासिका पहले की तरह ही दिखाई देगी और ललाट पर चमड़ी हटाने के चिन्ह भी मिट जाएंगे।
2: लीजिए, नई नाक का भी उपचार कर दिया है, अब
1: आप जाकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए, फिर अलस भोर में तो निद्रा त्यागनी ही होगी। मैं इसका ध्यान रखता रहूंगा।
2: जैसी आज्ञा, चलता हूं। प्रातः प्रार्थना सत्र में आपसे भेंट होती है।
3: मुनिषी, सुना है कल अर्धरात्रि में आपने और आचार्य सुश्रुत ने मिलकर शल्य क्रिया की और एक सैनिक की कटी नासिका पुनः बना दी।
2: हाँ ये सत्य है, पर ये पहली बार तो नहीं हुआ है। महर्षि सुश्रुत तो ऐसी अनेक शल्य क्रियाएं कर चुके हैं जिनके द्वारा वे कटे ओष्ठ नाक आदि अंगों को पुनः जोड़ने या भग्न अंगों की मरम्मत कर उन्हें पहले जैसा ही बना देने का काम करते रहे हैं।
3: मुनि आत्रेय, ये तो चमत्कार जैसा ही है, कटे अंगों को पुनः जोड़ देना। क्या एक अद्भुत संकल्पना अभूतपूर्व घटना नहीं है?
2: नहीं वत्स, ये अभूतपूर्व घटना नहीं है।
3: प्रणाम आचार्य श्री।
1: आयुष्मान यशस्वी हूं। वत्स, तुम्हें स्मरण होगा ऋग्वेद में बताया गया है, जब विमना और विश्वक ऋषि उद्भ्रांत हो गए थे तब शल्य क्रिया द्वारा उनका रोग दूर किया गया था। ऐसे ही जब नारद ऋषि पूर्ण रूप से बधिर हो गए थे तब शल्य क्रिया द्वारा ही उनकी श्रवण शक्ति वापस लौटाई गई थी। फिर पूर्णतः तथा अंशतः कटे अंगों को जोड़ने का पहला उदाहरण दक्ष प्रजापति के कटे सिर को जोड़े जाने का मिलता है। ये शल्य क्रिया अश्विनी कुमार ने की थी। इस प्रकार शिव शंकर ने अपने पुत्र गणेश का मस्तक क्षत हो जाने पर उनके धड़ पर हाथी का सिर जोड़ा था। इतना ही नहीं, नेत्र जैसे कोमल अंग की शल्य क्रिया द्वारा वंदन ऋषि को ज्योति वापस करने का प्रकरण भी ऋग्वेद में वर्णित है।
3: इसीलिए मैं मुनि श्री आत्रेय से कह रहा हूँ कि वे आपके द्वारा की गई शल्य क्रियाओं, आपके अनुभवों और ज्ञान को संजोते लिपिबद्ध करते रहें, ताकि भावी पीढ़ी को आपके ज्ञान अनुभवों का लाभ मिल सके।
1: वत्स, ये कार्य तो हम कर ही रहे हैं। हमारा ग्रंथ सुश्रुत संहिता अब लगभग पूर्ण हो रहा है। इसमें हमने शल्य चिकित्सा से संबंधित सभी आवश्यक और उपयोगी जानकारी संजोई है। इसके संबंध में मुनि आत्रेय तुम्हें विस्तार से बतलाएंगे, पर हमारा मानना है चिकित्सा के क्षेत्र में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण भी अति आवश्यक है। इसी हेतु हम व्यवहारिक ज्ञान के लिए मुर्दों और पुतलों का विच्छेदन करते रहते हैं। अब हमारे ध्यान का समय हो चला है, हम चलते हैं।
3: प्रणाम।
1: मेधावी हो।
3: मुनिश्री, महर्षि तो ध्यान के लिए गए, फिर सत्संग सत्र में तो अभी देरी है, क्यों ना हम सुश्रुत संहिता पर चर्चा कर ले।
2: अवश्य। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वो यह कि महर्षि सुश्रुत ऋषि विश्वामित्र के वंशज हैं। फिर उन्होंने वैद्यक और शल्य चिकित्सा का ज्ञान महर्षि धन्वंतरी से वाराणसी में रहकर प्राप्त किया है। अतः वे न केवल शल्य क्रिया के विशेषज्ञ हैं, वरन उन्होंने वैद्यक की अन्य शाखाओं में भी विशेषज्ञता प्राप्त की है। इसीलिए महर्षि के इस ग्रंथ सुश्रुत संहिता में जो ज्ञान विज्ञान की जानकारी दी गई है वह अत्यंत उच्च कोटि की है और संपूर्ण है। ये तो महर्षि का अनुग्रह और मुझ पर स्नेह है जो इस ग्रंथ के पुनर्पठी का काम मुझे सौंप दिया था।
3: ओह, तभी महर्षि ने कहा था कि आप मुझे इसकी विस्तृत जानकारी देंगे।
2: बंधुवर, महर्षि ने सुश्रुत संहिता में मानव शरीर के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी तो दी ही है। शरीर के विभिन्न अंगों की शल्य क्रियाओं की विधियां और उनमें प्रयोग में आने वाले विभिन्न उपकरणों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। आचार्य सुश्रुत ने प्राणी जगत को 4 भागों में बांटा है।
3: मात्र 4 भागों में? हमने तो 84 लाख योनियों की बात सुनी है, ये 4 भाग कैसे हैं?
2: ये 4 भाग हैं। एक, वो जो गर्मी तथा नमी से उत्पन्न होते हैं।
3: अच्छा।
2: जैसे कीट, चींटियां इत्यादि। 2, अपरा के साथ जन्म लेने वाले जैसे मानव व पशु। 3, अंडों से उत्पन्न होने वाले जैसे पक्षी, सरीसृप आदि। और 4, भूमि से पैदा होने वाले जैसे मेंढक इत्यादि। महर्षि ने मानव शरीर में विद्यमान हड्डियों का विवरण भी दिया है।
3: अच्छा, शरीर में कुल कितनी हड्डियां बताई हैं उन्होंने?
2: उन्होंने दांत, उंगली, नाक आदि शरीर के अलग अलग भागों में हड्डियों की संख्या भी अलग अलग बताई है। महर्षि सुश्रुत ने मानव शरीर की अस्थियों का वर्गीकरण करते हुए कलंग की संख्या 60, लंबी अस्थियों की संख्या 20, स्थाई यानी आधारभूत 4, कुर्च यानी अस्थिगुच्छ 8, टखने एवं कलाई की 8, पैर व अग्रबाहु की 8, एड़ी की 4, कोहनी एवं घुटने की 4, जंघा तथा भुजा की 4, पसली तथा उलूखल संधि 72, पृष्ठ की 30, वक्ष की 8, जगनास्थि 1, कूल्हे 2, गुदा की 1, गाल की 2, कान की 2, कनपटी की 2, कष्ठ की 9, ग्रीवा की 9, जबड़े 2, तालु 1, नासिका की 3 तथा कपाल की 6।
3: वाह वाह, शरीर की हड्डियों का बड़ा विशद वर्णन प्रस्तुत किया है आचार्य श्री ने।
2: हाँ, इसी प्रकार महर्षि ने शरीर में स्नायुओं की संख्या 900 तथा 107 मर्म स्थल बताए हैं। महर्षि का कहना है कि इन मर्म स्थानों का ज्ञान प्रत्येक शल्य चिकित्सक को होना चाहिए। महर्षि ने नाभि से 700 शिराओं और 24 धमनियों के निकलने की बात कही है। इसके साथ ही सुश्रुत संहिता में जीवों के अंग प्रत्यंग के वर्णन के साथ उनकी शल्य क्रियाओं की विधियों का भी वर्णन किया गया है।
3: अच्छा, फिर तो शल्य क्रियाओं के कई प्रकार दिए होंगे।
2: हाँ, महर्षि ने 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं का वर्णन किया है, यथा छेदन, मेदन, लेख्य यानी पृथक करना, वैद्य यानी शरीर से हानिकारक द्रव्य निकालना, ऐश्य यानी नाड़ी में घाव ढूंढना, अहार्य यानी हानिकारक उत्पत्ति हटाना, विश्रव्य यानी श्रव्य निकालना तथा सीव्य यानी घाव सीना। इन सभी क्रियाओं का अभ्यास तो हम सब कर ही चुके हैं। इसी तरह सुश्रुत संहिता में उन 8 प्रकार की पट्टियों को बांधने का विवरण भी दिया गया है जिन्हें बांधने का अभ्यास हम लोगों ने किया है।
3: हाँ, लेकिन कुछ पट्टियां बांधने में तो मैं अब भी गड़बड़ा जाता हूँ।
2: फिर ये तो हम सभी जानते ही हैं कि महर्षि सुश्रुत कटी नाक को पुनः बनाने, कटे होठों को पूर्वत बनाने, उधर की चीड़ फाड़ यानी शल्य क्रिया द्वारा शिशु जन्म, मोतियाबिंद के उपचार और पथरी निकालने के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इन सभी का विस्तृत वर्णन सुश्रुत संहिता में दिया गया है। हाँ, एक बात और, शल्य क्रिया में उपयोग में आने वाले आवश्यक यंत्रों और शस्त्रों यानी उपकरणों का भी विस्तृत वर्णन सुश्रुत संहिता में दिया गया है।
3: अच्छा, लगभग कितने प्रकार के उपकरण और यंत्र होंगे वे?
2: सुश्रुत संहिता में 101 विभिन्न प्रकार के उपकरणों की सूची दी गई है। इनमें से अधिकांश तो हमारे देखे हुए हैं। ये हैं 24 प्रकार के स्वास्तिक, 2 प्रकार के संदसों, 28 प्रकार की शलाकाएं तथा 20 प्रकार की नलिकाएं।
3: इन उपकरणों के नाम भी तो एकदम विशिष्ट हैं। जैसे अर्धसार, अतिमुख, अरा, ऐषणी, कृतारिका, मंडलाग, त्रिकुर्चक, मुद्रिका, वेतस, पात्र आदि आदि।
2: हाँ, एक खास बात, महर्षि ने शल्य क्रिया में उपयोग में आने वाले उपकरणों को सर्वोत्कृष्ट इस्पात से बनाए जाने की अनुशंसा की है। साथ ही शल्य क्रिया से पूर्व इन्हें रोग मुक्त बनाने तथा रोगी को संज्ञा शून्य बनाने पर भी जोर दिया है।
3: शल्य क्रिया से संबंधित काफी विशद जानकारी आचार्य श्री ने इस संहिता में सजोई है।
2: हाँ, इसी से तो मैं कहता हूँ कि ये ग्रंथ कालजयी सिद्ध होगा। चर्चाएं तो चलती रहेंगी
3: जी।
2: अब सत्संग सत्र का समय हो गया है, हमें सभा कक्ष में पहुंचाना चाहिए।
3: जी चलिए मुनीश, आइए।

0: तो समझ गए बच्चों?
1: जी गुरुजी।
0: ये थी महर्षि सुश्रुत के व्यक्तित्व और कृतित्व की एक बानगी।
2: वाह सर, प्लास्टिक सर्जरी भारत की देन है। यदि मैं भी आज रचना की तरह क्लास में अनुपस्थित रहता तो इतनी बड़ी जानकारी से आज वंचित रह जाता।
0: एक बात और बच्चों, लगभग 3000 वर्ष पूर्व लिखी गई सुश्रुत संहिता में वर्णित विधि द्वारा ईस्वी सन 1783 में दो अंग्रेज चिकित्सकों डॉक्टर थॉमस क्रूसो और डॉक्टर जेम्स फिनले की उपस्थिति में जॉन कवास की प्लास्टिक सर्जरी सफलतापूर्वक की गई।
1: अरे वाह।
0: हाँ बच्चों, और इस शल्य क्रिया की पूरी रपट 1794 में लंदन से प्रकाशित जेंटलमैन पत्रिका में छपी थी, जिसने यूरोप के पूरे चिकित्सा क्षेत्र में आचार्य सुश्रुत की उपलब्धियों की धूम मचा दी। सभी लोगों ने मुक्त कंठ से माना कि प्लास्टिक सर्जरी भारत की देन।
3: बिल्कुल, बहुत सही, भारत की देन है। कितनी बड़ी चीज हमें आज पता चली।
0: अरे लो, कितने सही समय पर घंटी बजी। आज का विषय भी समाप्त हुआ। ठीक है बच्चों, अब आप लोग जाओ।
1: धन्यवाद गुरुजी।
0: नमस्ते नमस्ते। देखो, कल कोई भी अनुपस्थित नहीं होना, ठीक है? ठीक है। और अच्छा, एक बात और, यहाँ से निकलने के बाद सभी को अस्पताल रचना को देखने जाना है।
1: जी गुरुजी, जरूर जाएंगे।
0: और एक जानकारी और ये समझे कि ये आप लोगों के लिए सूचना भी है, गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य करें, ठीक है?
1: जी, बिल्कुल करेंगे गुरुजी।

0: साथियों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी किसी और ऋषि वैज्ञानिक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें,
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार, 90.8 MHz पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम संस्कृति संवाद के अंतर्गत भारत के दर्शनीय स्थल।
1: अतुल्य भारत।
0: श्रोताओं, इस बार भारत के दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर हम आपको उस शहर में ले चलते हैं जो 1912 तक भारत की राजधानी हुआ करता था।
2: हाँ श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कौन सा होगा वो शहर।
0: चलिए एक और क्लू आपको देते हैं। इस शहर में विवेकानंद जी के गुरु रहा करते थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे।
2: अरे क्यों नहीं समझेंगे भाई, इतना आसान क्लू जो आपने दे दिया है।
0: जी हाँ, अंग्रेजों का कलकत्ता और आज का कोलकाता है ये शहर।
2: हाँ श्रोताओं, एक कहावत कलकत्ता के नाम से मैं आपको सुनाता हूँ। किसी ने पूछा कि अगर किसी कलकत्तियन के पास ढेर सारा फालतू वक्त हो तो वो क्या करता है, तो उसे जवाब मिला, भाई कहीं उसे आने जाने के लिए बस या ट्राम पकड़ लेना चाहिए। अब सवाल करने वाले को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने फिर पूछा, चलो अगर मान लो उसके पास वक्त बहुत कम है, उसे बहुत जल्दी पहुंचना है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, तो फिर उसे जवाब मिला, फिर तो उसे पैदल ही निकल जाना चाहिए।
0: श्रोताओं, कलकत्ता वालों ने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ये जोक खुद ही गढ़ा है।
2: जी हाँ,
0: क्योंकि उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रफ्तार इतनी धीमी है कि अगर किसी को कहीं जल्दी पहुंचना हो तो वे पैदल ही जाना पसंद करते हैं।
2: हाँ, कोलकाता की बात चली है तो सबसे पहला सवाल जहन में यह उठता है कि आखिर यह नाम पड़ा तो पड़ा कैसे। श्रोताओं, इतना तो आप जानते हैं कि यह शहर अंग्रेजों का बसाया हुआ था और इसे कलकत्ता कहा करते थे वे लोग। वजह यह थी कि उन्होंने जिन तीन गांवों को मिलाकर के यह शहर बनाया था उनमें से एक नाम था कलकत्ता, बाकी के दो गांव थे सुतानाटी और गोविंदपुर।
0: लेकिन ये कलकत्ता नाम भी असली नहीं है। असली नाम है काली क्षेत्रो, जिसका मतलब है देवी काली का क्षेत्र। साल 1698 की बात है। उस समय ये तीनों गांव मुगल साम्राज्य में हुआ करते थे और इनकी जागीरदारी एक चौधरी परिवार के पास हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत में अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी और उसे बंगाल में किसी स्थायी ठिकाने की तलाश थी। तो किसी तरह हाथ पांव मारकर उसने इन गांवों की जागीरदारी अपने नाम ट्रांसफर करवा ली।
2: बिल्कुल ठीक, और कंपनी को यह जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने भी सोच समझ करके इसको बसाया और यह काम किया था एक समझदार अफसर जॉब चारनाक ने। उसने देखा कि इन तीनों गांवों के पश्चिम में हुगली नदी है, उत्तर में एक सकरी खाड़ी है और पूर्व में नमकीन झीलें हैं। हुगली नदी इस इलाके को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, तो यह जगह उनके लिए बहुत ही महफूज थी।
0: इस तरह यहाँ अपनी बस्ती बसाने का फायदा ये था कि ये कुदरती तौर पर महफूज थी। इसके अलावा कोई आफत आने पर एक तो हुगली नदी बाढ़ का काम करती, दूसरे इस नदी के जरिए समुद्र की ओर भागा जा सकता था जहाँ अंग्रेजी नेवी की अजेय ताकत इनकी रक्षा करती। चारनाक हालांकि 1693 में ही गुजर चुका था, लेकिन उसकी सलाह को कंपनी ने गांठ बांध लिया था और कोशिश करके 1698 में इस जगह की जागीरदारी प्राप्त कर ही ली।
2: बिल्कुल ठीक, और जैसा कि अंग्रेज हर जगह करते थे उन्होंने यहाँ भी वही किया। उन्होंने फौरन इस जगह की किलेबंदी शुरू कर दी और 1712 में यहाँ फोर्ट विलियम नामक एक मजबूत किला तैयार कर लिया और 1772 में कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी की राजधानी बना और इसके बाद पूरे भारत के ब्रिटिश एम्पायर की राजधानी। लेकिन 1912 में यह जगह दिल्ली को मिल गई और तब से दिल्ली ही भारत की राजधानी हो गई।
0: अब कोलकाता के संबंध में कुछ दिलचस्प तथ्य और हम आपको बताते हैं।
2: बताइए।
0: अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता इतना महत्वपूर्ण हुआ करता था कि वे इसे लंदन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा शहर कहा करते थे। आसान शब्दों में कहें तो उनकी नजर में ब्रिटिश एम्पायर के लिए लंदन के बाद सबसे अहम शहर कलकत्ता ही था।
2: श्रोताओं, आप में से बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि कलकत्ता को सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है, मगर लाख टके का सवाल तो यह है कि क्यों। वह यूं कि जब अंग्रेज लोग कलकत्ता में बसना शुरू किए तो यहाँ इमारतों के निर्माण के लिए गॉथिक, ब्रॉक, रोमन, इस्लामिक और ओरिएंटल डिजाइनों के एक ही तरह के पैटर्न का इस्तेमाल हुआ।
0: अंग्रेज अफसर खास करके पश्चिमी डिजाइनों के बड़े बड़े महलनुमा बंगले बनवाया करते थे। यहाँ तक कि यहाँ के बंगाली बाबू भी इस मामले में पीछे न रहे। जब बंगाल में जमींदारी प्रणाली आई तो जमींदारों के पास अनाप शनाप पैसा आया। इस पैसे से उन्होंने कोलकाता में शानदार हवेलियां बनवाई जिनमें हर तरह के आराम और शान और शौकत की चीजें होती थीं।
2: श्रोताओं, प्रसंग बस आपको यह भी बता दें कि आज इनमें से ज्यादातर हवेलियां खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से कुछ का संरक्षण किया जा रहा है और कुछ को हेरिटेज स्ट्रक्चर घोषित कर दिया गया है।
0: और इस तरह अंग्रेज जेंटलमैन और बंगाली भद्र पुरुषों के बल पर देखते ही देखते कोलकाता अनगिनत महलनुमा हवेलियों से भर गया और ये शहर सिटी ऑफ पैलेसेस कहलाने लगा।
2: फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लेपियर ने कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय कहा है। कोलकातियन सही मायने में जानते थे कि जिंदगी का मजा कैसे उठाया जाए, चाहे दुर्गा पूजा हो, न्यू ईयर हो या अन्य कोई त्योहार हो। कोलकातियन इसे पूरे जोश और खरोस के साथ मनाते थे। पैसे की चाहे कितनी कमी हो, लेकिन जीवन का आनंद उठाने में कोलकाता वाले कभी भी पीछे नहीं रहते थे।
0: एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन कोलकाता में ही स्थित है। इसमें 1,00,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। ये भारत का ऐसा पहला स्टेडियम है जिसमें फ्लड लाइट्स लगाई गई और डे एंड नाइट मैचेस देखने की फैसिलिटी उत्पन्न की गई।
2: श्रोताओं, ईडन गार्डन की तरह ही कलकत्ता का साल्ट लेक स्टेडियम भी पूरी दुनिया में मशहूर है। बंगाली में इसे युवा भारती क्रीड़ा आंगन कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। यह मल्टीपर्पज स्टेडियम आज फुटबॉल मैचों व एथलेटिक इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। श्रोताओं, हम आपको एक बात और बता दें कि इसमें एक साथ 1,20,000 से भी ज्यादा दर्शकों के बैठने की क्षमता है। सोचिए जरा,
0: भारत की पहली मेट्रो ट्रेन दिल्ली या मुंबई में नहीं बल्कि 1984 में कोलकाता में ही शुरू हुई और ये भारत की पहली अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस भी थी। कोलकाता शहर की 3 निशानियां और भी हैं, विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज और ट्राम।
2: हाँ श्रोता, कोलकाता इस मायने में भी भारत के सभी शहरों से अलग है कि यह देश का पहला एकमात्र शहर है जहां सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह समंदर पर नहीं है बल्कि किसी नदी पर स्थित है। जी हाँ, कलकत्ता सी पोर्ट हुगली नदी पर स्थित है। इस पोर्ट की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही की गई थी।
0: और हैंड पुल्ड रिक्शा, जी हाँ, इसे भी शायद सबसे पहले कोलकाता में ही इस्तेमाल किया गया। रिक्शा शब्द जापानी भाषा के जिन रिक्शा शब्द से आया है जिसका मतलब होता है इंसान के द्वारा खींचा जाने वाला रिक्शा। दुनिया को रिक्शे का चलन इसी देश ने दिया है। जब 1868 में मेइजी काल के जापान में ये शुरू हुआ तो इसे उस जमाने की तेज सवारी माना गया क्योंकि इसने पालकियों की जगह ले ली थी।
2: खैर, रिक्शे तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, पुल रिक्शा। इनमें से पुल रिक्शा ही जापानी जिंग रिक्शा है। इसे आप रिक्शा न कहकर के एक टांगा कह सकते हैं जिसमें घोड़े की जगह इंसान जुटता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि टांगे में घोड़े को हाँकने के लिए एक कोचवान होता है जबकि पुल रिक्शा में इंसान ही घोड़ा और इंसान ही कोचवान होता है।
0: आज से 200 साल पहले चीन के जरिए कलकत्ता आए इस पुल रिक्शे ने हर वक्त कलकत्ता को ऑन व्हील्स ही रखा, चाहे बरसात की वजह से गलियों में पानी भरा हो, चाहे भारत बंद हो या चाहे जाम लगा हो। दौड़ती हुई ये पालकियां अपने लिए रास्ता निकाल ही लेती हैं। इसीलिए कलकत्ता में कहते हैं कि मरीज को अगर अस्पताल ले जाना हो तो इससे भरोसेमंद कोई साधन नहीं।
2: फिल्म निर्माता भी अपनी फिल्म में अगर कलकत्ता दिखाना चाहते हैं तो वे इंसानी घोड़े वाला यह तांगा दिखाना नहीं भूलते, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिकल फिल्म हो, चाहे 2 बीघा जमीन हो या नए जमाने की परिणीता हो। यह साबित करने के लिए कि यह सीन असली कलकत्ते में फिल्माई गई है, पुल रिक्शा को कैनवास पर उभारना ही पड़ता है।
0: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं कोलकाता शहर की एक और निशानी यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल की। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का एक बहुत ही खास टूरिस्ट स्पॉट है।
2: जी हाँ,
0: जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया है। ये साल 1902 की बात है जब क्वीन विक्टोरिया का निधन हुआ। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय हुआ करते थे और कलकत्ता भारत की राजधानी। उन्होंने ही सुझाव रखा कि महारानी की याद में कोलकाता में एक म्यूजियम बनाया जाए, इसलिए इसे लॉर्ड कर्जन का ब्रेन चाइल्ड भी कहा जाता है।
2: श्रोता, विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में मुगलिया व ब्रिटिश आर्किटेक्चर का मिला जुला इस्तेमाल किया गया है। इसके भीतर के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में सफेद मकराना संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। दरअसल इसे बनाने के लिए इसके आर्किटेक्ट विलियम इमर्सन ने ताजमहल का मॉडल सामने रखा था। 1921 में इसका उद्घाटन हुआ और उस जमाने में इसके निर्माण की लागत आई थी 1,05,00,000 रुपए।
0: मित्रों, आपको बता दें कि इस इमारत को बनाने में अंग्रेज सरकार ने फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। सारा का सारा पैसा या तो भारत के देशी राजाओं ने दिया या कुछ अमीर लोगों ने, जो इसी बहाने अंग्रेज सरकार का फेवर पाना चाहते थे।
2: विक्टोरिया मेमोरियल में आप ब्रिटिश राज घराने के ढेरों यादगार पेंटिंग्स व मुगल स्टाइल के पेंटिंग्स देख सकते हैं। बंगाल के नवाब का सिंहासन भी इसका एक खास आकर्षण है। इसके खूबसूरत बगीचे में हर शाम लेजर शो, ऑडियो विजुअल शो का आयोजन होता है, जो यहाँ आने वालों के लिए एक यादगार इवेंट होता है। अगर आप विक्टोरिया में जाएं, तो इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
0: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत, जिसमें आज हम आपको सैर करा रहे हैं कोलकाता शहर की। तो चलिए अब चलते हैं कोलकाता शहर के न्यू मार्केट में। भोपाल के न्यू मार्केट की ही तरह कोलकाता में भी एक न्यू मार्केट है, लेकिन बस इसका नाम ही केवल न्यू है। वैसे ये काफी पुराना है। 1874 में शुरू हुआ ये मार्केट उस समय हॉग मार्केट कहलाता था। ये नाम उस वक्त के कलकत्ता कमिश्नर स्टुअर्ट हॉग के नाम पर था। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर न्यू मार्केट रख दिया गया।
2: इस मार्केट के बारे में कहा जाता है कि है कोलकाता का शॉपिंग इंस्टीट्यूशन है, और जिस किसी चीज के बारे में भी आप सोच सकते हैं वह आपको यहाँ मिल जाएगी। कीमतें कम होती हैं और क्वालिटी हाई, लेकिन शर्त यह है कि आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। श्रोताओं, अगर आप नए हैं तो आप नहीं जानते कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, तो फिक्र न कीजिए, न्यू मार्केट घूमने के लिए गाइड भी उपलब्ध हैं।
0: श्रोताओं, कोलकाता शहर काली मंदिर के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। देवी काली शक्ति के 108 रूपों में से एक है, जो अपने भक्तों को हर तरह की आपदा से बचाती हैं। आपको तो याद होगा कि कोलकाता का नाम वस्तुतः कालीकता से आया है, और कारण यह है कि ये क्षेत्र माँ काली का एक खास स्थान है, और यहाँ आज भी आपको ढेरों काली मंदिर मिलेंगे जैसे कि अयोध्या में ढेरों राम मंदिर मिलते हैं।
2: लेकिन इनमें से हम आपको दो खास मंदिरों की जानकारी देना चाहेंगे, और वो है दक्षिणेश्वर का काली मंदिर और काली घाट का काली मंदिर। लोग भ्रमवश कभी कभी इन दोनों मंदिरों को एक ही समझ बैठते हैं, दोनों की ही भारी मान्यता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दक्षिणेश्वर का काली मंदिर जहाँ कलकत्ता के उत्तर में स्थित है, वहीं काली घाट का काली मंदिर दक्षिण में स्थित है।
0: श्रोताओं, माँ काली का एक रूप है भवतरिणी। इस रूप में वे कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विराजमान है। उल्लेख मिलता है कि 1847 के आसपास कोलकाता में एक रानी रोशमोई हुआ करती थी, जो माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी।
2: हाँ, उन्होंने निश्चय किया कि माँ काली के दर्शन करने के लिए वे वाराणसी जाएंगी। लेकिन उसी रात माँ काली उनके स्वप्न में आई और उन्होंने कहा कि मेरे दर्शन के लिए वाराणसी जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम गंगा के तट पर एक मंदिर बनवा करके उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित कर दो, मैं स्वयं उस मंदिर में विराजमान हो जाऊंगी।
0: इस पर रानी ने एक अंग्रेज जॉन हेस्ट से 20 एकड़ का शाहबान बगीचा खरीदा और उस पर यह मंदिर बनवाया। ये बगीचा एक कछुए के आकार का था। कहा जाता है कि इस आकार की भूमि शक्ति पूजा के लिए बहुत ठीक थी। उस जमाने में 9 लाख रुपए खर्च करके रानी रोशमोई ने मंदिर बनवाया। 1855 में इसका निर्माण पूरा होने के बाद इसमें माँ काली की प्रतिमा स्थापित की गई।
2: श्रोताओं, इसके आगे की कहानी तो और भी दिलचस्प है। मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम जिस पुरोहित ने संपन्न कराया था, उसका नाम था राम कुमार चट्टोपाध्याय। जल्द ही इस मंदिर में उनके छोटे भाई, जिनका नाम गदाई था, आकर के शिफ्ट हो गए। आपको बता दें कि गदाई और कोई नहीं रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्हें विवेकानंद जैसे महान पुरुष ने उन्हें अपना गुरु बनाया था।
0: रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कहा जाता था कि माँ काली उन्हें साक्षात दर्शन देती थी, और देती भी क्यों ना, वे माँ में इतने तन्मय रहते थे कि वे अपनी पत्नी शारदा को भी माँ कहते थे और माँ के रूप में ही उनकी पूजा करते थे।
2: आखिरी समय में रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, जिससे उन्हें अपार कष्ट होता था। कई लोगों ने उनसे कहा कि आप तो माँ काली के भक्त हैं, अगर आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो यह बीमारी ठीक हो जाएगी। जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, नहीं, यह कर्म फल है, इसे तो भोगना ही अच्छा है। अगर बिना भोगे दुनिया से चले गए तो इसे भोगने के लिए मुझे फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा।
0: और अब चर्चा काली घाट के काली मंदिर की। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि शक्तिपीठ वे स्थल हैं जहां देवी सती का कोई ना कोई अंग गिरा था। तो जिस जगह पर ये मंदिर स्थित है, वहां पर देवी के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था।
2: श्रोता, सुनने में आता है कि सैकड़ों साल पहले इस जगह पर जंगल हुआ करते थे। एक बार किसी भक्त ने यहाँ पर रोशनी की एक किरण देखी। जब उसने इसका स्रोत ढूंढने की कोशिश की तो पाया कि यह रोशनी पत्थर के अंगूठे से आ रही है। इस अंगूठे के पास ही एक स्वयंभू शिवलिंग भी था। इस पर भक्त ने उस स्थान पर उपासना आरंभ कर दी।
0: श्रोताओं, जहाँ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के निर्माण काल के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है, वहीं काली घाट के मंदिर की प्राचीनता का सही अनुमान हम नहीं लगा सकते। यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मुद्राएं तक मिली हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना हो सकता है।
2: हाँ, कहते हैं कि ओरिजिनल काली मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी मात्र थी, जिस पर आज से 500 साल पहले किसी राजा मानसिंह ने पक्का मंदिर बनवाया। लेकिन जिस रूप में यह मंदिर आज हमें मिलता है, उसका निर्माण तो सन 1809 में बरिशा के चौधरी परिवार ने करवाया था।
0: श्रोताओं, कोलकाता की दुर्गा पूजा तो आपने सुनी ही है कि कितनी भव्य और कितनी विशेष होती है। पूर्वी भारत में शक्ति की आराधना का चलन बहुत पुराना है, और दुर्गा जी तो शक्ति के 108 रूपों में से सबसे प्रबल है। वे एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सिंह की सवारी करती हैं, जिनकी आराधना करके राम जी ने रावण को मारा, जिनका स्मरण करके कृष्ण जी ने कंस का संहार किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिसकी स्तुति करते हैं। उनकी शान में बंगाली लोग अपना सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं।
2: बंगाली जन दुर्गा पूजा को अकाल बोधन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है शक्ति का असमय जागरण। कोलकाता में तो यह त्योहार इतने बड़े पैमाने पर इतने जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है कि देश विदेश के सैलानी भी इसे देखने के लिए यहाँ डेरा डाल देते हैं।
0: 10, 20, 50, 100 नहीं, कई हजार पंडाल यहाँ बनते हैं और भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो बेकाबू हो जाती है। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाती है, कई बार तो पैदल चले बिना पंडाल तक पहुँचना संभव ही नहीं रहता।
2: श्रोताओं, वैसे तो दुर्गा पूजा की परंपरा राम ने शुरू की थी, परंतु आज जिस तड़क भड़क के साथ ये त्योहार मनाया जाता है ना, उसका आरंभ सन 1606 में तरहपुर व नादिया के राजाओं ने शारदीय दुर्गोत्सव के नाम से शुरू किया था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है संस्कृति संवाद, जिसके अंतर्गत आज हम भारत के दर्शनीय स्थलों में आपको सैर करा रहे हैं कलकत्ता शहर की। और चलिए अब बात करते हैं कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज की। श्रोताओं, रुडयार्ड किपलिंग नाम तो आपने सुना ही होगा, वही जिन्होंने जंगल बुक लिखी थी, जिसमें मोगली नाम का एक मशहूर करेक्टर है, जिस पर किसी जमाने में एक हिंदी सीरियल बना और जिसका एक गाना बच्चे गुनगुनाया करते हैं कि जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है।
0: किपलिंग एक जगह लिखते हैं, अरे ये लंदन यहाँ कैसे, इसे देखने के लिए तो भारत आना बनता है।
2: किपलिंग ने ये लाइनें हावड़ा ब्रिज को देखकर ही लिखी थी। कोलकाता की यह पहचान है कि जिस तरह भोपाल का नाम आते ही भोपाल की झील आंखों में तैरने लगती है, उसी तरह कोलकाता का नाम आते ही हावड़ा ब्रिज भी आंखों के सामने तैरने लगता है। वैसे ये कोलकाता का मोनोग्राम भी है।
0: कोई कोलकाता जाए और ये ब्रिज न देखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बल्कि हम तो यही कहेंगे कि वो कोलकाता गया ही नहीं। यमलोक में जिस तरह यमराज होते हैं और क्षीर सागर में विष्णु, उसी तरह कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है। इस शहर के शरीर में धड़कते हुए दिल की तरह, किसी ने तो यहाँ तक लिखा है कि बाकी दुनिया को कोलकाता की पहचान बताने का काम ये ब्रिज ही करता है।
2: हाँ श्रोताओं, हावड़ा ब्रिज एक सस्पेंशन टाइप कैंटिलीवर ब्रिज है, जो हुगली नदी के दोनों किनारों पर जुड़वा नगरों कलकत्ता और हावड़ा को आपस में जोड़ता है। इसे बनाने का श्रेय अंग्रेजों को है, उन्होंने इंजीनियरिंग की बेहतरीन कारीगरी दिखाते हुए इसे 6 सालों की कठिन मेहनत के बाद 1942 में तैयार किया और 1943 में ट्रैफिक के लिए इसे खोल दिया गया।
0: उस वक्त ये न्यू हावड़ा ब्रिज कहलाता था, लेकिन आजादी के बाद 1965 में इसका नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया। मगर हकीकत तो यह है कि जनता आज भी इस नामकरण को शायद नहीं मानती, वो तो आज भी इसे हावड़ा ब्रिज ही कहती है।
2: श्रोताओं, बाय द वे, सस्पेंशन ब्रिज उसे कहते हैं जिसमें ब्रिज का डेक सस्पेंशन केबल के नीचे लटका रहता है। ब्रिज के दोनों सिरों पर सस्पेंशन टावर होते हैं जिनमें स्टील केबल बंधी हुई होती है, और इस तरह के ब्रिज ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में दो ऊंची पहाड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, और सबसे पहले ये तिब्बत व भूटान में बनाए गए थे आज से लगभग पूरे 500 साल पहले।
0: दूसरी ओर कैंटिलीवर ब्रिज उसे कहते हैं जो कैंटिलीवर्स के सहारे हवा में लटकता रहता है बिना किसी नट बोल्ट के। मतलब ये हुआ कि हावड़ा ब्रिज लोहे की मजबूत रस्सियों के सहारे एक छोर से दूसरे छोर तक हवा में लटका हुआ है, न कोई नट बोल्ट और ना ही ब्रिज को टेक देने के लिए कोई पिलर वगैरह।
2: देखा जाए तो पैदल चलने वालों के लिए छोटे छोटे और हल्के फुल्के कैंटिलीवर ब्रिज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हावड़ा ब्रिज हुगली नदी के दोनों किनारों को जोड़ती हुई 8 लेन वाली 705 मीटर लंबी संरचना चौड़ाई 71 फीट और ऊंचाई 269 फीट जिसे बनाने में 26,500 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ जिस पर से रोज 1.5 लाख गाड़ियां 4 लाख पैदल लोग गुजरते हैं। वास्तव में कैंटिलीवर नाम का यह एक अजूबा ही है।
0: ये दुनिया का सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिज है और पूरी दुनिया में 10 सबसे लंबे कैंटिलीवर ब्रिजों में 6वें नंबर पर है। ये केवल हावड़ा और कोलकाता को ही नहीं जोड़ता बल्कि पुराने कलकत्ता और नए कोलकाता को भी जोड़ता है। तभी तो शायद एक व्यक्ति ने अपनी डायरी में लिखा, सालों बाद कलकत्ता आना हुआ, सब कुछ बदल चुका था सिवाय हावड़ा ब्रिज के।
2: श्रोताओं, कलकत्ता की हम बात करें और वहां की ट्राम सर्विस की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। श्रोताओं, ट्राम सर्विस भी कलकत्ता की एक अनोखी पहचान है। हालांकि किसी जमाने में यह मुंबई, दिल्ली, कानपुर जैसे कई शहरों में हुआ करती थी लेकिन आज आप इसे और कहीं नहीं देख पा सकते। इसके अंतर्गत पटरियों पर दौड़ती हुई ट्रामें कारें लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती हैं।
0: कोलकाता की ट्राम सर्विस को अगर आप ट्रेन जैसी दिखने वाली बस सर्विस कहें तो ज्यादा ठीक होगा। सड़कों पर ही बिछी लोहे की पटरियों पर ट्रामें दौड़ती रहती हैं। न कोई रेलवे फाटक और न ही कोई बाड़बंदी। आती हुई ट्राम के सामने से लोग आराम से ही निकलते रहते हैं।
2: श्रोताओं, ये बात है साल 1873 की, जब सियालदह और आर्मेनियन घाट स्ट्रीट के बीच लोहे की पटरियों पर घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली ट्राम सेवा की शुरुआत हुई थी। लेकिन पर्याप्त सवारियां ना मिलने की वजह से 8-10 महीने में ही यह सेवा बंद हो गई।
0: लेकिन सन 1900 में एक ब्रिटिश कंपनी ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड ने इसकी फिर से शुरुआत की। इस बार ट्राम को घोड़ों से नहीं खींचा जाता था बल्कि ये बिजली से चलती थी। देखते ही देखते ये नई ट्राम सेवा कोलकाता की पहचान बन गई और आज इसे इस शहर की एक जिंदा विरासत माना जाता है।
2: श्रोताओं, कोलकाता को इस आधे घंटे के प्रोग्राम में समेटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए कोलकाता से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां जैसे वहां का वस्त्र उद्योग, वहां का पहनावा, वहां का रहन सहन, वहां का खान पान और वहां का रसगोला, इन सब की चर्चा हम करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
0: और कंचन राजानी के।
2: श्रोताओं, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने आजादी के।

देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति रचना।

तराने आजादी के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से मुझे, नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार, भारत भारती कार्यक्रम का आज का अंक लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, लोकगीतों में एक पूरी पीढ़ी, एक सदी दर्ज होती है। उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनके सुख दुख, उनकी खुशी उल्लास, उनके पर्व, सभी कुछ उनमें होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोक संगीत एक सांगीतिक दस्तावेज है किसी संस्कृति का। एक मन से उठा राग समूह का राग बन जाता है, एक कंठ से दूसरे कंठ तक पहुंचता हुआ ये सदियों की यात्रा तय करता है। तो आइए कल से चलकर आज तक पहुंची इस स्वर यात्रा का आस्वादन करें। मालवा अंचल के कुछ लोकगीत आपको सुनवाते हैं आज भारत भारती कार्यक्रम में। कलाकार हैं स्वाति उखले और साथी। कार्यक्रम का शुभारंभ इस गणेश वंदना से।

श्रोताओं, किसी घर में बच्चे के जन्म से बड़ा भला कौन सा उत्सव हो सकता है। बच्चे का जन्म यानी घर के आंगन में एक फूल का खिल जाना, जीवन की बगिया का महक जाना। शहरी जीवन की बात हो या ग्रामीण अंचल के जीवन की, बच्चे के जन्म की खुशी दोनों ही जगह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। तो आइए आपको सुनवाते हैं मालवा अंचल में बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला ये लोकगीत स्वाति ओखले और साथियों के स्वरों में।

बच्चे के जन्म के साथ खुशियों का वातावरण छा जाता है पूरे घर में। उसकी छोटी छोटी बातें, हल्की सी मुस्कान, जरा सा बोल देना, जैसे खुशियों का झरना बह उठता है घर में। सभी लोग खिलखिला उठते हैं। घर के हर सदस्य का ध्यान उस बच्चे पर ही होता है, वो सो रहा हो या जाग रहा हो। बच्चे की हर बात मन भावन होती है। हल्की सी मुस्कान होठों पर लिए सोती हुई बिटिया, पालने में माँ उसे झुलाती है, लोरी सुनाती है। कैसा अद्भुत दृश्य है, एक माँ जब अपनी बेटी को झूले में झुलाती हुई लोरी गाती है तो किस तरह अपने हृदय के भाव को अभिव्यक्त करती है, इसी का वर्णन इस लोकगीत में। आइए सुनते हैं।

मालवांचल में श्राद्ध पक्ष में संजा पर्व मनाया जाता है। छोटी छोटी कुंवारी कन्याओं का ये पर्व है। गोबर से कुछ चित्र बनाए जाते हैं, चांद और सूरज की आकृति बनाई जाती है, गीत गाए जाते हैं और जीवन के सभी संस्कारों से इन छोटी छोटी कन्याओं को शिक्षित किया जाता है। तो लीजिए प्रस्तुत है इसी पर्व पर गाया जाने वाला लोकगीत स्वाति उखले और साथियों की आवाजों में।

श्रोताओ, हमारा लोक संगीत संस्कार गीतों से समृद्ध है। हर संस्कार पर कोई न कोई लोक गीत अवश्य गाया जाता है। शादी में हल्दी लगाने की परंपरा है। ब्याह के कितने ही दिन पहले से लड़की को हल्दी लगाना शुरू कर दिया जाता है। उसकी सारी सखियां इकट्ठी हो जाती हैं, बारी बारी से हल्दी लगाती हैं, छेड़छाड़ करती हुई, मस्ती करती हुई, खूब मजाक करती हैं और एक अलग ही उल्लास और उमंग का वातावरण तैयार हो जाता है। गाते नाचते हुए हल्दी लगाई जाती है। आइए, इसी अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत अब हम आपको सुनवाते हैं। कलाकार हैं स्वाति उखले और साथी।

बारात जब द्वार पर आती है तो कितना उल्लास होता है दोनों ही पक्ष में। जी हाँ, सजे हुए बाराती, घोड़ी पर चढ़ा दूल्हा, भाई ये मेहमान कोई आम मेहमान थोड़े ही हैं, तो स्वागत भी विशेष होता है। जी हाँ, कंचन थाल सजाया जाता है, मोतियों से चौक पूरे जाते हैं, एक भव्य स्वागत बारातियों का। आइए ऐसा ही लोकगीत अब आपको सुनवाते हैं स्वाति ओखले और साथियों के स्वरों में।

और श्रोताओं, अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं मालवांचल के कुछ ऋतु गीत। जी हाँ, मौसम के अलग अलग रंग अलग अलग स्वर में हमारे मन से संवाद करते हैं और इस संवाद की सांगीतिक अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर होती है, मनोहारी होती है। तपती धूप है, गर्मी का मौसम है, पत्नी खेत में काम कर रहे अपने पति को खाना देने जाती है। रास्ते में बीच में एक कोयल अपनी मीठी बोली से उसे लुभाती है, उसका ध्यान खींचती है। वो किस तरह से उस कोयल से अपने मन की बात करती है, आइए सुने। मारो जी का रोता देवा, जावो हो कोयलिया, मीठी मीठी घणी प्यारी, लागे थारी बोलिया।

कड़कती धूप के बाद ठंडी हवा और बारिश की जरूरत मन को भी होती है और धरती को भी। वर्षा शुभता है, मंगल है, समृद्धि है, धन है, जीवन है। इसलिए सहज ही इंद्रदेव से प्रार्थना आरंभ हो जाती है।

श्रोताओं, हम बात करें साहित्य की, नृत्य की, चित्रकारी की या गीत संगीत की। राधा कृष्ण की उपस्थिति हर जगह है, तो भला लोक जीवन में, हमारे लोक संगीत में राधा कृष्ण की उपस्थिति कैसे न हो। धरती से वर्षा विदा ले चुकी है और शरद ऋतु उतर आई है। जमुना के तीर पर राधा और कृष्ण की अटखेलियां देखते ही बनती हैं। इसी मनोहारी दृश्य का वर्णन इस लोक भजन में। स्वर स्वाति उखले और साथियों के हैं।

नमस्कार श्रोताओं, अब शरद ऋतु के बाद वसंत का आगमन हो चुका है। जी हाँ, ऋतुराज का आगमन। पलाश दहकने लगे हैं, गुलाब खिलने लगे हैं, बुलबुल गाने लगी है, महुए पक गए हैं, आम्र मंजरियों की भीनी भीनी सी महक हवाओं में घुलने लगी है, खेतों में सरसों फूल उठी है, रंग बासंती धरती पर तो है ही, तन और मन पर भी चढ़ने लगा है।

श्रोताओं, ये थी वसंत की छटा। जी हाँ, इस लोकगीत के साथ ही रंग बासंती आपके चारों ओर बिखर गया है। वसंत यानी प्रेम, वसंत यानी आरंभ, वसंत यानी उल्लास, उमंग, खुशी। तो ये उल्लास, ये उमंग, ये खुशी आप सभी के जीवन में बनी रहे, यही शुभकामना है हमारी। चलते चलते आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे स्वाति उखले और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब भारत भारती कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
1: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की दोपहर कालीन प्रसारण सभा में आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज दिन की सभी प्रस्तुतियां आपको अच्छी लगी होंगी। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराइएगा। फिलहाल समय हो रहा है कि इस प्रसारण सभा में मैं आपसे विदा लूं, तो इजाजत दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। आगे बहुत कुछ खास है आपके लिए हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में। इंतजार कीजिएगा बस जरा सा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं विश्वेदेवा, वाक आप, धूम सोम, अग्नि सूर्य, वायु सरस्वती, साध्य पर्जन्य अग्नि और सरस्वान। छंद है त्रिष्टुप, जगति, प्रस्तार पंक्ति और अनुष्टुप।
1: अपांग प्रांगेति स्वधया गृभीतो मर्त्यो मर्त्येना सयोनिहि ता शश्वन्ता विशुचीना वियन्ता न्यन्यम चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम। यह आत्मा अविनाशी होने पर भी मरण धर्मा शरीर के साथ आबद्ध होने से विविध योनियों में जाती है। यह अपनी धारण क्षमता से ही उन शरीरों में आती और शरीरों से पृथक होती रहती है। ये दोनों शरीर और आत्मा शाश्वत एवं गतिशील होते हुए विपरीत गतियों से युक्त हैं। लोग इनमें से एक शरीर को तो जानते हैं पर दूसरे आत्मा को नहीं समझते। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन अस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किम् ऋचा करिष्यति य इत्तद्वि दुस्त इमे समासते। अविनाशी ऋचाएं परम व्योम में भरी हुई हैं, उनमें संपूर्ण देव शक्तियों का वास है। जो इस तथ्य को नहीं जानते उनके लिए ऋचा क्या करेगी, और जो इस तथ्य को जानते हैं वे इस ऋचा का सदुपयोग कर लेते हैं। सूय वसाद भगवती ही भूया अथो वयम भगवन्तः स्याम अद्धि तृणमघन्ये विश्वदानीम पिब शुद्ध मुदकमाचरंती। हे अवधनीय गौमाता, आप श्रेष्ठ पौष्टिक घास ग्रहण करती हुई सौभाग्यशालिनी हो। आपके साथ हम भी सौभाग्यशाली हों। आप शुद्ध घास खाकर शुद्ध जल पीकर सर्वत्र विचरण करें। गौरीर मिमाय सलिलानी तक्षत्येक पदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन। गौ अर्थात वाणी निश्चित थी, फिर से कर रहे हैं, गौ अर्थात वाणी निश्चित ही शब्द करती हुई जलों रसों को हिलाती तरंगित करती है। वह गौ अर्थात काव्यमयी वाणी एक दो चार आठ अथवा नौ पदों वाले छंदों में विभाजित होती हुई सहस्र अक्षरों से युक्त होकर व्यापक आकाश में संव्याप्त हो जाती है। तस्या समुद्रा अधिविक्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ततः क्षरत्यक्षरम् तद्विश्व मुपजीवति। उन सूर्य रश्मियों से जल वृष्टि द्वारा जल प्रवाह बहते हैं, जिस जल वृष्टि से संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न होती हैं। इससे संपूर्ण विश्व को जीवन प्राण मिलता है। शकमयम धूममाराद पश्यम विषुवता पर एनावरेण उक्षाणम प्रश्नीमपचंत वीरास्तानी धर्माणि प्रथमान्यासन। दूर से हमने धूम्र को देखा, चतुर्दिक व्याप्त धुएं के मध्य अग्नि को देखा, जिसमें प्रत्येक उत्तम कार्यों के पूर्व ऋत्विकगण शक्तिदायी सोमरस को पकाते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

ध्यान बिना ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। भगवान की पवित्र मंगलमयी कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है।

ईश्वर की पवित्र मंगलमयी कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है। ध्यान बिना ईश्वर की अनुभूति नहीं होती।

ईश्वर के लिए एकांत में जो विलाप करता है उसे प्रभु किसी न किसी रूप में मिलते हैं। प्रभु से मिलने की वेदना होनी चाहिए।

ईश्वर के लिए एकांत में जो विलाप करता है उसे प्रभु किसी न किसी रूप में मिलते हैं। प्रभु से मिलने की वेदना होनी चाहिए।

परमात्मा को जो प्रसन्न कर सकता है वह संसार को भी प्रसन्न कर सकता है। प्रभु की कृपा होने पर संसार स्वयं अनुकूल हो जाता है।

इसी रचना के साथ आज का कार्यक्रम भक्ति संगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

हमें ऐसे लोग चाहिए जो आशा की अनुपस्थिति में भी भय और झिझक के बिना युद्ध जारी रख सकें। हमें ऐसे लोग चाहिए जो आदर सम्मान की आशा रखे बिना उस मृत्यु के वरण को तैयार हों जिसके लिए न कोई आंसू बहे और न ही कोई स्मारक बने। भारतीय स्वाधीनता के महायज्ञ में अपने जीवन की आहुति देने के लिए देश के युवाओं का इन शब्दों में आह्वान करने वाले महान क्रांतिकारी थे भगवती चरण वोहरा। भारत की स्वाधीनता के लिए बिना किसी अपेक्षा के बस क्रांति कर्म किए जाना जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। भगवती चरण वोहरा सशस्त्र क्रांति के अगुआ थे। बम बनाने में उन्हें महारत हासिल थी। वो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के सदस्य थे और सरदार भगत सिंह के साथ मिलकर इस दल में क्रांति गतिविधियों की रणनीति बनाने तथा दल को सैद्धांतिक दिशा प्रदान करने में उनकी प्रमुख भूमिका होती थी। क्रांतिकारियों के बीच प्रसिद्ध दुर्गा भाभी उनकी सहधर्मिणी थीं। भगवती चरण वोहरा दल में एक लेखक, विचारक, संगठक, सिद्धांतकार

की आयु में भगवती चरण वोहरा का विवाह इलाहाबाद की 11 वर्षीय दुर्गावती देवी के साथ संपन्न हुआ। वो अपने पति के साथ सदा कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहीं और आगे चलकर दुर्गा भाभी के नाम से विख्यात हुईं। भगवती चरण वोहरा अपने पिता के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत थे। उन पर 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। इसीलिए रूसी क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर भगवती चरण वोहरा ने एक अध्ययन मंडली का गठन किया था, जिसके मूल में भारत को पराधीनता से मुक्त करने का विचार था। इस अध्ययन मंडली में नियमित रूप से शामिल होने वालों में भगत सिंह, सुखदेव आदि भी थे। आगे चलकर इन्हीं साथियों ने मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन भी किया था। अभी जबकि वो कॉलेज में ही अध्ययनरत थे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और युवाओं का आह्वान किया। गांधी जी के आह्वान पर भगवती चरण वोहरा अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े।

भगवती चरण वोहरा एक अत्यंत विचारशील युवा थे। वैश्विक परिदृश्य में घटित क्रांतियों पर भी उनकी पैनी दृष्टि थी। वो भारत को गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कृषि संकट और शोषणकारी सामाजिक परिस्थितियों से मुक्ति दिलाना चाहते थे। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, इससे तमाम युवाओं की तरह भगवती चरण वोहरा भी निराश हुए। आंदोलन से वापस आने के बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर से पढ़ाई पुनः जारी रखी। यहीं उन्होंने राष्ट्र की परतंत्रता और उससे मुक्ति के प्रश्न पर स्टडी सर्कल चलाना शुरू किया, जिसमें सरदार भगत सिंह और सुखदेव भी शामिल थे। भगवती चरण वोहरा ने लाहौर नेशनल कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और भगत सिंह के साथ नौजवान भारत सभा के गठन और कार्य को आगे बढ़ाया। इस सभा के महासचिव के पद पर थे सरदार भगत सिंह और प्रचार सचिव थे भगवती चरण वोहरा। अप्रैल 1928 में नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। भगत सिंह और अन्य साथियों के सलाह मशवरे से इस मसौदे को तैयार करने का काम भगवती चरण वोहरा ने ही किया था। नौजवान भारत सभा के उत्कर्ष में भगत सिंह के साथ भगवती चरण वोहरा की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सरदार भगत सिंह के साथ वही संगठन के प्रमुख सिद्धांतकार थे। अपनी पत्नी दुर्गावती देवी को भी उन्होंने पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। खादी के वस्त्र धारण कर दुर्गावती ने पढ़ाई जारी रखी और समय आने पर प्रभाकर की परीक्षा उत्तीर्ण की। भगवती चरण वोहरा के मन में क्रांतिकारियों के प्रति असीम श्रद्धा थी। यही कारण है कि जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उन्होंने महान क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल के सम्मान में अपने बेटे का नाम शचीन्द्रनाथ ही रखा था। भगवती चरण वोहरा वैचारिक रूप से बेहद परिपक्व थे। वो अपने समय में दल के प्रमुख विचारक और लेखक रहे थे। क्रांति कर्म में हर वैचारिक लेखन में भगत सिंह के साथ उनकी जुगलबंदी थी। एक लिखता तो दूसरा उसे ठीक करता। 1 जनवरी 1925 को हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ ने द रिवॉल्यूशनरी नाम से एक 4 पेज का घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपनी विचारधारा और उद्देश्य की उद्घोषणा की थी। इस पत्र का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के समक्ष संगठन की नीतियों और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनके विचारों को स्पष्ट करना था। इस पत्र में संगठन की हिंसक गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हथियारों का उपयोग करने की भी बात कही थी। इसे हिंदुस्तान के सभी प्रमुख स्थानों पर वितरित किया गया। इसे वितरित करने की प्रमुख जिम्मेदारी भगवती चरण वोहरा पर ही थी। इस कार्य को उन्होंने अत्यंत कुशलता के साथ संपन्न किया। एक तरह से ये पत्र अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन करने की नीतियों और तरीकों पर एक प्रतिक्रिया थी। साथ ही इसमें युवाओं का आह्वान किया गया था कि वो भारत की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे इस महासमर में शामिल हों।

आगे चलकर सरदार भगत सिंह के सुझाव पर संगठन का नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ कर दिया गया। इसी संघ ने सांडर्स वध और असेंबली बम कांड जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण क्रांति घटनाओं को अंजाम दिया था। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जब सरदार भगत सिंह और राजगुरु ने सांडर्स का वध किया था, तब इस घटना के 3 दिन बाद पुलिस से बचते हुए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु भगवती चरण वोहरा के घर पहुंचे थे। उस समय भगवती चरण वोहरा भूमिगत थे, लेकिन घर पर दुर्गा भाभी थीं। लाहौर से निकलने के लिए भगत सिंह ने अपनी वेशभूषा एक अफसर जैसी कर ली। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह की पत्नी का रूप लिया और राजगुरु ने अर्दली का वेश बनाया। भगत सिंह ने अपना नाम रंजीत रखा, दुर्गा भाभी का नाम सुजाता रखा गया। लाहौर स्टेशन पर भगत सिंह की तलाश में 500 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन उन सबको चकमा देते हुए दुर्गा भाभी के सहयोग से भगत सिंह लाहौर से बाहर निकल आए। असेंबली बमकांड के बाद जब सरदार भगत सिंह जेल में थे, तब भगवती चरण बोहरा और यशपाल ने दिल्ली आगरा रेल लाइन पर भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को ले जा रही विशेष ट्रेन को बम से उड़ाने की योजना बनाई। लंबी तैयारी के बाद ये हमला किया गया। बम फटा और ट्रेन के डिब्बे के परखच्चे उड़ गए। ट्रेन में सवार एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, लेकिन इरविन बच गया। हालांकि गांधी जी ने इस घटना की निंदा की थी और यंग इंडिया में बम की पूजा शीर्षक से लेख लिखा था। इस पर भगवती चरण वोहरा ने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की सलाह पर गांधी जी के लेख के जवाब में बम का दर्शन इस शीर्षक से एक लेख लिखा। सरदार भगत सिंह ने जेल में इस लेख को अंतिम रूप दिया था। इस लेख में इरविन पर किए गए हमले के पक्ष में तर्क रखे गए तथा इसे राष्ट्रहित में बताया गया, जिसकी व्यापक चर्चा हुई। दल की योजना बनी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल से कोर्ट ले जाते समय छुड़ा लिया जाए। ब्रिटिश शासन की कड़ी सुरक्षा को चकमा देने के लिए शक्तिशाली बम की आवश्यकता थी। भगवती चरण वोहरा बम बनाने में सिद्धहस्त थे। वो अपने साथियों के साथ लाहौर की कश्मीर बिल्डिंग के एक किराए के कमरे में बम बनाने का कार्य किया करते थे। कुछ ही दिनों में शक्तिशाली बम बना लिए गए, लेकिन बम मौके पर धोखा न दे इसलिए तय हुआ कि इसका एक परीक्षण किया जाए। 28 मई 1930 को परीक्षण के लिए क्रांतिकारी रावी नदी के किनारे पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से बम भगवती चरण वोहरा के हाथ में ही फट गया। उनकी कलाई के आगे का पूरा हाथ उड़ गया। पेट में हुए बड़े घाव से आंतें बाहर आ गईं और वो ये कहते हुए शहीद हो गए कि ये नामुराद मौत 2 दिन और टल जाती तो इसका क्या बिगड़ जाता। उनका आशय यही था कि तब वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को छुड़ा लेते। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बाल सभा।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है भाषा की मर्यादा।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं बातों की बात की। आप सोच रहे होंगे ना, ये कौन सी बात हुई? लेकिन यही बात है बच्चों कि हम बात कैसे करते हैं, बात करने का हमारा तरीका क्या है, बात करते करते कहीं हम ये तो नहीं भूल जाते कि हम इतना कैजुअल हो गए हैं कि किसी से कुछ भी बोले दे रहे हैं। क्या हम अपनी भाषा में बुरे शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्या हमने अपनी बोली में पूरी मर्यादा रखी हुई है या हम कुछ भी कहे जा रहे हैं? तो फिर अब हम आपको आज इसी बारे में बताने वाले हैं कि भाषा की मर्यादा क्या होती है, है ना? एक बहुत अच्छा दोहा है जो मुझे बड़ा पसंद भी है और वो दोहा है, रहमन जिहवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूत खात कपाल, है ना? कितनी बड़ी बात है। रहीम जी कहते हैं कि जीभ बड़ी पागल है, या ये कह लीजिए कि बावली है, जो बिना सोचे समझे स्वर्ग और पाताल तक की उल्टी सीधी बातें कह जाती है। और खास बात यह है कि ये जीभ तो बिना विचारे बोलकर तुरंत मुंह के अंदर छुपकर बैठ जाती है, लेकिन इसके द्वारा कहे गए जो कड़वे या गलत शब्द हैं उनके कारण मार किसको पड़ती है? हमारे सिर को, है ना? मतलब कहे कोई और भोगे कोई, कह रही है जीभ, भोग रहा है सिर, तो फिर तो गलत बात हो गई ना बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि ये जीभ जो है इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करिए। एक और बात है, जो आपके शब्दों के बाण होते हैं ना, वो ज्यादा तेजी से घायल करते हैं किसी और चीज से, तो इसलिए हमें शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एक और बात कहते हैं, वो ये कि कही गई बात कभी वापस नहीं लौटती। मैं आपको इतनी सारी छोटी छोटी कहावतें, इतनी सारी बातें आज आपको बता दूंगी ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए कि हमें जब भी बात करनी है बहुत सोच समझ के करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये बात करने के लिए मुझे कहाँ से दिमाग में आया, तो कहानी बड़ी सिंपल है। मैं आप जैसे ही कुछ बच्चे होते हैं जो कहीं खेल रहे होते हैं, कभी मंदिर के मैदान में, कभी कॉलोनी के पार्क में, कभी किसी के मोहल्ले में, अगर मैं जाती हूँ किसी से मिलने तो वहाँ जो बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं बच्चों से बहुत मिलती हूँ ये आपको पता है, तो बस जब मुझे ऐसे बच्चे दिख जाते हैं और वो कुछ ऐसी बात कह देते हैं तो मेरे दिमाग में ये बात आ जाती है कि मुझे बाल सभा में आप लोगों से ये बात करनी है। तो हुआ ये कि मैं अपनी कॉलोनी के पार्क में बैठी हुई थी, दो बच्चे खेल रहे थे, हालांकि टीम उनकी बहुत बड़ी थी, 10-12 बच्चे खेल रहे थे, लेकिन दो बच्चों को मैंने देखा जो खेलते खेलते किसी बात पे झगड़ पड़े। तो ठीक है, बच्चों में झगड़ा होता ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो झगड़े बहुत जल्दी से सुलझ भी जाते हैं क्योंकि बच्चे बड़े भोले भाले भी होते हैं, है ना? आप सब आज लड़े कल दोस्ती, तो ये चीज़ बहुत अच्छी भी है। अब लेकिन क्या हुआ, उसमें से एक बच्चा बोला कि तुम पागल हो क्या, तो दूसरा बच्चा बोला कि तुमने मुझे पागल क्यों कहा। अब पहले बच्चे के पास कोई जवाब ही नहीं था कि पागल क्यों कहा, उसने कहा कह दिया तो कह दिया। वो बच्चा जिद पे अड़ गया, उसने खेलने से मना कर दिया ये कह के कि नहीं, ऐसे कैसे कह दिया तो कह दिया। मेरी माँ कहती हैं कि किसी को भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी जो गलत हो। मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, तुम मुझसे लड़ रहे हो, पर मैंने तुमसे ऐसी कोई बात नहीं कही जो तुमको बुरी लगे, तुमने मुझे पागल क्यों कहा। और आप भी जानते हैं बच्चों की कितनी बार हम इस शब्द का दिन भर में इस्तेमाल कर देते हैं, कभी स्कूल में, कभी लंच टाइम में, कभी शाम को बच्चों के साथ खेलते वक्त। अब आप सोचिए कि क्या ये कहना सही है, मतलब दोनों ही बच्चे हैं, वो बच्चा कह रहा है अरे कह दिया तो कह दिया, चल मैं तेरी दोस्ती हूँ, उसने कहा नहीं, पहले आप ये बोलो कि आज के बाद इस भाषा का, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, अब आप देखिए कि वो बच्चा अपनी जगह कितना सही है। वो न सिर्फ आपकी दोस्ती के लालच में वो किसी गलत बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है दोस्ती सारी चीजें खेलना सब साइड में है, पहले ये बताओ कि तुमने जो आज बात कही है वो कल कहोगे। वो कह रहा है अरे यार ये तो मुंह से निकल जाता है। अब देखिए दूसरी बात में ही क्या निकल गया, यार। ठीक है, इससे पता चलता है कि आप में भाषा की मर्यादा नहीं है। फिर उस बच्चे ने टोक दिया कि देखो अभी तुमसे पागल कहने को रोका, अभी तुम बातों बातों में यार पे आ गए। तो बोला कि नहीं, बात अच्छे से करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी तुमसे दोस्ती हो जाऊंगा, मैं अभी तुमसे गले मिल लूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर अंत में बच्चों मुझे उस लड़ाई के बीच में पड़ना पड़ा। मैंने फिर दोनों बच्चों को समझाया, मैंने कहा ऐसे नहीं करते हैं, आप दोनों एक दूसरे की दोस्ती हो जाओ। लेकिन वो बच्चा जो कह रहा है कि आज के बाद इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, तो नहीं करना। तो वो बच्चा जानते हैं मुझसे क्या बोला? वो बच्चा मुझसे बोला, आंटी मैंने कोई मारा थोड़ी है जो ये इतना नाराज हो रहा है। अब आप सोचिए कि भाषा की, बोली की मर्यादा उस बच्चे के लिए मायने ही नहीं रखती जिसने ये कहा कि मैंने तुमको मारा थोड़ी है जो तुम इतना बुरा मान रहे हो। ये सब तो चलता है। नहीं चलता बच्चों, नहीं चलता, बल्कि मैं ये कहूंगी कि नहीं चलना चाहिए। मेरे संगत में जो जो बच्चे आते हैं, मैं हर एक को एक ही बात सिखाती हूँ कि सबसे पहले आपका इम्प्रेशन होता है आप खुद, उसके बाद जैसे ही आप अपने शब्दों से कुछ अच्छी बात बोलते हो आपका इम्प्रेशन दोगुना हो जाता है, और जैसे ही आपने कुछ खराब बात की आपका इम्प्रेशन आधा रह जाता है। समझ रहे हैं आप बात? अगर आपको एक प्रभावशाली बच्चा बनना है, चाहे वो क्लास हो, स्कूल हो, आपका कोई स्कूल का ग्राउंड हो, या फिर कोई ऐसी प्रतियोगिता हो, अगर आप बात बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना बच्चों, तो आपका प्रभाव दोगुना हो जाएगा। तो बच्चा बोला कि आंटी आप इतनी देर से मुझे समझाए जा रही हैं, आप इसे क्यों नहीं समझा रही हैं? मैंने कहा बेटा समझा तो मैं उसको भी रही हूँ, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि तुम्हें दोबारा गलती नहीं करनी है। तो बस ना तुम ये गलती करोगे ना बात बिगड़ेगी, क्योंकि तुम अगर ये कह रहे हो कि मैंने मारा थोड़ी, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात मारना है, उसके पहले की कोई भी गलतियां तुम्हारे लिए गलतियां हैं ही नहीं, है ना। तब उसको समझ में आया कि शायद मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, तब उसने कहा सॉरी, तब उसने उस बच्चे से भी सॉरी कहा और उन दोनों बच्चों की दोस्ती हो गई। तो चलिए भाई, हमारी तो बात यहाँ शुरू हो गई है कि हमने बच्चों को समझाया, बच्चे मान गए। लेकिन आज का ये जो विषय है, आपको पता है ना, ये आपकी किताब में भी बहुत बार आता होगा, है ना, बहुत सारी जब आप हिंदी की कहानियाँ पढ़ते हैं उसमें भी ये बात आती है। इनफैक्ट मैंने आपको एक बार तोते की कहानी सुनाई थी इसी बाल सभा में, वो भी इसी बात पर थी कि एक तोता राजा को बहुत प्रिय था, याद आ गई होगी आपको सुनते सुनते ना, और एक तोता राजा को बिल्कुल अप्रिय था। दोनों में अंतर यह था, दिखने में दोनों एक जैसे थे, पर दोनों तोते जो थे उनकी भाषा में बहुत अंतर था। एक बहुत मीठा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करता था, और वहीं दूसरा बहुत गंदा, बहुत तेज, बहुत चिल्लाकर, बहुत चीखकर, और बहुत एनोइंग था। तो अब आप सोचिए बच्चों कि ये सब चीजें कितना महत्व रखती हैं हमारे जीवन में। हाँ, अभी मैं एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ आपको। इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने, और ये कविता आपको समझ में आएगी क्योंकि मुझे लगता है कि इसका छोटा छोटा सा जो अर्थ है वो हमारी बात को और बल देता है। तो कविता यहां से शुरू होती है कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशासी। इस बात का मतलब समझे आप कि भले ये शक्ति विज्ञान में है जिससे अमावस की रात भी पूर्णिमा जैसी बन जाती है, लेकिन विश्व पर आज क्यों दिन में ही अमावस जैसा अंधेरा छा जाता है। कितना बड़ा प्रश्न कर रहे हैं कवि। आगे लिखते हैं, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। कितनी सुंदर बात है। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। अब अगर हम अपनी बात को इस बात से करेंगे तो ये मैं बाद में समझाऊंगी, लेकिन तिमिर का मतलब बच्चों अंधेरा होता है, और जो दीप स्नेह के दीप की बात जलाने की कर रहे हैं कवि, वो यही है कि भले ही हम साइंस ने विज्ञान ने जो बल्ब जला दिए हैं, जितना आविष्कार हुए हैं, वो बल्ब जो जल रहे हैं, अगर हम उन्हें बुझा दें तो हमें जो विद्युत के बल्ब हैं उन्हें बुझाकर असली बल्ब यानी हमारे भीतर की असली रोशनी को, स्नेह की रोशनी को प्रकाशित करना है, प्रकाशमान बनाना है संसार को, है ना। बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा, मतलब जो इलेक्ट्रिकल लाइट हैं उनसे आपको असली रास्ता असली पथ नहीं मिलेगा, बल्कि असली पथ आपको किससे मिलेगा, उस दिए से जो स्नेह का दीपक है। जब किसी अनजान आदमी से मुस्कुराकर हम गुड मॉर्निंग कहते हैं या नमस्ते कहते हैं या प्रणाम कहते हैं, तब स्नेह का दीपक दोनों तरफ चलता है, है ना। आगे कवि कहते हैं कि मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वो, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। आगे लिखते हैं कि दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही और चलती रहेगी, जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। कितनी अच्छी बात है ना, मतलब एक दीपक भी अगर रह गया स्नेह का प्रेम का, तो आप यकीन करिए कि जो रात है उससे सवेरा वापस लौटेगा, मतलब अंधेरे की रात स्नेह के दीपकों से काली रात खत्म हो जाती है, और जो स्नेह का सूर्य है, स्नेह का दीप है, उससे सारा तिमिर सारा अंधकार भाग जाता है। अब आप ये देखिए कि इस तरह की कविताएं, इस तरीके की कहानियां जो हिंदी साहित्य में हमारे पास बहुत हम लोग समृद्ध हैं, अगर हम पढ़ें ना बच्चों तो हमारे शब्द भी बहुत अच्छे होते हैं। अब अगर कभी आप सोच के देखिए कि अभी आपने ये कविता सुनी है ना, अगर आप ये कविता में से दो शब्द बहुत अच्छे चुनना हो आपको, तो आप क्या चुनेंगे। कभी आप अपने घर में तिमिर का इस्तेमाल करके देखिए, कितना अच्छा लगेगा, आपके घर में सब अचानक चौंक जाएंगे कि अरे वाह बच्चे ने कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, है ना। अब जैसे उन्होंने कहा कि भले शक्ति विज्ञान में है निहित वो, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा से, कितनी अच्छी बात है कि विज्ञान में ही शक्ति है जिससे हम अंधेरी रात में भी बल्ब जलाकर उजेला कर देते हैं, मतलब उजेले को वो पूर्णिमा से बता रहे हैं और अंधेरे को अमावस से। तो कभी कभी अच्छी कविताएं अच्छा साहित्य भी हमारी भाषा को ठीक करने में बहुत मदद करता है। अब लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार मर्यादा शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसका अर्थ क्या है। बच्चों मर्यादा का अर्थ सम्मान होता है, संयम होता है और शालीनता होता है। जब हम किसी से विनम्रता से बात करते हैं, उसकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए बात करते हैं और ऐसे शब्द चुनते हैं जो किसी को चोट ना पहुंचाए, बस वही भाषा की मर्यादा कहलाती है, है ना। वो कहते हैं ना कि मीठे बोल अमृत समान और कटु वचन तीर और जहर के समान होते हैं, है ना। एक बच्चा कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन उसकी भाषा अच्छी नहीं है तो लोग क्या करते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं। इसके साथ मत खेलना, आपने देखा होगा ना कई बार मम्मियाँ निकलती हैं, वो कहती हैं देखो उसके साथ बिल्कुल नहीं खेलोगे, वो बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है और तुम भी वैसे ही बोलने लगोगे। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि संगत का असर पड़ता है और बहुत तेज़ी से पड़ता है। आपने गौर किया होगा कि छोटे बच्चे वही बोलते हैं जो वो घर में सुनते हैं। यदि घर में धन्यवाद कृपया क्षमा कर दीजिए जैसे शब्द सुनाई देंगे तो बच्चा वो सीखेगा, और यदि घर में हर समय ऊंची आवाज़ क्या कर रहे हो, सुनते क्यों नहीं हो, इधर आओ यहाँ बैठो, अगर ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होगा ना बच्चों से, तो बच्चे भी वही बात करेंगे। टीवी मोबाइल इंटरनेट इतना एक्सपोजर आप लोगों के लिए बच्चों अच्छा नहीं है। हम जो कार्टून देख रहे हैं आज, जो वीडियो देख रहे हैं, जो रील्स देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, सब में आप देखिएगा कि भाषा की मर्यादा धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। मतलब कई बार मैंने देखा है कि आजकल बच्चे चल भग जा तू इसको बहुत आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं, हट यहाँ से, सुना ही है। धीरे धीरे बच्चों को इसमें मज़ा नजर आने लगता है, हाँ वो इसको अपनी भाषा का हिस्सा ही बना लेते हैं। मैं आपसे अगर ये कहूँ कि कैसे हैं आप, तो कैसा लगेगा आपको? और मैं ये कहूँ और बता सब ठीक चल रहा है, कैसा लगेगा आपको? कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है? पहला वाला ना, क्योंकि उसमें आपके लिए भी एक सम्मान है। आप उम्र में छोटे हो, लेकिन फिर भी मैं आपका सम्मान कर रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ आप ठीक हो ना, घर से कुछ खाकर आए हो। अब यहाँ पर कोई मैं पूछ लूँ तो ठीक है, सब ठीक चल रहा है, भूखा भूखा तो नहीं है? दोनों बातें एक हैं, ठीक, लेकिन क्या है, दोनों बातों में सबसे बड़ा अंतर है लहजे का, सबसे बड़ा अंतर है भाषा की मर्यादा का। और बच्चों ये तो हमने सीखना होगा, क्योंकि हमें तो बहुत आगे जाना है ना। कवि भी कह रहे हैं ना, भी जो कविता सुनाई उसमें, कि युगों से तुम्हीने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। हवा को पवन कहते हैं। उसने कई बार ऐसे खूबसूरत स्नेह के दीप बुझा दिए हैं, लेकिन तुमको क्या करना है, बार बार स्नेह का दीपक जलाना है। और जो मैंने आपसे कहा उसका भी ख्याल रखना है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो फिर आपको और ध्यान से भाषा का इस्तेमाल करना है। एक बार मैं एक घर में गई थी, वहाँ पर दादी बार बार कह रही थी कि बेटा बेटा हमारा सीरियल लगा दो, और बच्चा लगातार एक ही बात कह रहा था, दादी चुप करो यार, बहुत बोलती हो आप, नहीं लगा रहा मैं आपका। जो माता पिता थे उन्हें क्या लग रहा था, बच्चा लाड़ में बोल रहा है ना, कि ठीक है मैंने जब बोला ये बोल कैसे रहा है। तो जानते हैं उनके उस बच्चे के माता पिता ने मुझसे क्या कहा, अरे ये और उसकी दादी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनमें तो ये सब पूरे दिन चलता है, हम तो यहाँ बैठ के मज़े लेते हैं। ये बात हो सकता है कि किसी को अच्छी लगे, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, है ना। अगर दादी दोस्त हैं तब भी, दादी दादी तो पहले रहेंगी ना, दोस्त तो बाद में बनेंगी ना। दादी की उम्र, दादी का इतना लंबा अनुभव, वो सब इस भाषा के लायक है क्या? चुप रहो दादी, बहुत बोलती हो आप, इसके लायक हैं दादी? ना, बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। और आपको किसी से भी, मैं तो बोलती हूँ अपने दोस्तों से भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, दादी तो बहुत बड़ी बात होगी, दादी से तो बहुत और आपका रिस्पेक्ट भी दुगना हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी पापा की मम्मी है, तो आपको उस लिहाज से बोलना चाहिए, है ना। और कभी ये प्रेम नहीं कहता कि आप अपनी भाषा का संयम भूल जाए, है ना। कभी कोई किताब ये नहीं कहती कि किसी के प्रेम में पढ़कर या किसी से लाड़ में आप भाषा की मर्यादा भूल जाएं। क्योंकि बच्चों जो बातें अभी आपको मजाक लग रही हैं, वो थोड़ा बड़ा और हो जाओ आप लोग, फिर आपको लगेगा सब टोकेंगे, किसी के घर जाओगे सब टोकेंगे। और एक और चीज़ जो मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ, एक और भाषा है, वो भाषा है ब्रो, वो भाषा है सिस, वो भाषा है क्या है, अधूरी भाषा। हाँ, जब हमारे पास पूरे शब्द हैं, हमारी भाषा समृद्ध है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि बच्चों हम जो चल रहा है उस ट्रेंड को फॉलो करें, है ना। आजकल लिख भी अधूरा अधूरा रहे हैं ना, प्लीज़ लिखना है तो PLZ लिख के काम चला लेंगे, सिस्टर लिखना है तो SIS लिख कर काम चला लेंगे। आपको किस चीज़ की जल्दी है, सोचिए। यहाँ तो हमारे लिखने की भाषा भी कैसी होती जा रही है, लोग कहते हैं कि ये ट्रेंड है, लोग कहते हैं कि ये चलता है, पर अगर सब कुछ अगर आप चलाने लगे ना, तो आप ही चलते हो जाओगे, मतलब आप अपना स्थान बनाकर नहीं रख पाओगे, आपकी जो खूबियाँ हैं उसको समेट के नहीं रख पाओगे, आप भी वो भेड़ चाल चलोगे। और भेड़ चाल का तो आपको पता ही है कि भेड़ चाल का मतलब क्या होता है, भेड़ चाल मतलब एक भेड़ अगर गलत दिशा में चल दी तो सारी भेड़ें उसको फॉलो करने लगती हैं, है ना। तो हमारे पास तो दिमाग है ना बच्चों, हमें तो ये समझना है ना कि हमें क्या करना है। हमारी भाषा इतनी समृद्ध है, हम बहन भी तो लिख सकते हैं, बहन अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसके नाम से संबोधित कर सकते हैं, पूरा बोल सकते हैं। पर ये सिस ब्रो ये ठीक है कभी कभी के लिए, लेकिन इतना ट्रेंड फॉलो नहीं करें, है ना। और आपको एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि दोस्ती का मतलब और बहुत अच्छी दोस्ती का मतलब अभद्रता नहीं होती, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत प्रगाढ़ मित्र हो गए तो सम्मान बिल्कुल ही कम हो गया, बिल्कुल घट गया, बिल्कुल मतलब सिरे से ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर आप बहुत अच्छे दोस्त हो तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसको आप बिल्कुल कंधे पे हाथ रख के या हर वक्त उसका मजाक उड़ाकर उसे संबोधित करो, यारे छोड़ो इससे क्या होता है, ऐसे नहीं चलता बच्चों। अगर आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त हो तो और सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करिए, आपको आनंद आएगा, है ना। और आज आपसे मैंने जो तीन भाषाओं की बात की है, एक बोलचाल की भाषा, एक आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये भी बहुत मैटर करती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो उससे पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज मायने रखती है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपकी मैडम कुछ पढ़ा रही होती हैं और आप पेन को ऐसे करके खटपट करते रहते हो, सुनाई आ रहा है आपको, सुनाई आया हुँ? मैं आपसे बात करूं और बीच में ये डिस्टर्बेंस आता रहे, अच्छा लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। ऐसे ही जब आपसे कोई बात कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, आप नज़रें झुकाए बैठे हो, आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके की हमारा इग्नोरेंस जाहिर करता है। तो हमें इस पर भी काम करना है बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे कि शब्दों की ताकत कितनी होती है, है ना। जैसे बच्चों को देखा है आपने, कुछ बच्चे हम कहते हैं ये बहुत ताकतवर बच्चा है, कहते हैं ये कुछ भी सामान उठा लेता है, ये बहुत एक्सरसाइज करता है, ये बहुत दूर तक दौड़ लेता है, कहते हैं। वैसे ही अब मैं आपको शब्दों की ताकत से परिचय करवाती हूँ। जैसे आपको बुखार होता है तो डॉक्टर दवा देता है, वैसे ही जब आप शिक्षक के पास जाते हैं वो ज्ञान देता है। लेकिन एक अच्छा इंसान अपने शब्दों से एक नहीं कई लोगों का मन जीत लेता है, बहुत लोगों का मन जीत लेता है। अब आप सोच के देखो, आप कोई काम करो और आपसे आपकी मम्मी बोले शाबाश बेटा, कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना। आपका मन करता है कि आप दोबारा काम करो, है ना, और अच्छा करके दिखाओ। और वहीं एक बच्चा काम करके आए और उसकी मम्मा ये बोले ठीक है, दोबारा जब करो तो थोड़ा और ठीक करना, तो उसका क्या होता है, मनोबल हल्का सा टूट जाता है। ऐसे ही जब आपको कोई चीज़ कोई दे रहा है, आप उसको ये कह दो धन्यवाद, तो कितना अच्छा लगता है। और वहीं दूसरी ओर कोई कोई चीज़ दे और आप एकदम से पलट कर चल दो, उसको क्या लगता है, अरे मैंने इसको इतने अच्छे से चीज़ दी और इसने तो मतलब उसे जताया भी नहीं कि उसको कैसी लगी, उसको अच्छी लगी नहीं लगी, कुछ नहीं। फिर एक बार अगर गलती हो जाए कोई और आप एक बार में बिना किसी बहस के बोल दो ठीक है इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, कितनी बड़ी ताकत है ये। सोचिए कितनी बड़ी लड़ाई खत्म हो जाती है एक सॉरी बोलने से, कितनी सारे लोग आपसे एक बार में इम्प्रेस हो जाते हैं एक गुड मॉर्निंग करने से, एक नमस्कार करने से, एक सुप्रभात बोलने से। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अपनी वोकैबुलरी पर बहुत काम कीजिए बच्चों, अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए, है ना। रोज 5 नए अच्छे शब्द सीखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, समाचार सुनिए, बड़ों से आदरपूर्वक बात कीजिए, गुस्से में भी बोलने से पहले 10 तक गिनिए ताकि आपके पास कोई बुरा शब्द आपकी जीभ से निकलना भी चाह रहा है तो वो 10 तक की गिनती उस शब्द को रोक ले। अब शब्द की जगह सम्मानजनक शब्दों का चुनाव कीजिए। एक बार की बात सुनाती हूँ बच्चों। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तकिए की रुई हवा में उड़ा दो। शिष्य ने ऐसा कर दिया। फिर गुरु ने कहा अब सारी रुई वापस इकट्ठी कर लो। शिष्य बोला यह तो असंभव है। गुरु मुस्कुराए और बोले बेटा शब्द भी ऐसे ही होते हैं, है ना, एक बार मुंह से निकल जाए ना वापस नहीं आ सकते। जैसे तकिए की रुई एक बार आप निकाल दो, फिर आप कितने भी उसको तकिए के भीतर डालने की कोशिश करो या तो शेप बिगड़ जाएगा या तो वो तकिया पहले जैसा नहीं रहेगा। वैसे ही जब आप किसी से बुरे शब्द बोल देते हो, भले ही वापस आप जुड़ जाओ, दोस्ती हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में गांठ पड़ जाती है बच्चों। तो ठीक है, अब हम लोग संकल्प लेते हैं आज बाल सभा में, हर बार ही करते हैं। आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए, मैं जो जो बोलूंगी अब उसे आप दोहराएंगे। आज से हम सभी से सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि हर रोज नए 5 शब्द सीखें। आज से हम कोशिश करेंगे कि हम कोई ना कोई कहानी या कविता पढ़कर ही सोएं। आज से हम कोशिश करेंगे कि नियमित पूरे दिन में जो भी कुछ हुआ है उसे एक पेज में लिखने की कोशिश करेंगे और अपने बड़ों से, अपने साथ के दोस्तों से, सभी से सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करके अपने व्यक्तित्व को और निखारेंगे। आंखें खोल लीजिए और अब अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए, क्योंकि आज की बाल सभा में इतना ही बच्चों, है ना। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा, है ना। और हाँ, जो जो बातें मैंने आज आपसे कही है ना, उनको प्लीज फॉलो करना, उनका ध्यान रखना और उन पर अमल करके मुझे ज़रूर अगली बाल सभा में जब मैं आऊँ तो मुझे पता चलना चाहिए किसी न किसी बात से आपकी, कि आप घर में अच्छा व्यवहार कर रहे हो, है ना। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे बताओ तभी पता चलेगा, मुझे तब भी पता चल जाएगा जब आपके बड़े आपसे खुश रहेंगे, है ना। तो बस अपने घर में कोशिश करिए कि सबसे अच्छे से बात कीजिए। हाँ, चलती हूँ, बाय बाय। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और आपके साथ ही मैं आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे एआई पर। हमेशा की तरह हम कोई ना कोई नया सब्जेक्ट, नया विषय आपके बीच में लेकर आते हैं, और आज हमारा प्रयास है आप तक ये पहुंचाने का कि एआई क्या है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ये है क्या, किसके लिए फ़ायदेमंद है, क्या नुकसान है, सुन तो सबने रख रखा है। अब इतना वृहद विषय है ये, इस पर प्रयास करेंगे कितना हम आप तक पहुँचा पाएँ। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर अनुग्रह नगाइच। आप मैनिट यानी MANIT मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अनुग्रह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे स्टूडियो में आके आपके साथ इस विषय पे अपने विचार प्रकट करने देने का मौका देने के लिए।
1: अनुग्रह जी, AI एक ऐसा विषय है जिस पर हम आपसे चाहेंगे रोशनी डालें, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कुछ आपके बारे में।
2: जैसे आज से लगभग 20-30 साल पहले कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी अपने देश में, आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुणगान गा रही है। मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसा क्षेत्र या विषय अछूता नहीं है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावों की चर्चा ना हो रही हो। साथ ही साथ वृहद स्तर पर राष्ट्रों के बीच, देशों के बीच भी AI वॉर ऐसी संबंधी चर्चा आ रही है। तो AI के बारे में मेरा जो रुझान था, मैं मूल रूप से वास्तुकला एवं नगर नियोजन, ये मेरा ग्रेजुएशन का विषय रहा है, और मैंने 9 से 13 के बीच जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में प्रथम दृष्टया मेरे को पता चला अपने संस्थान के कंप्यूटर साइंस के लोगों के द्वारा। तो उस समय मेरा परसेप्शन ये बना कि मशीनों के शायद संवाद, जो ऑटोनोमस मशीन्स बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है हॉलीवुड की, कि मशीनों के बीच के संवाद को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बोलते होंगे, इससे हमारा कोई उतना सरोकार नहीं रहने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के उन्हीं का विषय होगा। लेकिन धीरे धीरे इसकी पड़ताल करने पर मुझे जानकारी हुई कि ये एक ऐसा विषय है जिसकी उपयोगिता मेरे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में भी है
1: जी।
2: तब मैंने धीरे धीरे इस पर शोध करना चालू किया। तो मैंने जैसे बताया ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर अर्बन प्लानिंग से करके मैं IIT बॉम्बे गया, वहाँ पे मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, भू संचार प्रौद्योगिकी, इस पे अपना परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहाँ पे मेरा जो काम था वो यही था कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका मशीन लर्निंग नाम का एक सब डोमेन है, उसकी मदद से हम लोग जो अपने सेटेलाइट इमेजरी रहती है उसकी विवेचना करने का, उसके विश्लेषण करने में योगदान ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो यही वो समय था जब मैंने अपनी आंखों से AI का अपने विषय में इस्तेमाल देखा, और उस इस्तेमाल को, चूंकि मैं बाहरी था, कंप्यूटर साइंस से बाहर से आ रहा था, और मैंने देखा कि जब मेरे विषय में AI इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे जब मैं यहाँ मैनिट में पढ़ता था तो किसी शहर की शहरी विकास योजना बनती है, शहर का एक नक्शा बनता है, तो 5-6 लोग 2-3 दिन बैठ के एक एक बिल्डिंग को फुटप्रिंट बनाते जाते हैं। मतलब शहर की सेटेलाइट इमेजरी इसरो से आएगी, एक एक सड़क को डिजिटाइज करेंगे, एक एक बिल्डिंग फुटप्रिंट को डिजिटाइज करेंगे, एक एक फीचर, नदी, नाले, पेड़, 5-6 लोगों की टीम 1-2 दिन लेती थी किसी भी बड़े शहर के लिए। AI की मदद से ये जो मैनुअल काम था डिजिटाइजेशन का, वो इसरो स्वयं ही करके देता था। मतलब वो अपने आप इमेज में, इसको कंप्यूटर विजन तकनीक बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंदर, अपने आप ही फीचर डेलिनेट हो गया। आप सोचिए 4-5 लोगों के 2-3 दिन की मेहनत एक क्षण में सॉल्व हो गई। उसके बाद से मेरे को ये चीज समझ में आई कि भाई इस तरीके से ये सिर्फ 2 मशीनों के बीच में संवाद का जरिया नहीं है, ये हम लोग जो कंप्यूटिंग डिवाइस को जैसा प्रयोग में लेते आए हैं आज तक, उसको पूरी तरह से बदलने वाला है। और फिर मेरे को समझ में आया कि ये मेरे विषय पे नहीं, लगभग हर विषय में जितने भी मैनुअल काम है उन सबको हटा के एक नए तरीके से काम करने की दृष्टि देगा। तो मेरे बैकग्राउंड से मैंने AI के साथ सामंजस्य बनाते हुए फिर इसी विषय को आगे ले जाने का सोचा, और फिर मेरी PhD जो संपन्न हुई वो पूरा मशीन लर्निंग बेस्ड वेटलैंड मॉनिटरिंग पे थी। और अभी मैं इसी विषय के बारे में और कैसे अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है उस पे भी लोगों में जागरूकता फैलाने का या उनको इसके प्रति सेंसिटाइज करने का प्रयास करता हूँ।
1: तो AI क्या कोई सॉफ्टवेयर है जो लोग इसका इस्तेमाल कर लें और फिर अपने काम में ले लें?
2: सर, ये आपका बिल्कुल बहुत सही पकड़ा है आपने। कंप्यूटर रेवोल्यूशन में हम लोग के सामने, नज़रों के सामने एक कंप्यूटिंग डिवाइस था, डेस्कटॉप कंप्यूटर था। आप देखे होंगे जब आप छोटे थे तो कंप्यूटर्स का जो यूज़ था वो बहुत लिमिटेड था, ऑफिसों में, पावर प्लांट्स में रहता था। आज इस स्टूडियो से लेके रेलवे स्टेशन के काउंटर तक, या अस्पताल के फ्रंट डेस्क तक, या किसी होटल के रिसेप्शन में लॉबी तक आप कंप्यूटर को हर जगह पाएंगे। कंप्यूटर एक प्रोडक्ट के कारण होने के कारण हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर के कितने उपयोग हो सकते हैं। एआई वस्तुतः सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर कहने का तात्पर्य यह है कि वो टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कंप्यूटर था, जैसे टीवी था, वो एक प्रोडक्ट था। लेकिन जैसे इंटरनेट है, दो कंप्यूटर्स के बीच में, चलिए इंटरनेट भी मैं कहता हूँ कि कुछ हार्डवेयर रहता है, वायर्स या वायरलेस, लेकिन एआई जो रहेगा वो कंप्यूटर के बैक एंड पे कंप्यूटर के प्रयोग को 10 गुना या 100 गुना या 1000 गुना और प्रभावी बनाएगा। उदाहरण मैंने आपको बताया कि 4-5 लोग जो मिलके एक शहर के खांचे को डिजिटाइज करते थे, वो एआई कुछ क्षणों में, कुछ सेकेंडों में कर लेता है। या आपके पास मान लीजिए सेंसस डेटा है एक शहर का, लगभग 20 लाख लोगों के अलग अलग उनके सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया, उसकी आप जानकारी है, उससे अगर आपको एनालाइज करना है किसी विशेष पहलू पे, तो आपको पहले उसमें कुछ प्रक्रियाएं लगती थी, कुछ समय लगता था, कुछ ऊर्जा लगती थी, अब वो आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो मूल रूप से ये बैकएंड में काम करने वाला एक टेंजिबल माध्यम मीडियम फॉर्म में ना होने के कारण इसको सॉफ्टवेयर तो सही नहीं होगा, लेकिन एक नॉन टेंजिबल रेवोल्यूशन है जो कंप्यूटर्स के बैकएंड पे हो रहा है, जो हमारे कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। चैट जीपीटी आपने बोला, अब चैट जीपीटी आने से पहले लेखकों के, कॉपी राइटर्स की बहुत अच्छी दुकान चलती थी, लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन जो हर मोबाइल में जाके आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट दे दे, आपको कॉपी राइट दे दे, तो ये बैकएंड में ही संचालित हो रहा है, वही एआई है।
1: एक बात जो अभी भी आपने कही कि 5 या 6 लोगों का फुटप्रिंट लगता था, 5-6 लोग उस पर 2-3 दिन 6 दिन काम करते थे, तो अब वो 5-6 लोग नहीं लग रहा है, एक हाँ। बात दूसरी चीज उतना समय भी नहीं लग रहा,
2: बिल्कुल।
1: तो क्या माने एआई आने से लोगों के काम छिन गए?
2: देखिए कोई भी नई तकनीक जब आती है तो अपने साथ कुछ तो कार्य क्षेत्र में चेंज लाती है। कंप्यूटर्स के आने के पहले मुझे याद है जब मैं छोटा था तो टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट रहते थे, शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती थी, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग के कोर्सेज होते थे और इसमें कई लोग जाते थे। कंप्यूटर्स आने के बाद और कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन के बाद, जब कंप्यूटर्स का फॉर्म फैक्टर, जब स्मार्टफोन आ गए या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते गए, इंटरनेट पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती गई, तो अब ये टाइपराइटर भी ऑब्सोलीट हो गया। DTP का जो एक व्यवसाय चलता था अपने भोपाल के ही जवाहर चौक में, आपको याद होगा कितने सारे DTP की जगह थी, या साइबर कैफे चलते थे। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपने साथ डिसरप्शन लाती है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सच है कि जो मैनुअल रिपीटेटिव काम है, जैसे नक्शे में फीचर्स को आइडेंटिफाई करना या रिसर्च करना, लाइब्रेरी में जाके अपने काम की चीज ढूंढ के लाना, तो जो मैनुअल रिपीटेटिव टास्क है वो काफी हद तक ऑटोमेट होने से मैन पावर काफी फ्री हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इसका एक पहलू को देख के ये बोलना कि इतने सारे लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो वो करेंगे क्या, ये थोड़ा बेमानी होगा। क्योंकि एक तरफ तो लोग फ्री हो रहे हैं रिपीटेटिव टास्क, तो चैट जीपीटी उनको ये सुविधा भी देता है कि वो चाहें तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनने में सबसे बड़ी बाधा आती है टेक्नोलॉजी के, कैमरे की, आज सबके पास स्मार्टफोन है, विषय की और विषय के प्रस्तुतिकरण की। आज चैट जीपीटी में आप अपने एक स्क्रिप्ट डालिए या उससे बोल दीजिए कि भाई इस विषय के बारे में कोई जानकारी दे। हाँ, ये जरूर है कि वो जानकारी सही है कि नहीं है वो हमको देखना है, लेकिन अगर जानकारी आ गई तो उसे किस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म वीडियो में 30 सेकंड 60 सेकंड में क्लब डाउन करना, ये हर कोई कर सकता है अपने मोबाइल से। तो लोगों के पास जीविकोपार्जन के, स्किल डेवलपमेंट के नए आयाम भी खुलेंगे। तो स्किल रिफॉर्म करना, स्किल डेवलपमेंट करने की तो आवश्यकता रहेगी, लेकिन इस विषय में बहुत ज्यादा सोचना कि बेरोजगारी बढ़ाएगा, मेरे ख्याल से जॉब का नेचर बदल जाएगा और बदलते समय में लोगों को भी उस स्किल को रीडेवलप करना पड़ेगा, ये AI एक आयाम लाने वाला है। मैं यहाँ पे जो प्रशासनिक अकेडमी है वहाँ पे भी इसी विषय पे ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि बदले समय में AI के युग में सफलता पाने के लिए, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, प्रोफेशनल में हो, सबसे जरूरी रहेगा 3 चीज़ों करना, लर्न, अनलर्न और रीलर्न, यानी सीखना, फिर उसे भुलाना और पुनः सीखना। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से परिवर्तन लाएगी उसमें मुझे भी एज अ शिक्षक, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक डिटेल उदाहरण दूंगा IIT और के मेरे कुछ साथी शिक्षक हैं और हम लोग किस विषय में विवेचना करते हैं कि AI हमको रिप्लेस ना कर दे, हमें भी अपने फील्ड में रिलेवेंट बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा और रीलर्न करना पड़ेगा।
1: मैन पावर की भी आपने बात कही थी, तो इसे मैन पावर फ्री करना बेरोजगारी ही बढ़ाना तो है या नहीं है?
2: देखिए, जो 5 दिन हम लोग नक्शा बनाने में लगाते थे वो 5 दिन बचा के हम उसको नक्शों की अच्छे से विवेचना करने में लगा सकते हैं, एडवांस स्टडी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं किसी शहर के सड़कों को डिजिटाइज करने में 2 दिन लगाता था, अब मेरे को सड़कें बन रही हैं, और इनफैक्ट मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला था अमृत के मास्टर प्लान प्रोजेक्ट में, मणिपुर के इम्फाल शहर के मास्टर प्लान प्रिपरेशन में, वहाँ पे हमें जो इसरो से शीट्स आई, सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजी, वो ऑलरेडी डिजिटाइज थी, हमको वो नक्शा ले जाके ग्राउंड

0: दिन काम होता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो ये वर्क आवर्स कम हो जाएंगे, तो इस चीज़ को हम चैनलाइज कर सकते हैं दूसरे उसमें। हाँ, ऐसे लोग जो मैं कह सकता हूँ शैक्षणिक स्तर पे नीचे है, जो इतने स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए भी चीज़ों या तकनीक के प्रति उनकी पहुँच जो है वो और सुविधा युक्त हो जाएगी, तो अगर वो चाहे तो इसकी मदद से नए स्किल्स को सीख के अपने आप को मार्केट रिलेवेंट बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हर युग में हुआ है। ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन चूंकि AI इतनी तेजी से चेंज हो रही है तो बहुत आसानी से लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ देखा जाए तो लोगों के पास ये संभावना रहेगी कि अपनी स्किल को अनलर्न करके कैसे वो रीलर्न करके मार्केट रिलेवेंट बन सकते हैं।
1: अनुग्रह जी, एक बात और कि अभी AI को आए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं अगर माने, तो अभी सबसे ज्यादा उपयोग इसका कहाँ हो रहा है?
0: देखिए, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोध विषय है, ये 1960 से चल रहा था। 2-4 साल पहले इसलिए हुआ है क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई थी कि हम AI के एडवांटेजेस को रियल लाइफ में देख पाए। जैसे मैंने बताया कि मैं 2014 से 16 के बीच में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने AI के कुछ परिणाम देखे थे। 2022 के एंड में जब ChatGPT लॉन्च हुआ, वो पहला ऐसा स्टेज था कि एक सामान्य आदमी भी एक तरह से यूज कर सकता था AI को अपने दैनिक डेली डे टू डे टास्क के लिए। तो आज की डेट में मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 साल में ChatGPT हो गया है, Gemini हो गया है, Airtel के यूजर है तो Perplexity मिल जाता है फ्री में, इतने ज्यादा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल्स हैं, तो ऑलमोस्ट हर विषय में ही इनकी उपयोगिता हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रहा है। इसकी बजाय अगर प्रश्न ये हो कि कहाँ यूज नहीं हो रहा है, वो है जैसे मैं अपने IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस के बहुत वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर है उनके साथ बैठा था, IIT हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और रुड़की के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और भी मेरे साथी लोग थे। हम लोग एक वर्कशॉप में गए थे, वहां पे चर्चा हो रही थी, तो वहां पे कंप्यूटर साइंस कानपुर वाले कंप्यूटर साइंस के सीनियर प्रोफेसर ने बोला कि भाई ये AI हम लोग को भी रिप्लेस कर देगा। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने बोला यार IIT के कंप्यूटर साइंस के ही जिन्होंने मशीन लर्निंग पे पिछले 20-30 सालों से शोध किया हो, वो प्रोफेसर ऐसा बोला। मैंने पूछा प्रकाश डाली, तो बोला कि IIT में उनका एक स्टूडेंट है उनके विषय का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया करता है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाता है, मतलब ही इज वेरी शार्प, लेकिन वो क्लास अटेंड नहीं करता
1: जी।
0: तो जब उनसे पूछा गया, चूंकि उसमें मेंटरशिप होता है IIT में, डिप्रेशन में नहीं चले जाए, सुसाइड नहीं हो, तो संवाद अच्छा रहता है टीचर और स्टूडेंट का, तो उसको बुला के पूछा भाई आप पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन क्लास नहीं आ रहे हो, कुछ सब कुछ कुशल मंगल है, क्या समस्या है? तो बच्चे ने बोला सर जो मैं कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो मैं AI की मदद से इंटरैक्टिव तरीके से, 1 घंटे का मान लीजिए क्लास है तो 15 मिनट में वो टॉपिक समझ जाता हूँ। और ऐसे टूल्स हैं, मैं भी अपने टीचिंग पेडागोजी में पढ़ाने के लिए कई ऐसे टूल्स यूज करता हूँ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, कैसे इसको सरल भाषा में समझाया जा सके। तो बोले सर 1 घंटे की क्लास का मटेरियल मैं 15 मिनट में कंज्यूम कर लेता हूँ और वो मेरे रिजल्ट में प्रोजेक्ट में दिख रहा है, बचे हुए 45 मिनट में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या ऐसा कोई नया स्किल सीखता हूँ जो मेरे जीविकोपार्जन में या प्लेसमेंट में मेरे काम आए। तो मेरे लिए क्लास आने का इंसेंटिव क्या है? अब ये प्रश्न देखिए, कॉलेज IITs में अगर एक उद्देश्य देखा जाए तो ठीक है, आप लोगों को पैकेज अच्छा मिले, इंस्टीट्यूट्स शुड गिव गुड प्लेसमेंट टू द स्टूडेंट्स, तो बच्चा कमाने लायक स्किल सीख रहा है, और जो कॉन्सेप्ट उसको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा, वो बोल रहा है कि वो 15 मिनट में सीख रहा है। तो प्रोफेसर ने यही कहा कि भाई AI तो हमको भी रिप्लेस कर देगा। अब इस बदलते दौर में हम ऐसा क्या करें कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बेहतर बच्चों को एंगेज करके रख पाए, ये चैलेंज है। ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए बताया कि टीचिंग एक ऐसा विषय है जहाँ पे अपन कोशिश करते हैं कि 1-on-1 बात करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया जाए, वहाँ पे भी AI घुस चुका है। और ये एक फील्ड का है, जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया में आजकल कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर्स की भरमार आ गई है। आपके आजू बाजू कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि ये लेखनी में उतने उत्कृष्ट हो सकते हैं, वो सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कैमरे में ऑटोमेटेड फिल्टर्स है। आप किसी व्यक्ति को निजी रूप से जानते हैं लेकिन आप उसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा यार इसने प्रोफेशनल फोटोशूट करवाया हो, उसके पास AI इनेबल्ड कैमरा या फिल्टर है। तो प्रश्न अगर ऐसा हो कि कौन से ऐसे विषय हैं जहाँ पे AI पेनिट्रेट नहीं करेगा,
1: वो DP में बड़ा भारी एक परिवर्तन दिख ही रहा है।
0: हाँ,
1: मतलब वो ऐसा कह सकते हैं क्योंकि अपन ने बात ही शुरू करी थी, विषय भी अपना AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कुल मिला के आर्टिफिशियल उसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है, वास्तविक कितना है ये एक अलग विषय है।
0: हाँ।
1: उस आर्टिफिशियल को कितना आप और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात आपने कही थी अभी अभी, 15 मिनट में कोई भी स्टूडेंट वो अपने विषय को उससे बेहतर समझ लेता है, तो ये अंतर कैसा है? क्या मतलब वाकई जैसे कोई 10वीं का 12वीं का स्टूडेंट या कहीं का पढ़ने वाला इंजीनियरिंग का मेडिकल स्टूडेंट, ऐसा क्या है कि वो उसको उसमें 15 मिनट में उस चीज़ को समझ लेता है बनस्पत टीचर के समझने से?
0: देखिए, आप भी कभी कोशिश करके देखिएगा कोई ऐसा तकनीकी विषय जिसके बारे में आपको जानना है, जैसे AI मान लीजिए, आप ChatGPT खोल के उसमें लिखिएगा इमेजिन यू आर अ टीचर
1: जी,
0: एक्सप्लेन AI टू मी लाइक आई एम अ

0: क्लास टेंथ स्टूडेंट
1: जी,
0: क्लास फिफ्थ स्टूडेंट करके देखिएगा, उसका आउटपुट अलग रहेगा। आई एम ए स्टूडेंट परस्यूइंग लेट्स से बीए इन पॉलिटिकल साइंस, तो आप पाएंगे कि वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कोई भी चैट जीपीटी हो या एंथ्रोपिक, वो हर बार आपके उस स्तर के हिसाब से आपको आंसर दे रहा है। इन सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का सर जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो बहुत विशाल है। मतलब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की काम करने की प्रक्रिया ऐसी रहती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं। वो ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत बड़े ट्रेनिंग डेटा सेट पर ट्रेन किया गया। इसको मैं अगर एक शब्दों में समझाना चाहूँ तो एक पूरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें होती हैं उन किताबों की 10 गुना किताबों से उनको ट्रेन किया गया। मतलब उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उन सारी किताबों को एक तरह से पढ़ा हुआ है और उस पूरे पढ़े हुए टेक्स्ट की मदद से वो अगला शब्द या अगला सेंटेंस प्रिडिक्ट करते हुए अपनी बात कहता है। तो उसका जो कॉर्पस ऑफ नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा विशाल है। मैं फिर दोहराऊंगा कि वो समझता नहीं है उन टेक्स्ट, उन लाइनों का, उन शब्दों का अर्थ नहीं समझता, लेकिन उसने चीजों के पैटर्न को समझा है, ग्रामर के पैटर्न को समझा है, सब्जेक्ट के पैटर्न को समझा है, और उसी तर्ज पे वो अगले शब्द, अगले वाक्य, अगले पैराग्राफ रिक्रिएट कर रहा है। तो उसका कॉर्पस ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जितनी किताबें नहीं पढ़ पाएगा। आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑलरेडी उससे ज्यादा किताबें पढ़ चुके हैं। तो उस ब्रॉड कॉर्पस ऑफ नॉलेज से वो कैसे कंटेक्चुअलाइज करके अपने सवाल को जवाब दे पा रहा है, वो उसे बहुत इफेक्टिव बनाता है टीचिंग के लिए। दूसरा होता है, जैसे अपन टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात करते हैं, आमतौर पे देखा जाए तो जितने कम स्टूडेंट होंगे एक पर टीचर, उतना बढ़िया टीचिंग पेडागोजी होगी। अब समस्या यही आती थी कि भाई ऐसा तो कोई परिस्थिति बनती नहीं है कि एक टीचर एक स्टूडेंट के ऊपर हो, एटलीस्ट 10 या 15 का तो बैच हो गई, और जितने ज्यादा बच्चे होंगे टीचर के लिए एक बच्चे पे ध्यान देना उतना मुश्किल होगा। यहाँ पे आपके पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से, उसके रुचि के विषयों के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से इंडिविजुअली उसको कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है
1: जी।
0: तो ये AI का एडवांटेज है। दैट बीइंग सेड, इतना सब करने के अलावा AI के बहुत भयंकर दुष्परिणाम भी है। यहाँ पे एक दुष्परिणाम जो मैं बताना चाहूंगा ताकि बैलेंस हो जाए कहानी, वो ये है कि चूंकि AI समझता नहीं है शब्दों को, वाक्यों को, वो स्टैटिस्टिकल पैटर्न पे अगला वर्ड, अगला लाइन, अगला पैराग्राफ प्रेडिक्ट कर रहा है, तो AI कई बार हेलुसिनेट भी कर लेता है या गलत जानकारी भी दे सकता है। तो ये चीज भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो AI बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ट्रेनिंग डेटा सेट में जो है वो अगर सही है तो AI सही प्रेडिक्ट करेगा, अगर उसमें ट्रेनिंग डेटा सेट में बायस है। जैसे आज से 2-3 साल पहले बड़ा अच्छा एक केस हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे बताया कि चैट GPT से अगर आप बोले इमेज जनरेट करने को कि एक व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा है, लेफ्ट हैंड से, तो वो क्रिएट नहीं कर सकता। लोगों ने बड़ा इसको हल्के पे लिया कि यार बताइए प्रधानमंत्री जी कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो सही था, चैट GPT से अगर आप प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे कि भैया एक ऐसे फोटो जनरेट करो जिसमें व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा, वो लेफ्ट हैंड से लिखने वाले व्यक्ति की फोटो बना ही नहीं सकता था। ये मैंने क्लास में बच्चों को करके दिखाया था, शायद अब वो बता सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जिन इमेजेस पे वो ट्रेन हुआ होगा या जिन कॉन्टेक्स्ट पे वो ट्रेन हुआ होगा उसमें उसके पास कोई लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करते हुए व्यक्ति की इमेज उसने देखी या समझी नहीं होगी। तो उसके ट्रेनिंग डेटा सेट में चूंकि सब राइट हैंड से लिख रहे थे इसलिए वो भी राइट हैंड से क्रिएट कर रहा था। तो एक तो ट्रेनिंग डेटा सेट की उपलब्धता, उसके बायसनेस, और दूसरा वो जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो सही है कि नहीं, ये देखना आवश्यक है। अन्यथा जो एडवांटेज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी तरह उल्टा जा सकते हैं।
1: डॉक्टर अनुग्रह नगाइच हमारे साथ मौजूद थे आज स्टूडियो में, उन्होंने इतना तफसील से इस विषय को बताया हमें। कार्यक्रम टेक गुरु में आज AI पर जो हमने बातचीत की उसमें इस भाग में हमने जाना कि आखिर AI है क्या, AI कहां कहां अपना असर डालने वाला है, और ऐसे कई सारे प्रश्न। डॉक्टर अनुग्रह नगाइच का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: ये चर्चा जारी रहेगी आगे भी। तो ये था कार्यक्रम टेक गुरु जिसमें आज हमने बात की AI पर। ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच में जो पहुंचाया इसके मार्गदर्शक थे संतोष कुमार वर्मा जी, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा हमारे साथ सतीश पाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आपका अपना 90.8 MHz रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित नारायण ब्रज।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ और इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। आइए आज इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं चंद पंक्तियों से, जो कि कुछ इस तरह से हैं। दिलों में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, दिलों में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, आसमानों से ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश जुनून को, वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश जुनून को, हम तो मुट्ठी में अपनी जान लिए फिरते हैं। वाकई में श्रोताओं, इन दिनों कार्यक्रम में हम जिस जंग की बात कर रहे हैं, यानी कि कारगिल की लड़ाई की, इसकी गौरव गाथा हमारी सेना के ऐसे ही नौजवानों की कहानी है जिन्होंने सीमा पर अपनी बहादुरी, अपनी दिलेरी और बलिदान से एक मिसाल कायम की है। श्रोताओं, कारगिल का युद्ध सबसे मुश्किल जंगों में यूं ही नहीं गिना जाता। ये युद्ध बेहद ही कठिन परिस्थितियों में लड़ा गया था, जिनका जिक्र हम कार्यक्रम के पिछले एपिसोड से कर रहे हैं। और इन परिस्थितियों का भी सामना करते हुए हमारे देश की सेना के बहादुर सिपाहियों और अफसरों का अपनी मुट्ठी में देश के लिए जान रखने का जज्बा और दिलेरी ने कारगिल के पहाड़ों को भी नतमस्तक कर दिया। उनकी वीरता, उनकी सुनियोजित रणनीति और देश के प्रति मर मिट जाने के जज्बे ने ही इस युद्ध में हमें सफल बनाया और दुश्मन को उखाड़ फेंका। श्रोताओं, कारगिल के युद्ध में हमने अब तक जाना कि द्रास सेक्टर को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कर दिया था। आइए चलते हैं सन 1999 के कारगिल में एक बार फिर, जहां कारगिल की दूसरी चोटियों पर बैठे दुश्मन से लड़ने की चुनौती भारतीय सेना के लिए अभी बाकी थी। कार्यक्रम में इस जंग के हर पहलू को, हर तथ्य को हमारे सामने रखने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और कारगिल के इन क्षेत्रों का स्वयं भी अनुभव रखते हैं। स्वागत है सर एक बार कार्यक्रम में फिर से आपका।
3: जय हिंद पूर्वा जी।
2: जय हिंद सर।
3: जय हिंद श्रोताओं। पूर्वा जी, इससे पहले कि हम एपिसोड में बात करें
2: जी,
3: कुछ एक बातें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ।
2: जी बिल्कुल सर।
3: जैसे आपने अभी बोला कि हमने द्रास सेक्टर में विजय हासिल करी, फिर हम बाकी देखते हैं। जो ये इंट्रूजन था, जैसे पूरा हमने पहले भी बताया कि जैसे 134 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली था, तो इसमें जो अलग अलग जगह पे इंट्रूजन हुआ था, जिसमें कि द्रास सेक्टर है, उसके अगर हम वेस्ट में देखें श्रीनगर की तरफ, तो मशको वैली में इंट्रूजन हुआ था
2: जी।
3: और अगर द्रास से हम कारगिल की तरफ जाते हैं
2: जी,
3: उस इलाके में, एंड देन बटालिक सेक्टर उसके ऊपर जो आते हैं, ये जो पूरे इलाके थे
2: जी,
3: बटालिक चोर बाटला सेक्टर है, ये सभी इलाकों में एक साथ जो है युद्ध हो रहा था।
2: पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था ये युद्ध, क्योंकि घुसपैठिए तो सारे तरफ थे।
3: सारी तरफ से मतलब जो युद्ध हो रहा था, जो हम इनको धकेल रहे थे, जो ये कैप्चर हो रही थी, तो ये सारी की सारी जो है कार्रवाई एक साथ चल रही थी।
2: ये पूरी युद्ध की प्रक्रिया सब तरफ चल रही थी
3: जी, सब तरफ
2: एक ही समय
3: थी। और जस्ट टू अंडरस्टैंड इट इन मच बेटर मैनर, वी आर टेकिंग इट वन बाय वन।
2: जी बिल्कुल सर, ये इस तरह से हम इसको आसानी से समझ भी सकते
3: हैं। एग्जैक्टली। एंड दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, जब हम किसी सेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ एक लोकेशंस के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं
2: जी।
3: जैसे हमने टाइगर हिल के बारे में जिक्र किया था, जैसे कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मतलब और भी जो है लोकेशन है, तो उसके आसपास जैसे एनिमी है
2: जी,
3: तो उनको भी कैप्चर करने के लिए यूनिट्स ने जो है पूरा दमखम लगाया था।
2: जी बिल्कुल सर।
3: एक एक लोकेशन के ऊपर जो है कैप्चर करने के लिए एक एक मतलब ऑपरेशंस लॉन्च हुए थे। जैसे माउंटेन्स में क्या होता है कि इन्फेंट्री डोमिनेटेड ऑपरेशंस होते हैं
2: जी, मतलब
3: पैदल सेना जो है प्राइमरीली वो अधिक प्रभावी रहते हैं
2: जी,
3: उनका रोल रहता है
2: जी, बिल्कुल।
3: लेकिन जो ये युद्ध था इसमें मतलब इट वॉज अ कोऑर्डिनेटेड बैटल जिसमें कि सेना के जितने भी मतलब आर्म्स एंड सर्विसेस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उनका जो कंट्रीब्यूशन था विच वॉज इक्वली देयर
2: बराबरी से था जी।
3: और इस वक्त जब कारगिल का युद्ध हो रहा था पूरे देश में सेनाएं सतर्क थी
2: जी,
3: यहाँ तक कि इंडियन नेवी ने भी उस समय ऑपरेशन तलवार अरेबियन सी में लॉन्च किया था ताकि अगर किसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से कुछ होता है तो उसके लिए वो लोग अलर्ट थे
2: एंड यदि युद्ध फैल जाए तो हम उसको हैंडल कर सकें
3: तो इट मतलब एवरीबॉडी वाज एक्टिव ड्यूरिंग दिस वॉर, नॉट दैट कि ओनली द पीपल हु वर देयर इन कारगिल
2: जी,
3: ऑफ कोर्स दे वर फाइटिंग द वॉर बट अदर्स वर आल्सो अलर्ट,
2: उतनी सतर्क और चौकन्ने थी
3: जी,
2: चारों सीमाओं पर, चारों दिशाओं।
3: जैसे इसमें अगर हम IAF इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो वो पूरे देश की जो बॉर्डर्स के पर वो चौकन्ने थे
2: जी।
3: इसके अलावा जो है कारगिल में तो उनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था,
2: ऑपरेशन सफेद सागर के,
3: ऑपरेशन बिल्कुल सही बोला आपने, ऑपरेशन सफेद सागर के अंतर्गत जिसमें कि उन्होंने जो है एनिमी जहां इंट्रूडर्स थे इनके ऊपर अटैक्स लॉन्च किए थे, बमबारी करी थी, प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल जो थी वो थे, बॉम्ब्स गिराए थे, देन उसके अलावा उन्होंने रेकी मिशंस किए थे जिससे हमें पता चला था कि सिचुएशंस क्या हैं। उनके पास भी ये रिस्ट्रिक्शन थी कि उनको LOC क्रॉस नहीं करना था।
2: ये सबसे बड़ा सर एक सीमा थी हमारी इस युद्ध में, ये हमको सीमा नहीं लांघनी,
3: ये हमारी सीमा थी। उसके बावजूद जो है जैसे उनका हेली लिफ्ट के जो ऑपरेशन थे, कैजुअल्टी इवैक्यूएशंस के थे, एंड इवन जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने मोबिलाइजेशन में जो है
2: पहाड़ी क्षेत्रों में तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है
3: जी, तो उसमें जो है मोबिलाइजेशन में जो उनका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस वॉर वॉज फॉट बाय ऑल फोर्सेस एंड इट वॉज absolutely a coordinated effort by everyone. Of course, on ground it was the infantry which was predominantly fighting the battle. तो इसलिए हम जब जिक्र कर रहे होते हैं तो आपको ज्यादा infantry का जिक्र आता है, बार बार आता है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने पिछली बार द्रास सेक्टर देखा था इसी तरह से उसके जो वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो मशको वैली आती है,
2: मतलब श्रीनगर की ओर,
3: जो है तो ये जो है मशको वैली आती है। अब यहाँ पे भी जो है पाकिस्तान आर्मी ने काफी उनका इंट्रूजन था और उन्होंने कुछ डोमिनेटिंग हाइट्स जो थी वो ऑक्यूपाई करी हुई थी जिसके कारण कि अगेन द सेम थिंग वो नेशनल हाईवे को डोमिनेट कर रहे थे, हमारी मूवमेंट्स के जो है मुश्किल पैदा कर रहे थे तो उसमें एक हाइट थी 0.4875 जिसका जिक्र बार बार अगेन आता है, उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था और वहां से उनको हटाना हमारे लिए भी इसलिए जरूरी था क्योंकि हम नेशनल हाईवे को बचाना था, नेशनल हाईवे को हम रोक नहीं सकते, उसमें रुकावट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए जो है इसको कैप्चर करने की जिम्मेवारी प्राइमरीली 13 जैकरीफ यानी 13th बटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स उनको दी गई थी। ये जो बटालियन है अगर आपको याद होगा द्रास में भी इन्होंने बहुत अच्छा
2: रोल निभाया था सर,
3: निभाया था 0.5140 के कैप्चर में तो इस बटालियन को फिर से ये टास्क मिला था। तैयारी के बाद जो है उन्होंने 4 जुलाई पे अटैक लॉन्च किया इसके ऊपर। अब अगेन सेम सिचुएशन, सेम काइंड ऑफ माउंटेनियस टेरेन जो हम जिसका हम जिक्र बार बार करते आ रहे हैं, तो सोल्जर्स जो थे आगे बढ़ रहे थे, फायरिंग आ रही थी, इंटेंस फायरिंग आ रही थी, तो मतलब प्रोग्रेस स्लो रहती है थी, बट इट वाज अ वेरी डिटरमाइंड एफर्ट्स कि हमारा काम है, हमने करना है कुछ भी हो जाए। कैजुअल्टीज हो रही थी लेकिन उसके बावजूद भी कोई पीछे नहीं हट रहा था। तो जब ये अटैक लॉन्च हुआ, रात हुई, पूरा रात के बाद जो है इवन डेलाइट हो गई। अब डेलाइट के ऊपर जो है दुश्मन को आप दिख रहे हैं, उसमें आर्टिलरी प्लेड ए वेरी मेजर रोल, जो है आर्टिलरी का मैसिव फायर जो है एनिमी के ऊपर डाला गया
2: बिल्कुल।
3: एंड फिर भी देखिए ये एक क्वालिटी होती है सोल्जर्स की कि कितना भी खतरा है, कितनी भी मुश्किलें हैं, लेकिन वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहे थे। भूखे थे, प्यासे थे, चाहे बारिश हो कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी जगह पे डटे रहे। और निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो जो ये जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं हाइट का
2: जी,
3: जो इनका ऑब्जेक्टिव था, उससे पहले भी मतलब उससे नीचे कुछ पोस्ट थी
2: जी,
3: तो उनको कैप्चर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि तभी जो है आप आगे बढ़ के चौड़े पे जा सकते हैं। तो ये जब लड़ाई चल रही थी तो एक तरह से स्टेलमेंट आ रहा था, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किल जैसे आ रही थी। तो इसमें एक सोल्जर थे राइफलमैन संजय कुमार
2: जी,
3: जो आज आप जानते हैं ऑलरेडी कैप्टन हैं
2: जी,
3: परमवीर चक्र विजेता हैं
2: जी।
3: तो उन्होंने काफी अदम्य साहस का परिचय दिया था, वो अपनी लीडिंग प्लाटून में थे कंपनी की, उन्होंने वॉलंटियर किया, वॉलंटियर करके जो है वो आगे अटैकिंग कॉलम के साथ गए थे और दुश्मन पे जो है उन्होंने आगे बढ़ते हुए हमला किया था। एंड सी अगेन जो है इट नीड्स लॉट ऑफ करेज ऐसे कार्य करने के लिए, जो है आगे बढ़ने के लिए, जब एक तरह से आप देखिए बिल्कुल सामने से मौत आ रही है, फिर भी जो है अपनी परवाह ना करके, बिना किसी जो है अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये वीर बहादुर सोल्जर जो है
2: जानबूझकर निर्णय लेना आगे बढ़ने का।
3: हाँ, अगर सोच समझ के करेंगे तो कर ही नहीं सकते हैं
2: जी जी बिल्कुल
3: नहीं सर, ये एक जोश होता है
2: जी,
3: ये जोश होता है ठीक है, और मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई जानबूझ के कर रहा है, मतलब बट ये एक जोश जो होता है वो उस समय
2: जी,
3: अपने अंदर इतना हौसला होता है
2: जी,
3: ये नहीं होता कि हम सोचते हैं कि हम मर जाएंगे
2: जी,
3: ये होता है कि मैं उसको मारूंगा। अ सोल्जर इज मेंट नॉट टू डाई फॉर हिज कंट्री, ही इज to ensure that the other chap dies for his country.
2: बिल्कुल सर,
3: है ना
2: सर, वो बोला भी गया है ना कि बंदूक में दम नहीं होता, सिपाही में दम होता है।
3: Exactly.
2: जज्बा सिपाही में होता है,
3: जज्बा सिपाही में होता है। तो संजय कुमार जी जो थे उन्होंने जो है बिल्कुल अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए आगे बढ़े, दुश्मनों पे उन्होंने अटैक किया था और उनको देख के जो है फिर बाकी जो उनके साथ जोश बड़ा वो काफी ज्यादा था, वेर एबल टू कैप्चर वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, उसको फ्लैट टॉप बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि देखिए फ्लैट टॉप से एक फुटहोल्ड मिला जिसके कारण जो है 0.4875 पे हम मतलब जो है 13 जैकरी कब्जा करने के लिए रास्ता आसान हो गया। अब इसमें जो है संजय कुमार जी को भी खुद को भी जो है
2: घायल हुए थे,
3: बुलेट इंजरीज हुई थी। बट ऐसे ही लोग होते हैं जो अपनी ड्यूटी और अपने देश को आगे रखते हैं, जिनके कारण बैटल्स जीती जाती हैं। एंड इन्हीं लोगों के जो बहादुरी होती है जो बाकी लोगों को भी मोटिवेट करती है, इसलिए जो है इनका नाम इतनी इज्जत से लिया जाता है। जैसे कि आपने जिक्र किया था उनको इस अदम्य साहस के लिए, उनके आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी के लिए जो है परमवीर चक्र से
2: सम्मानित
3: किया गया था। आज वो ऑनरेरी कैप्टन है एंड आज भी जो है उनकी जो वीरता है उसको याद करके लोगों में काफी सोल्जर्स में काफी जोश भर जाता है। तो 13 जैकरिफ ने ये फ्लैट टॉप फीचर कैप्चर करने के बाद अपने एफर्ट्स लगाने शुरू किए 0.4875 को कैप्चर करने के लिए। अब 4875 की लोकेशन ऐसी थी कि उसके पीछे मतलब नॉर्थ में एक पोस्ट थी जो जहां से एनिमी जो है फायर कर रहा था और इंटरफेरेंस कर रहा था, आगे बढ़ने से मतलब जो है रोक रहा था। अब उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी था और ये जो काम है मतलब लोकेशन के कारण आर्टिलरी फायर वगैरह से नहीं हो सकता था, उसके लिए इन्फेंट्री को ही जाके करना था। तो इस समय जो है हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा जो ऑलरेडी अपनी बहादुरी और अपनी लीडरशिप प्रूव कर चुके थे, उन्होंने वॉलंटियर किया, वो सामने आए,
2: एक बार फिर से उन्हें जिम्मेदारी दी गई,
3: उन्होंने जिम्मेदारी ली कि मैं जाऊंगा और इसको मैं निस्तनाबूद करके जाऊंगा।
2: दिल मांगे मोर के कारण
3: ये लोकेशन ऐसी थी कि जो इट्स वेरी स्टीप क्लाइम जैसे है और बहुत नैरो था, मतलब उसके दोनों तरफ खाई है, बहुत छोटा सा सकरा सा रास्ता था जिसपे चलते हैं। अगर मैं उसका एग्जांपल आई डोंट नो, लेकिन जब आप जाते हैं तो आपको दोनों तरफ खाई दिखती है और आप बहुत ही नैरो उसमें चल रहे होते हैं एंड अब आप सामने से फायर आ रहा है, आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं,
2: बचना भी है
3: और साथ में दुश्मन को मारना भी है। तो कैप्टन विक्रम बत्रा विद हिज टीम मूव्ड अहेड एंड ही अटैक द एनिमी, ठीक है, ओके, और करके जो है हैंड टू हैंड फाइट में मतलब दे वर एबल टू कैप्चर द पोस्ट बाय किलिंग ऑल ऑफ देम। पोस्ट तो मतलब उनके साहस के कारण, इनके मोटिवेशन आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के कारण कब्जे में आ गई, बट अनफॉर्चुनेटली कैप्टन विक्रम बत्रा ही सकम टू हिज इंजुरीज एंड देश ने एक बहुत ही बहादुर वीर को खोया था।
2: जी,
3: मेरे ख्याल से शायद ही कोई भारतीय होगा जो ये सुन के जिसकी आंखें नम ना हुई हों उस समय। एंड राइटली एंड वेरी करेक्टली ही वाज अवार्डेड परमवीर चक्र। ही इज एक्चुअली द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव।
2: जी सर।
3: एंड मैं इतना जरूर कहूंगा कि आने वाली सदियों तक जो है
2: इनको याद रखा जाएगा,
3: इनको याद रखा जाएगा,
2: इनके बलिदान को भूला नहीं जा सकता सर, हम हमेशा इनके ऋणी रहेंगे।
3: बिल्कुल। और जो सोल्जर्स हैं वो उनसे काफी प्रेरित रहते हैं।
2: जी सर।
3: और रहेंगे भी। तो आप ये देखिए 13 जैकरिफ मतलब 13th बटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, इस ऑपरेशन में उनके सोल्जर्स ने कितना मतलब वीरता दिखाई, कितना बलिदान किया कि उनको दो दो परमवीर चक्र मिले थे, जो कि बहुत यूनिक होता है।
2: जी सर।
3: बहुत
2: एक ही युद्ध में,
3: एक ही युद्ध में जो है उनको जो है दो दो जो है परमवीर चक्र मिले थे। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब एक हाइट कैप्चर होती है तो उसके आसपास भी जो होता है और भी लोकेशंस होती हैं, तो इसमें 13 जैकरिफ के अलावा भी बटालियंस थी जिनको टास्क दिया गया था और भी इम्पोर्टेंट जो लोकेशंस थी उनको कैप्चर करने का। और इन सभी जगहों पे जो हमारे यंग ऑफिसर्स थे, यंग सोल्जर्स थे, इनकी जो परफॉर्मेंस थी आउटस्टैंडिंग थी। ठीक है, अगर आपको याद हो उसमें कैप्टन अनुज नायर होते थे 17 जाट के जो है, और उनके आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी और लीडरशिप के लिए उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ऑल्दो वी लॉस्ट हिम, लड़ते लड़ते जो है वो शहीद हुए थे।
2: हर सिपाही या हर अफसर की एक कहानी है सर।
3: बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, हर एक की अपनी अपनी कहानी है। इन्हीं के कारण जो है हमें सफलता मिली थी। तो इसी तरह से अगर हम आगे देखेंगे तो द्रास के बाद कारगिल आता है। कारगिल से अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो बटालिक आता है।
2: जी।
3: तो बटालिक सेक्टर से आगे एक पास आता है चोरबाटला, उसका नाम है चोरबाट और ला,
2: ला,
3: ला इधर पास दर्रा।
2: जी।
3: ठीक है, तो इस इलाके में भी जो है पाकिस्तान ने घुसपैठ किया था।
2: जी।
3: और उनकी जो नदन लाइट इन्फेंट्री है पाकिस्तान की, उसके जो ट्रुप्स हैं वो करीब 8 से 10 किलोमीटर तक अंदर आए थे।
2: अच्छा।
3: और उन्होंने जो है डोमिनेटिंग रिज लाइन थी वहां पे, उनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। उन्होंने भी उस समय भी नाम सुनोगा जुबार, कुकरथांग, खालूबार। ठीक है, पॉइंट 5203। तो इस इलाके में भी मतलब ये सब जैसे मैंने पहले ही बोला समांतर उस ग्रुप में जो है वॉर चल रहा था।
2: जी, बिल्कुल।
3: तो यहाँ पे भी जो है बटालियंस जो है जिनको की टास्क दिया गया था
2: वो इसी दौरान ये भी यहाँ पर लड़ रहे थे।
3: बिल्कुल
2: जी।
3: उनके भी प्रयत्न जारी थे कि इनको जो है यहाँ से निकाला जाए।
2: जी,
3: जो
2: बिल्कुल।
3: है तो इस सेक्टर में प्राइमरीली अगर आप देखेंगे तो 12 जैकलाई मतलब अगेन वो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स थी।
2: हाँ।
3: ये जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री है, दोनों इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं। तो ये थी लद्दाख स्काउट्स थे, देन हमारी जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं उनकी टीम्स थी, एंड फाइव पैरा थी जो पैरा बटालियन है। तो ये मेजर फोर्सेस थी जो मतलब जिनको कि रिकैप्चर करने का और जिम्मेदारी गई थी और जो इवैक्यूएट करने की, दुश्मनों को भगाने की जिम्मेदारी गई थी। इसमें भी जो है जो फॉर्मेडेबल फीचर्स थे काफी जो है जिसमें कि जिसको कि अटैक करके जो है मल्टी डायरेक्शन से अटैक करके जो है लॉन्च करके जो है विद द सपोर्ट ऑफ मैसिव आर्टिफायर इनको जीता गया था।
2: जी।
3: यहाँ पे भी जो है अगर आप देखेंगे बहुत सारी लोकेशंस थी। ठीक है, उसमें एक जो लोकेशन जिसको बोला 5203 थी एंड इस पे जो कैप्चर किया था इट वॉज ए मेजर सक्सेस फॉर इंडियन आर्मी, क्योंकि इसके कारण जो है जो खालूबार जो रिज थी दूसरी जो है, शायद आपको ये नाम अजीब लग रहे होंगे जब मैं बोल रहा हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये लोकेशंस हैं।
2: जी सर।
3: जिसको कि मतलब आप जब हम अभी तक जिक्र कर रहे थे 4875 हाइट जिक्र कर रहे थे, ऐसे 5203 मतलब उससे भी ऊंची हाइट, ऊंची हाइट है, उतनी ही मुश्किलें हैं जो है। तो यहाँ पे भी जो है लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, अगेन जो है ही हैज बीन अवार्डेड परमवीर चक्र पोस्टमसली, अगेन ए वेरी फियरलेस यंग बोल्ड ऑफिसर। ये जो थे ये 11 GR 11 गोरखा राइफल्स की रेजिमेंट जो है उसकी फर्स्ट बटालियन जो है उसको हम बोलते हैं 111 GR उसके थे। तो लड़ते लड़ते शहीद हुए थे और इनके कारण जो है इनकी जो सक्सेस थी जिसमें जो अगेन जैसे हमने थोड़ी देर पहले एरिया फ्लैट टॉप की बात करी थी ऐसे ही इस रिज लाइन के ऊपर वो जो है अपना फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करने में सफल रहे थे और जिसके कारण जो है फिर उनकी बटालियन को फाइनली जो है कालूबर कैप्चर कर पाई थी एंड अगेन
2: आर्मी के लिए हुआ था तो उनसे पूछा गया था कि आप आर्मी में क्यों आना चाहते हैं तो उनका एक ही जवाब था कि मुझे परमवीर चक्र चाहिए।
3: शायद दिली इच्छाएं थी
2: जी सर,
3: जज्बा था
2: जी सर,
3: हौसला था और शायद भगवान ने वो मौका भी दिया
2: जी सर,
3: लेकिन शायद अगर हमारे साथ रहते तो और भी अच्छा
2: और भी अच्छा बिल्कुल सर, पर वो भी वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायक रहेंगे, प्रेरणा स्रोत रहेंगे।
3: बिल्कुल, ये लोग तो वो हैं जिनके कारण जो है आर्मी फक्र से जो है चलती है।
2: जी बिल्कुल सर,
3: हम जो है फक्र से इन्हें याद करते हैं
2: जी,
3: और इनके कारण ही जो है एक मोराल बूस्टिंग रहता है
2: जी सर।
3: और ये फैक्ट भी है जब हम इस लोकेशंस पे जाते हैं तो यू ऑलवेज रिमेम्बर देम
2: जी सर, जैसे अब कैप्टन बत्रा के नाम से बत्रा टॉप है।
3: हाँ बिल्कुल है, जब हमने चोर बाटला के एरिया की बात करी उसके आगे मैं एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा जिसको कि सब सेक्टर हनीफ बोलते हैं। जहाँ चोर बाटला है उससे अगर हम LOC के साथ साथ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ये सब सेक्टर हनीफ आता है। सब सेक्टर हनीफ के आगे फिर जो है सदर्न ग्लेशियर यानी कि जो ग्लेशियर वाला एरिया है वो शुरू हो जाता है
2: जी।
3: अब ये जो सेक्टर है अगेन साल्टोर रिज पे जो है काफी इम्पोर्टेंट हाइट्स थी। तो May 1999 में जब युद्ध शुरू हुआ था जब हमें इंट्रूजन के बारे में पता चला था तो ये डिसाइड किया गया कि इसके ऊपर जितनी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनको हमको ऑक्यूपाई करना चाहिए ताकि वहां पे किसी तरह का इंट्रूजन ना हो। तो इसके लिए जो 11 राजरिफ अगेन दैट इज 11th बटालियन ऑफ राजपुताना राइफल्स को ये टास्क दिया गया था कि वहां पे लोसी के ऊपर लोकेशन थी 0.5500 ठीक है, और वहां पे डिफेंसेस इख्तियार करने का और उसके साथ साथ आसपास का जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है उस पे भी। कैप्टन हनीफ जो थे वेरी यंग ऑफिसर, वो आर्मी सप्लाई कोर के थे और उस समय जो है 11 राजीव के साथ अटैचमेंट पे थे।
2: अच्छा।
3: जो सप्लाई ऑफिसर्स होते हैं सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं वो अटैचमेंट करते हैं 20 बटालियंस के साथ ताकि उनको एक एक्सपीरियंस रहेगा पूरा। ये जो यंग ऑफिसर था ही वॉज लीडिंग ए पेट्रोल टू कैप्चर एनिमी पोजिशन। तो उस दौरान ये जो है जब पहुंचे थे दुश्मन के लोकेशन के पास तो इनके ऊपर काफी इंटेंस फायरिंग हुई और जो हनीफ साहब थे कि अगेन जैसे यंगस्टर्स के बारे में अभी तक हमने जिक्र किया है सेम काइंड ऑफ क्वालिटीज, फियरलेस, आउटस्टैंडिंग लीडरशिप, आगे से मोटिवेटेड फ्रंट से लीड कर रहे हैं एंड ही एंगेज द एनिमी ठीक है एंड इन स्पाइट ऑफ हैवी अपोजिशन मतलब जो है क्योंकि दुश्मन ऊपर से फायर और ये फिर भी जो है एक फुटहोल्ड बनाने में सफल रहे थे।
2: अच्छा।
3: और इस दौरान जो है उनको काफी गोलियां लगी थी जिसमें बहुत घायल हो गए थे बुरी तरह से। घायल होने के बाद बावजूद जो है वो लड़ते रहे एंड तब तक की जब तक की उनमें जान थी। अगेन ही मेड ए सुप्रीम सैक्रीफाइस फॉर द कंट्री और उनके कारण जो है ये फुटहोल्ड एस्टैब्लिश हुआ जिससे कि 11 राजीव जो है आगे चल के चोटी पे कब्जा करने में कामयाब हुई थी। तो उनके ऑनर में ये जो है सेक्टर को हम सब सेक्टर हनीफ के नाम से जानते हैं। जो है आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं पर्सनली गया हूँ इस सेक्टर में।
2: अच्छा, अच्छा।
3: जब मैं सियाचिन में था उस समय जो है मुझे मौका मिला था यहाँ जाने का एंड बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है जिसमें हमारी पोस्ट नीचे दिखती है उनकी पोस्ट ऊपर दिखती है। इट वॉज वेरी वेरी मतलब सरप्राइजिंग टू इवन इमेजिन कि वो उस समय मतलब कितना हौसला और कितना जज्बा था इनमें जवानों में और उनको लीड करने वाले अफसरों में जो ऐसे हालात में भी लड़े थे और बिल्कुल डटे रहे थे एंड इन हिज ऑनर दिस सेक्टर इज नोन एज सब सेक्टर हनीफ।
2: सर इनके इस बलिदान के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
3: बिल्कुल, उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था
2: जी।
3: इस युद्ध में और भी बहुत सारे वीर सैनिक और ऑफिसर थे जिन्हें कि ये सम्मान जो है हासिल हुए थे। हम चाहेंगे कि उसका जिक्र हम आगे करें।
2: जी बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, ये युद्ध ऐसे नौजवानों की गौरव गाथा है जिन्होंने सीमा पर अपनी बहादुरी, दिलेरी और अपने बलिदान से एक मिसाल कायम की। इस युद्ध में जिन नौजवानों ने अपना बलिदान दिया है उनमें से ज्यादातर ने अपनी उम्र के 30 बसंत भी नहीं देखे थे। श्रोताओं, कारगिल की लड़ाई 22 से 24 साल के कुछ असाधारण नौजवान अफसर और सिपाहियों की जबरदस्त हिम्मत की लड़ाई है जिन्होंने अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। चाहे उनका जिक्र हो या ना हो, वो हमेशा हमारे हीरो रहेंगे और ये देश सदा उनका ऋणी रहेगा। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं संपन्न करते हैं। सर, आप यहाँ आए और अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू पूर्वा जी। जय हिंद, जय हिंद श्रोताओं।
2: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। श्रोताओं, मैं थी आपके साथ आपके रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो दीजिए अनुमति अब इस कार्यक्रम से। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार अजीमुल्लाह खान

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL आत्मनिर्भर भारत की मिसाइल शक्ति के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: दादू दादू दादू कहाँ हो आप?
2: दादाजी, हमारे कॉलेज में रक्षा प्रौद्योगिकी पर विशेष व्याख्यान हुआ था।
3: अरे अरे अरे बेटा, एक मिनट पहले आराम से बैठ जाओ।
2: दादू सुनो तो, वहाँ पर मैंने भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL का नाम सुना था और सर कह रहे थे कि ये संस्था भारत की सुरक्षा का एक मजबूत आधार है। दादू, क्या आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएंगे ना?
3: हाँ हाँ जरूर बेटा, आज मैं तुम्हें इसी संस्था की कहानी सुनाऊंगा।
2: ओके दादाजी।
3: हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो आराम से। देखो बेटा, इसने भारत को मिसाइल निर्माण में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: अच्छा दादाजी, यानी आज की कहानी वैज्ञानिकों, मिसाइलों और देशभक्ति की होगी?
3: हाँ बेटा, और साथ ही ये कहानी तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स के सपनों और भविष्य से भी जुड़ी हुई है।
2: तो फिर दादाजी, सबसे पहले ये बताइए कि BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी?
3: भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना 16 जुलाई 1970 को की गई थी। उस समय भारत ये समझ चुका था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए केवल विदेशी हथियारों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अधीन एक ऐसे संस्थान की स्थापना की जो देश में ही आधुनिक मिसाइलों और रक्षा प्रणालियों का निर्माण कर सके।
2: दादाजी, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे हमने पिछली बार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के बारे में जाना था। वो भी देश की रक्षा यानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई थी, है ना? तो क्या भारत डायनामिक्स लिमिटेड उससे अलग है?
3: बहुत बढ़िया, लगता है तुम्हें हमारी पिछली चर्चा अच्छी तरह से याद है बिटिया।
2: वो तो है दादाजी।
3: वास्तव में BEL और BDL दोनों ही भारत की रक्षा शक्ति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां BEL मुख्य रूप से रडार, संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण करती है, वहीं BDL का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार की मिसाइलों, टॉर्पिडो और हथियार प्रणालियों का निर्माण करना होता है बेटा।
2: तो दादाजी, BDL का मुख्यालय कहाँ पर है?
3: ये बेटा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। और मजे की बात ये है कि ये आज भारत की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में से एक माना जाता है।
2: हैदराबाद? ये तो वही शहर है दादू जहाँ पहले से कई वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान भी हैं।
3: हाँ बेटा, सब कुछ याद है तुमको। हैदराबाद को भारत की रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है बिटिया। यहाँ DRDO की कई प्रयोगशालाएं, रक्षा अनुसंधान केंद्र और अत्याधुनिक औद्योगिक इकाइयां स्थित है। इसी कारण BDL के विकास में भी इस शहर की विशेष भूमिका है।
2: लेकिन दादा,

0: ना कर दे तब
1: तब तो दादू परेशानी और बढ़ जाएगी ना।
0: हाँ बेटा, यही स्थिति किसी देश की सुरक्षा की भी हो सकती है। अगर कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर रहे तो संकट के समय उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। युद्ध या आपातकाल के समय हथियारों, मिसाइलों और रक्षा उपकरणों की आवश्यकता अचानक बढ़ जाती है बेटा। अब ऐसे समय में यदि विदेशी आपूर्ति रुक जाए तो देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है कि नहीं?
1: यानी अपनी मिसाइलें खुद बनाना सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है दादाजी।
0: हाँ मेरी प्यारी बिटिया, यही सोचकर भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया और आज आत्मनिर्भरता की दिशा में BDL की स्थापना भारत का एक अहम और बड़ा कदम है। तुम जानती हो जब BDL की स्थापना हुई तब उसका उद्देश्य केवल मिसाइल बनाना नहीं था बेटा, इसके पीछे एक बड़ा राष्ट्रीय सपना था।
1: कैसा सपना दादाजी?
0: यही कि भारत की अपनी रक्षा तकनीक स्वयं विकसित हो, भारतीय वैज्ञानिकों को अपनी काबिलियत साबित करने का अवसर मिले, विदेशी निर्भरता कम हो, देश की सुरक्षा और मजबूत बने। इसके अलावा सबसे जरूरी कि युवाओं के लिए नए नए रोजगार और अनुसंधान के अवसर भी पैदा हो।
1: तो दादाजी BDL केवल एक संस्थान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने का एक जरूरी हिस्सा है।
0: बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने।
1: दादाजी क्या 1970 के उस समय भारत के पास मिसाइलें बनाने का अनुभव था?
0: मेरे ख्याल से बेटा बहुत नहीं था, बहुत कम अनुभव था। लेकिन भारत के पास प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे DRDO और BDL ने मिलकर ऐसी तकनीकें विकसित की जिनकी बदौलत आज हमारा भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल है, जो आधुनिक मिसाइल प्रणालियां खुद विकसित और निर्मित कर रहा है।
1: यानी आज जिन मिसाइलों पर हम गर्व करते हैं ना दादाजी, उनके पीछे सालों की मेहनत और कई सारे वैज्ञानिकों का समर्पण छिपा है।
0: बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, और यही बात हमें प्रेरित करती है कि अगर लगन, ज्ञान और राष्ट्र सेवा का भाव हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।
1: दादाजी अब मैं जान गई हूँ कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं थी बल्कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था। दादू
0: हाँ
1: अब ये बताइए ना कि BDL किन किन आधुनिक मिसाइलों का निर्माण करता है और उनमें कौन सी अद्भुत तकनीकें काम करती हैं?
0: लगता है तुम्हारे अंदर भी एक वैज्ञानिक जाग रहा है।
1: हाँ दादू।
0: अच्छी बात है, अब हम भारत की मिसाइल शक्ति की दुनिया में चलते हैं। लेकिन पहले एक बात समझ लो, मिसाइल कोई आम हथियार नहीं है, ये विज्ञान, गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम है।
1: दादू दादू दादू थोड़ा आसान तरीके से समझाइए ना, रुचि को समझ में नहीं आया।
0: अच्छा बेटा ठीक है, देखो इसका मतलब ये है कि तुम जैसे जो विद्यार्थी विज्ञान और तकनीक में रुचि रख रहे हैं उनके लिए ये क्षेत्र बहुत रोमांचक है।
1: अब समझी। तो अब बताइए कि हम सबसे पहले किस मिसाइल के बारे में जानने वाले हैं?
0: सबसे पहले सुनो बेटा आकाश मिसाइल के बारे में। कल्पना करो कि कोई दुश्मन विमान या हेलीकॉप्टर हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करे, ऐसे समय में उसे रोकने का काम करती है आकाश मिसाइल। ये एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
1: यानी यह जमीन से छोड़ी जाती है और आसमान में उड़ते लक्ष्य को नष्ट करती है। दादू ये तो किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा है।
0: बिल्कुल सही बेटा, आकाश मिसाइल में अत्याधुनिक रडार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण प्रणाली लगी होती है। ये लक्ष्य की गति, दिशा और ऊंचाई का लगातार विश्लेषण करती रहती है।
1: यानी ये केवल ताकतवर नहीं है बल्कि मेरे जैसी बुद्धिमान भी है।
0: बिल्कुल भाई, हमारी प्यारी रानी बिटिया तो बुद्धिमान है ही।
1: वो तो है।
0: हाँ बेटा देखो, आधुनिक युद्धों में केवल शक्ति नहीं बल्कि सटीकता और बुद्धिमत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
1: दादू मैंने अस्त्र मिसाइल का नाम भी सुन रखा है।
0: हाँ हाँ बेटा, अस्त्र भारत की अत्याधुनिक हवा से हवा में ही मार करने वाली मिसाइल है। इसे लड़ाकू विमानों से छोड़ा जाता है बेटा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ऐसे

0: लक्ष्य को भी नष्ट कर सकती है जो पायलट की आंखों से दिखाई नहीं देता।
1: अच्छा
0: हाँ।
1: लेकिन जब लक्ष्य दिखाई ही नहीं देता तब मिसाइलों से खोजती कैसे होगी?
0: यही तो इसकी अद्भुत तकनीक है। अस्त्र में अत्याधुनिक सेंसर, रडार और मार्गदर्शन प्रणाली होती है बेटा। ये दुश्मन के विमान से आने वाले संकेतों को पहचान लेती है और उसी के आधार पर लक्ष्य तक पहुंचती है।
1: वाह, जैसे कोई बाज दूर बैठे शिकार को पहचान लेता है।
0: बिल्कुल वैसा ही।
1: अच्छा दादू, और ये नाग मिसाइल क्या है?
0: नाग मिसाइल को विशेष रूप से दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है बेटा। तुमने टैंक देखे हैं?
1: टैंक गणतंत्र दिवस की परेड में देखे थे दादाजी मैंने।
0: हाँ हाँ।
1: पर ये तो बहुत मजबूत और भारी होते हैं।
0: हाँ बेटा, आधुनिक टैंकों पर मोटी बख्तर बंद परत होती है, लेकिन नाग मिसाइल उन्हें भी भेद सकती है। इसे फायर एंड फॉरगेट तकनीक से बनाया गया है बेटा।
1: फायर एंड फॉरगेट तकनीक?
0: हाँ।
1: दादू ये किस तरह की तकनीक है?
0: इसका मतलब है कि बेटा एक बार लक्ष्य निर्धारित करके मिसाइल छोड़ दी जाए तो वो स्वयं लक्ष्य का पीछा करती है, उसे बार बार नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती।
1: दादू ये तो बड़ी कमाल की मिसाइल है। अच्छा, और ये हेलेना मिसाइल का नाम तो बहुत आधुनिक सा लगता है।
0: क्योंकि ये वास्तव में बहुत आधुनिक है बेटा।
1: अच्छा,
0: हेलेना को हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। ये दूर स्थित टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने में बहुत सक्षम है बिटिया। युद्ध के समय हेलीकॉप्टर ऊंचाई से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ऐसे में हेलिना जैसी मिसाइलें सेना को बड़ी जीत दिला देती हैं।
1: आकाश आसमान में काम करती है, नाग जमीन पर काम करती है और हेलिना हेलीकॉप्टर से काम करती है। लेकिन दादू समुद्र में क्या होता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, शाबाश। देखो बेटा, समुद्र की सुरक्षा के लिए टॉर्पीडो का उपयोग किया जाता है। टॉर्पीडो पानी के भीतर चलने वाला एक विशेष हथियार होता है। इसका उपयोग दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्ध पोतों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। बीडीएल हल्के और भारी दोनों प्रकार के टॉर्पीडो का निर्माण करता है बेटा।
1: यानी बीडीएल धरती, आकाश और समुद्र तीनों मोर्चों पर देश की सुरक्षा में अपना योगदान देता है।
0: एकदम सही बेटा, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।
1: दादू कभी कभी तो मुझे लगता है कि मिसाइलें सोच भी सकती है।
0: एक तरह से तुम सही कह रही हो बेटा।
1: अच्छा।
0: हाँ हाँ, आज की आधुनिक मिसाइलों में लगे कंप्यूटर प्रति सेकंड हजारों गणनाएं करते हैं। वे ये तय करते हैं कि लक्ष्य कहाँ है, उसकी गति कितनी है, दिशा क्या है, उसे पकड़ने के लिए किस मार्ग से जाना चाहिए। इसीलिए आधुनिक मिसाइलें अत्यंत सटीक होती जा रही है बेटा।
1: तो दादाजी क्या एक मिसाइल बनाने में केवल इंजीनियर ही काम करते हैं?
0: नहीं नहीं बेटा, इसके पीछे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की पूरी टीम काम करती है। सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, भौतिक वैज्ञानिक, गणित कंप्यूटर, इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ, एरोस्पेस इंजीनियर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ, रोबोटिक्स इंजीनियर, यानी विज्ञान की अनेक शाखाएं मिलकर एक आधुनिक मिसाइल का निर्माण करती है बेटा।
1: दादू ये तो कमाल है भाई, मुझे तो ये जानकर बहुत अचंभा हो रहा है। मैं तो सोचती थी कि मिसाइल बनाने का काम केवल कुछ इंजीनियर ही करते होंगे, लेकिन यहाँ तो विज्ञान की इतनी सारी शाखाएं मिलकर काम करती हैं।
0: बिल्कुल बेटा, वास्तव में किसी भी बड़ी तकनीक के पीछे हजारों लोगों का परिश्रम और वर्षों का अनुसंधान छिपा हुआ होता है। एक मिसाइल केवल धातु, ईंधन और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का समूह नहीं होती, बल्कि ये देश की वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक होती है।
1: दादू क्या भारत ने हमेशा से मिसाइलें बनाई है?
0: नहीं नहीं बेटा, भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया था।
1: अच्छा।
0: जिसका नाम था एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि भारत अपनी विभिन्न प्रकार की मिसाइलें स्वयं विकसित करे, और ऐसा हुआ भी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियां विकसित की गई बेटा।
1: दादू क्या मैं सही सोच रही हूँ? क्या इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी योगदान था?
0: बहुत बड़ा योगदान था बेटा। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने भारतीय मिसाइल कार्यक्रम को नई दिशा दी। उनका मानना था कि यदि भारत को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनना है तो उसे विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ना होगा।
1: दादाजी, मैंने उनके बारे में पढ़ा था। डॉक्टर कलाम बहुत ही साधारण सा जीवन जीते थे।
0: हाँ बेटा, वे केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि महान शिक्षक भी थे। वे हमेशा विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते रहते थे।
1: सही कहा दादाजी आपने। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या ये कारखाने सामान्य फैक्ट्रियों जैसे होते हैं?
0: नहीं नहीं बेटा, रक्षा उत्पादन इकाइयां अत्यंत आधुनिक और सुरक्षित होती हैं। यहाँ हर प्रक्रिया का कड़ा परीक्षण किया जाता है। कई स्थानों पर रोबोट भी कार्य करते हैं। कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें अत्यधिक सटीकता के साथ पुर्जों का निर्माण करती है।
1: रोबोट? सचमुच?
0: हाँ हाँ, आज BDL अपने कई उत्पादन कार्यों में रोबोटिक्स का उपयोग कर रहा है बेटा। कुछ ऐसे कार्य जिनमें अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है, उन्हें रोबोटिक अधिक कुशलता से कर सकते हैं। इससे गुणवत्ता भी बढ़ती है और समय की बचत भी होती है।
1: अच्छा दादू, मैंने हाल ही में इंडस्ट्री 4.0 शब्द सुना था। क्या इसका भी BDL से कोई संबंध है?
0: बिल्कुल, इंडस्ट्री 4.0 का मतलब है आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन प्रणाली को अधिक बुद्धिमान बनाना। और इसमें शामिल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा विश्लेषण, स्मार्ट मशीनें, स्वचालित उत्पादन। BDL भी इन आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपने उत्पादन को और अधिक उन्नत बनाता जा रहा है बेटा।
1: दादू, आजकल AI की भी तो बहुत चर्चा होती है ना? क्या रक्षा क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है?
0: हाँ बेटा, दुनिया के अनेक देश अब AI आधारित रक्षा प्रणालियां विकसित कर रहे हैं। AI की सहायता से लक्ष्य पहचानना आसान होता है, निर्णय लेने की गति बढ़ती है, सुरक्षा प्रणाली अधिक सक्षम बनती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। और इसी दिशा में BDL भी विभिन्न संस्थानों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम कर रहा है।
1: अच्छा दादाजी, क्या युवा भी इसमें योगदान दे सकते हैं?
0: क्यों नहीं, आज भारत में अनेक युवा स्टार्टअप चला रहे हैं। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं भी शुरू की हैं बेटा। युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता नई तकनीकों पर लगातार कार्य कर रहे हैं।
1: दादू, आपने पहले IDEX का नाम लिया था।
0: हाँ हाँ, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, IDEX। ये एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य है कि युवा नव प्रवर्तक और स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र के लिए नई तकनीकें विकसित करें। BDL भी इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेता है बेटा।
1: दादू, फिर भी किसी एक देश के लिए सब कुछ बना ले। ना तो बहुत मुश्किल लगता है। तो क्या आज भी कुछ उपकरण विदेशों से आयात किए जाते हैं?
0: हाँ, एकदम सही कहा बेटा तुमने। कुछ विशेष तकनीकें अभी भी आयात की जाती हैं, लेकिन भारत तेजी से देशीकरण की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। BDL लगातार ऐसे पुर्जों और तकनीकों को भारत में विकसित करने का प्रयास कर रहा है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें।
1: और इसके फायदे क्या क्या होंगे?
0: लाभ ही लाभ है बेटा। विदेशी मुद्रा की बचत, रोजगार में वृद्धि, तकनीकी ज्ञान का विकास, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा में मजबूती और निर्यात की नई नई संभावनाएं।
1: तो क्या भारत अपने रक्षा उत्पाद दूसरे देशों को भी बेचता है?
0: हाँ बेटा, आज भारत केवल आयातक नहीं है, निर्यातक भी बन रहा है। भारतीय रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है। इससे अनेक देशों की रुचि भारतीय प्रणालियों में लगातार बढ़ती जा रही है बेटा। रुचि बिटिया, अब तुम भला किस सोच में पड़ गई?
1: दादू, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास जो अगला सवाल है ना, वो तो बच्चों वाला है।
0: अच्छा,
1: पर पूछ लेती हूँ कि क्या वैज्ञानिक जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं?
0: नहीं नहीं बेटा, अधिकांश वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है जिज्ञासा, अनुशासन, निरंतर सीखने की आदत और असफलताओं से कभी ना घबराना, समझी?
1: समझ गई। अच्छा ये बताइए,
0: हाँ
1: कि आने वाले भविष्य की मिसाइलें कैसी होंगी?
0: बहुत रोचक सवाल है। भविष्य में हम देख सकते हैं अधिक बुद्धिमान प्रणालियां, AI आधारित निर्णय क्षमता, अत्यधिक सटीक लक्ष्य भेदन, तेज प्रतिक्रिया प्रणाली, मानव रहित युद्ध प्रणालियां, उन्नत सेंसर तकनीक।
1: और संभव है कि इसमें भी कुछ तकनीकों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों में आज के विद्यार्थी भी शामिल होंगे भविष्य में।
0: बिल्कुल ऐसा हो सकता है बिटिया। याद रखो, हर बड़ा आविष्कार एक छोटे प्रश्न से शुरू होता है। हर वैज्ञानिक कभी ना कभी एक जिज्ञासु विद्यार्थी था, और हर महान उपलब्धि के पीछे सीखने की निरंतर इच्छा होती है।
1: दादू, आज मुझे समझ में आ गया कि विज्ञान केवल पाठ्य पुस्तकों का विषय नहीं है, ये देश की सुरक्षा, प्रगति और भविष्य से जुड़ा हुआ है।
0: और यही कारण है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाएं केवल मिसाइलें नहीं बनाती, बल्कि राष्ट्र के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक सोच को भी मजबूत करती हैं।
1: सच कहूं दादू, अब तो मुझे विज्ञान और भी रोचक लगने लगा है।
0: और यही इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात है बिटिया। जब तुम गणित का कोई प्रश्न हल करती हो, विज्ञान का कोई सिद्धांत समझती हो, या कंप्यूटर पर कोई नया प्रयोग करती हो, तब तुम भी उसी ज्ञान की दुनिया में कदम रख रही होती हो जहां से भविष्य के वैज्ञानिक और इंजीनियर निकलते हैं। कौन जाने, आने वाले वर्षों में भारत की किसी नई मिसाइल, नई रक्षा उपकरण और नई तकनीक के पीछे तुम्हारा भी योगदान हो।
1: ओ दादू, आपका बस चले ना, तो आप तो मुझे आज के आज ही वैज्ञानिक बना दे। लेकिन कम से कम आज मैंने ये तो जाना कि आत्मनिर्भर कैसे बना जा सकता है।
0: बिल्कुल बेटा, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाएं हमें यही तो सिखाती हैं कि ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के बल पर कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बन सकता है।
1: दादाजी, थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे इतना कुछ बताया।
0: अरे बाप रे, तुम्हारी बातों के चक्कर में मेरी चाय का जाने क्या हाल हुआ होगा। चलो चलो चलो चलो, जल्दी से घर चलो बेटा।
1: चलिए चलिए, आपकी चाय पीने का समय हो गया है।
0: हाँ बेटा।
2: श्रोताओं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की मिसाइलें केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों के परिश्रम, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा की भावना का प्रतीक है। अगले भाग में हम जानेंगे किसी और तकनीक के बारे में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाले संस्थान के बारे में। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र भगवती सक्सेना
0: और दीपक नेमा
2: को दीजिए आज्ञा।
0: नमस्कार।
2: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित गुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

0: बांदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के तटवर्ती नगर रत्नागिरी में हुआ था। सन 1857 के विप्लव के बाद हताश भारत को एक ऐसे नायक की जरूरत थी जो लोकमान्य हो, और तिलक परतंत्र भारत के पहले महान लोकनायक बन गए। तिलक के कार्यों के फलक की विशालता उनके व्यक्तित्व को अनायास ही विराट बना देती है। वे यदि प्रखर चिंतक थे तो ओजस्वी वक्ता भी। वे विचारवंत लेखक भी थे और दार्शनिक भी। वे समाज सेवी भी थे और समाज सुधारक भी। वे शिक्षा शास्त्री थे और पत्रकार भी, और उनका मूल मंत्र था किसी भी कीमत पर आजादी। वे ऐसे कर्मयोगी थे जिसने अपनी वाणी और कलम से एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। बापू के शब्दों में कहें तो तिलक का एक एक शब्द लोगों के लिए कानून था। उन्होंने जनजागरण के लिए शिक्षा के प्रसार को जरूरी बताया। उनकी नजर में व्यक्ति के विकास के माने बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी था। जनजागृति की अपार व्यग्रता ने उन्हें पत्रकार बना दिया। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन करके वे भारतीयों के सशक्त प्रवक्ता बन गए। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सूरत अधिवेशन के बाद उन्हें 6 साल के निर्वासन का दंड देकर मांडले जेल भेज दिया गया। मांडले जेल में साहित्य की अनमोल धरोहर गीता रहस्य अपने रचनाकार का इंतजार कर रही थी। जीते जी तिलक का स्वराज का सपना भले ही सजना हुआ हो, लेकिन वे एक ऐसी मशाल जला गए जिसने हमेशा के लिए आजादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
3: हाँ भाई, ये आ गया काका का ढाबा।
4: हाँ, पर तुम्हारा दोस्त तो शायद अब तक यहाँ नहीं पहुँचा।
3: आता ही होगा रमेश भाई, काका की चाय पिए बगैर हम लोगों को चैन कहाँ पड़ता है। लो, वो आ गया।
4: क्या बात है भाई, किस बात पर हंस रहे हो?
3: बस यूं ही, वो कहते हैं ना, आने वाले का स्वागत हंसते मुस्कुराते करना चाहिए।
4: शुक्रिया शुक्रिया। और रमेश भाई, लगता है आपको हमारा शहर रास आ गया।
5: वो तो है भाई, पर जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए सोचा कि एक बार और काका की चाय और कहानी का लुत्फ ले लिया जाए। क्यों नवीन भाई?
6: हाँ भाई, क्यों नहीं। आपकी पहली फरमाइश तो अभी पूरी किए देता हूँ। अरे छोटू बेटा, 4 चाय लाना जरा।
5: और दूसरी?
6: अब भाई, दूसरी फरमाइश पूरी करने के लिए तो सोचना पड़ेगा, अब कुछ सूझ ही नहीं रहा किसके बारे में बताऊं। हाँ भाई छोटू, ला चाय दे सबको, लीजिए चाय।
3: यार छोटू, ये बता, तेरा कद तो अच्छा खासा है, फिर ये नाम छोटू कैसे पड़ा?
6: अरे भाई मैं बताता हूँ, असल में ये अपने सब भाई बहनों में सबसे छोटा है।
4: अच्छा अच्छा, मतलब परिवार में सबसे छोटा है इसलिए ये नाम पड़ा।
6: हाँ, लो, इसी बात पे मुझे रमेश की दूसरी फरमाइश पूरी करने का भी मौका मिल गया। असल में देश के ओजस्वी पुरुष लोकमान्य गंगाधर तिलक को यदि बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है तो उसके पीछे भी यही कारण है।
5: अरे वाह, मतलब तिलक जी भी भाई बहनों में सबसे छोटे थे?
6: हाँ, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखल गांव के तिलक परिवार में जन्मे गंगाधर जी को घर में बाल और केशव कहकर बुलाया जाता था। घर में शिक्षण अध्यापन का माहौल होने के कारण उन्हें स्कूल जाने के पहले ही संस्कृत और गणित में महारत हासिल हो गई थी।
7: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्।
8: बाल
7: जी, पिताजी
8: देखो, अब तुम्हें गणित और संस्कृत का ठीक ज्ञान हो गया है, मेरी दृष्टि से अब तुम पाठशाला में पढ़ने के लिए तैयार हो, इसलिए तुम कल से पाठशाला जाओगे। जाओगे ना?
7: जी पिताजी।
9: बच्चों, आज हम सुभाषित श्लोकों का अभ्यास करेंगे।
0: माधव तुम एक श्लोक सुनाओ।
9: गुरुर ब्रह्मा गुरुर
0: एक श्लोक भी ठीक से याद नहीं है। ठीक ठीक ठीक चलो चलो बैठ जाओ। अब कौन सुनाएगा?
7: मैं सुनाऊं मास्टर जी।
0: बाल तुम बेटा तुम्हारा प्रवेश तो अभी हुआ है, क्या तुम्हें श्लोक आते हैं?
7: जी।
0: अच्छा तो फिर सुनाओ।
7: लेकिन कौन सा?
0: अब कोई भी सुनाओ जो याद हो।
7: लेकिन मुझे तो पूरी पुस्तक याद है।
0: हैं? चुप चुप चुप सब चुप हो जाओ। हाँ बेटा बाल तुम श्लोक सुनाओ।
7: गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
10: मेरे ऊपर क्यों फेंकता है? अरे कैसा है मत फैलाओ। अरे
0: ये क्या कक्षा में किसने कूड़ा फैलाया है? कहते क्यों नहीं किसने फेंके ये छिलके? बताते हो या लगाओ सबको दो दो? अच्छा तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, सब हाथ आगे करो। कक्षा में मूंगफली खाओगे ये लो। तुम हाँ हाँ तुम इधर आओ ये लो। अब तुम इधर आओ ये लो। अब बाल तुम आओ अपना हाथ आगे करो।
7: नहीं मैंने मूंगफली नहीं खाई इसलिए मैं बेत की मार भी नहीं खाऊंगा।
0: अच्छा तो फिर सच सच बताओ किसने मूंगफली खाई थी?
7: नहीं।
0: क्या?
7: मैं किसी का नाम भी नहीं बताऊंगा और बेत की मार भी नहीं खाऊंगा।
0: ये हिम्मत, निकल जाओ कक्षा से।
8: बाल मैंने जो सुना वो ठीक है?
7: जी पिताजी।
8: लेकिन क्यों?
7: क्योंकि मैंने जो अपराध किया ही नहीं था उसका दंड मैं क्यों भोगूं? और फिर अपने साथियों के साथ मैं गद्दारी भी नहीं करना चाहता था। पिताजी मैं बड़े होकर अंग्रेजों की बात भी नहीं मानूंगा, उनकी गलत बातों का भी विरोध करूंगा।
5: वाह इतनी सी उम्र में सच के लिए इतना साहस।
6: हाँ तिलक जी के विचारों में यह दृढ़ता उम्र और हालात के चलते और भी दृढ़ होती गई। बचपन से ही उन्हें माँ के गुजर जाने का दुख सहन करना पड़ा और फिर जब थोड़े बड़े हुए तो परंपरा अनुसार 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया। तिलक जी जब कॉलेज में गए तो अक्सर अपने दुबले पतले शरीर और पत्नी सत्यभामा के चलते हंसी का पात्र बन जाते थे।
11: भाई बाल तुम बड़े तो हो गए पर रहे वही बाल गोपाल।
4: हाँ देखो ना कहाँ बाल का बाल जैसा शरीर और कहाँ हमारी भाभी सत्यभामा।
11: सत्य वचन सत्य वचन।
6: अब देखना तुम लोग ये बाल अपने शरीर को कैसे ढाल बनाता है।
8: एक सौ दो 103 ये 115।
11: अरे बाल ये तो तुम्हारा कायाकल्प ही हो गया। ये सब ये चौड़ा सीना ये भरी हुई भुजाएं, वाह मित्र तुमने तो कमाल ही कर दिया। कोई निश्चय करना तो तुमसे सीखे, सच में तुम तो बिल्कुल मिस्टर ब्लंट हो।
8: कौन?
4: बाल एक बुरी खबर है मित्र।
8: क्या हुआ?
4: तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया।

0: मित्र, मुझे दुख हुआ सुनकर कि यदि मैं तुम्हारे कोई काम आ सकूं तो कहने में संकोच न करना। अगर कर, जो नियति में था वो हुआ। वैसे नियति में तो ये भी लिखा है कि यहाँ पुणे के डेक्कन कॉलेज में तुम्हारे जैसे मित्र मिलेंगे, तभी तो यहाँ चला आया। खैर बता, आगे क्या करना चाहते हो?
1: तिलक, मैं तो यहीं से LLB करना चाहता हूँ।
0: अरे वाह, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोच रखा है। लेकिन हाँ, वकालत करने के बाद देश को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित हूँ।
1: अरे वाह, अब जब तुमने ये सोच रखा है मिस्टर ब्लंट, तो तुम इस काम को पूरा करके ही रहोगे, और इस काम में भी मैं तुम्हारी मदद के लिए पूरी तरह तैयार हूँ।

0: मित्र, हमारी वकालत की पढ़ाई तो यहाँ समाप्त हुई और अब हमें जल्द से जल्द अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए।
1: तो कोई योजना है या यूं ही हमें बस रास्ते ढूंढते चलना है?
0: योजना भी है और उसके क्रियान्वयन का मार्ग भी।
1: वो क्या?
0: देखो, हमें यदि अंग्रेजों की नीतियों से आम जनता को अवगत कराना है तो हमें समाज का शिक्षा स्तर बढ़ाना ही होगा और इसके लिए हमें सरकारी नौकरी ना करके एक स्कूल की स्थापना करनी होगी।
1: स्कूल की?
0: हाँ मित्र, ये एक अंग्रेजी का स्कूल होगा जिसका नाम हम रखेंगे न्यू इंग्लिश स्कूल। अपने नाम के मुताबिक हमारे स्कूल के विद्यार्थी न केवल नई पद्धति से बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगे बल्कि उसका इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भी कर सकेंगे।
1: वाह, बहुत खूब मित्र। लेकिन हमें इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के बड़े बड़े शिक्षाविद और कुछ अध्यापकों की आवश्यकता भी होगी।
0: ठीक कहते हो, लेकिन इतना समर्पित शिक्षाविद हमें मिलेगा कहाँ?
1: दरअसल मैं महान शिक्षाविद श्री विष्णु शास्त्री चिपलूणकर को जानता हूँ। उन्होंने हाल ही में सरकारी नौकरी भी तज दी है।
0: अरे वाह, तो भाई देर किस बात की, चलिए।

0: तो क्या नवीन भाई, चिपलूणकर जी उनकी मदद को तैयार हो गए?
1: हाँ हाँ बिल्कुल। तिलक जी और चिपलूणकर जी दोनों ही एक दूसरे के विचारों से प्रभावित हुए बिना रह ना सके, और अब तो महादेव जोशी और शिवराम आपटे जैसे शिक्षकों के साथ ही स्कूल का शुभारंभ भी हो गया।

0: और अब श्री बाल गंगाधर तिलक हम सभी को संबोधित करेंगे।
1: आज हमारा देश गुलाम है, अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं और हम उसे चुपचाप सहन कर रहे हैं। यह हमारी कायरता है। आज हमें देश की दुर्दशा

0: बधाई हो मित्र, हम सबकी और खास तौर पर आपकी मेहनत रंग लाई।
1: और मैट्रिक की परीक्षा परिणाम में तो हम औरों से बहुत आगे हैं।
2: तो आप तक ये खबर पहुंच ही गई?
1: हाँ अगर कर, लेकिन शिक्षा के साथ हमें सदैव दूसरे संदेशों को समाज में पहुंचाना होगा।
2: बिल्कुल ठीक, तो क्यों ना इस खुशी के मौके का ही लाभ लिया जाए।
1: ये भी ठीक है, चलिए
2: चलिए।

नमस्कार। सर्वप्रथम तो विद्यालय की सफलता के लिए श्री चिपलूणकर जी का, आगरकर जी का, समस्त शिक्षक गण एवं छात्रों को बहुत बहुत बधाई। इस खुशी के मौके पर मैं आप सभी को कुछ सामाजिक कर्तव्यों की याद दिलाना चाहता हूं। आप सब जानते ही हैं कि इस समय देश का क्या हाल है। एक तो अंग्रेजों का राज और ऊपर से हमारी पुरातन कुरीतियां, हमें बाल विवाह, छुआछूत, अशिक्षा, विधवा शोषण जैसी कुरीतियों के खिलाफ लगाम कसनी होगी। जब तक हम स्वयं इन बुराइयों की गुलामी में जकड़े रहेंगे, तब तक अंग्रेजी शासन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इन सामाजिक बुराइयों से समाज को छुटकारा दिलाने के लिए आप सबको हमारी आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना होगा। हमारे स्कूल का मूल उद्देश्य है देश की स्वतंत्रता, जिसे हम सामाजिक सुधार के साथ पाकर रहेंगे।

0: वाह, सचमुच तिलक जी कितने महान उद्देश्य को लेकर चल रहे थे।
1: हाँ, उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन स्कूल के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब स्कूल कार्यकारिणी और तिलक के बीच मतभेद हो गए।
0: वो कैसे?
1: दरअसल तिलक जी तब राजनीतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने लगे थे, और ये बात न्यू इंग्लिश स्कूल के कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों को नागवार गुजरी। इस मसले पर जब सदस्यों के दो समूह बन गए तो तिलक जी ने स्कूल सोसाइटी से इस्तीफा देना ही ठीक समझा।
2: तिलक जी, अब आगे आपकी क्या योजना है?
3: भाई, मैंने सिर्फ स्कूल से त्याग पत्र दिया है, अपने उद्देश्यों को नहीं तजा है।
2: मतलब?
3: मतलब ये कि अब शिक्षा के विस्तार का सबसे व्यापक तरीका अपनाऊंगा।
2: कौन सा तरीका?
3: पत्रकारिता। मैं अब समाचार पत्रों के जरिए शिक्षा का प्रचार करूंगा।
2: लेकिन इसमें तो बहुत खर्च है, आप ये सब कैसे करेंगे?
3: हौसला हो तो सब संभव है मित्र। मैं दफ्तर के नाम पर टूटी फूटी कुर्सी और मेज से ही काम चला लूंगा। कंधे पे टाइप के केस छापे खाने तक ले जाऊंगा और पत्र भी घर घर जाकर स्वयं ही बांटूंगा।
2: वाह तिलक जी, देखिएगा, एक दिन आप इस देश के ललाट की शोभा तिलक बनकर बढ़ोगे।

0: वाह, बाल गंगाधर तिलक ने तो कमाल ही कर दिया। इतने कम समय में इतना बढ़िया अंग्रेजी और मराठी पत्रों का प्रकाशन कर दिया।
1: What an excellent article in Kayseri. Beautiful.
2: वाह, क्या संपादकीय लिखी है तिलक जी ने।
3: वाह वाह वाह, तिलक जी ने कहा है, छान लेख लिया है।

0: सॉन्ग। इंग्लिश न्यूज़पेपर केसरी में बीटी सेशन के खिलाफ लिखा गया है।
1: व्हाट?
0: यस सर, लिखा है कि रियासत के शासक राजा शिवाजी राव पर अत्याचार करते हैं।
1: रबेश, पता करो हु इज द एडिटर।
0: सर, ये आर्टिकल खुद एडिटर लोकमान बार घांगड़ ठीलक ने लिखा है।
1: ओ, ठीलक पर मान हानि का मुकदमा दायर करो।

0: पेपर के एडिटर और संरक्षक को 4 महीने की सजा सुनाई जाती है।
1: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
2: जिंदाबाद जिंदाबाद।
1: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
2: जिंदाबाद जिंदाबाद।
1: तिलक जी संघर्ष करो,
2: हम तुम्हारे साथ हैं।
1: तिलक जी संघर्ष करो,
2: हम तुम्हारे साथ हैं।
1: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
2: जिंदाबाद जिंदाबाद।
1: लोकमान्य बाल

0: फिर क्या हुआ नवीन भाई?
1: अब होना क्या था दोस्त, अपनी पहली जेल यात्रा के बाद भी तिलक जी ने अपना काम जारी रखा।
2: तिलक जी, अब तो आपके लेखों का व्यापक असर हो रहा है। आपके आह्वान पर न जाने कितने लोग मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
1: संकोच पूछिए।
2: ये मराठी तो ठीक है, लेकिन आपने हिंदुस्तानियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अंग्रेजी भाषा का चुनाव क्यों किया?
1: देखिए, व्यक्तिगत तौर पे कहूं तो मुझे अंग्रेजी भाषा से गहरा लगाव है, लेकिन मैं अंग्रेजों को भारत में कतई देखना नहीं चाहता। केसरी की भाषा मैंने अंग्रेजी इसलिए चुनी ताकि उसमें लिखी सामग्री से ब्रिटिश शासन भली भांति परिचित होता रहे और हमारे अटल इरादों को अच्छी तरह जान ले।
2: वैसे राजनीतिक चेतना को लेकर तो कांग्रेस भी अच्छा काम कर रही है, आप क्या कहते हैं?
1: मेरा भी कुछ ऐसा ही विचार है, इसीलिए मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूँ और इसके अधिवेशनों के लिए मेरे पास और योजनाएं भी हैं।
3: नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में पधारे सभी कांग्रेसी जन लोकमान बाल गंगाधर तिलक से तो परिचित हैं ही। लीजिए, अब वो अपना आर्म्स एक्ट सबके सामने रखेंगे।
1: आदरणीय वरिष्ठ जन एवं साथियों, सरकार सेना में जवानों की भर्ती करना चाहती है, लेकिन वो जवानों को ढूंढने में असमर्थ है। यदि उसने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो उसे और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार रणभूमि में लड़ने वाले नौजवानों को नपुंसक बना रही है। यही कारण है कि जनता की निगाह से उसका विश्वास हटता जा रहा है, इसीलिए सरकार हमको संदेह की दृष्टि से देखती है। अतः हमने आर्म्स एक्ट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य सेना में भर्ती होने की कठिनाइयों को दूर करना होगा ताकि हमारे नौजवानों की दुर्दशा ना हो सके।
0: तो नवीन जी, क्या अधिवेशन में आर्म्स एक्ट पास हो गया?
4: हाँ बिल्कुल,
0: सचमुच तिलक जी ने तो कमाल ही कर दिया।
4: अरे, आज जो पूरे देश में और खास तौर पर महाराष्ट्र में जो सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाया जाता है ना, वो भी तिलक जी का ही कमाल है।
0: तिलक जी का?
4: हाँ, उन्होंने ही अपनी संस्कृति को हमेशा अक्षुण बनाए रखने के लिए सार्वजनिक गणपति और शिवाजी समारोह की शुरुआत की थी।
5: अच्छा नवीन भाई, उस अधिवेशन के बाद तो तिलक जी की भूमिका काफी बढ़ गई होगी।
4: हाँ, उसके बाद तो उन्होंने देश के लिए कई काम किए, जेल यात्राएं की, अकाल पीड़ितों की मदद जैसे न जाने कितने सामाजिक कार्य किए जिन्हें ना तो गिनाया जा सकता है और ना ही भूला जा सकता है। उन्होंने अपने उद्देश्यों को कभी नहीं छोड़ा। इस दौरान उन्हें 52 वर्ष की उम्र में काला पानी तक की सजा भुगतनी पड़ी। कुल मिलाकर अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए लड़े वो, और बीमारी के चलते 1 अगस्त 1920 को हमेशा हमेशा के लिए चले गए।
0: सच में नवीन जी, तिलक जी हमेशा भारत के ललाट पर तिलक की तरह चमकते रहेंगे, भारतीय संस्कृति के प्रतीक पुरुष रहेंगे, और उनकी रोशनी से हरदम रोशन रहेगा हिंदुस्तान हमारा।
4: हाँ भाई, बिल्कुल सच कहते हो तुम। ऐसे ही न जाने कितने लोग हैं जिनके बलिदानों के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं।
0: अच्छा नवीन जी, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है।
4: हाँ हाँ, भगवान आपकी यात्रा सफल करे।
5: अच्छा नवीन जी, नमस्कार।
4: नमस्कार।
0: नमस्कार।
6: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का ऐसा गुच्छा जिसकी हर पंखुड़ी में इतिहास की धड़कन बसती है, जहां शब्द दीपक बनकर जलते हैं और भावनाएं गंगा जल सी मन को पवित्र करती चली जाती हैं। यहां कविताएं केवल सुनाई नहीं जाती, वे समय के बंद कपाट खोलकर मनुष्य को उसके भीतर छिपे सत्य से मिला देती हैं।
2: श्रोताओं, पिछले अंक में आपने रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 8, 9 और 10 का काव्य पाठ सुना, जहां कर्ण की साधना उस दीपक की तरह दिखाई दी जो आंधियों के बीच भी अपनी लौ बचाए रखता है। महेंद्र पर्वत की नीरवता में बैठा वह सूर्य पुत्र अपने भाग्य से नहीं, स्वयं से युद्ध कर रहा था। गुरु परशुराम के चरणों में बैठकर वह केवल अस्त्रों का ज्ञान नहीं पा रहा था, वह अपने जीवन की टूटी हुई तकदीर को नए पुरुषार्थ से गढ़ने में लगा था। किंतु श्रोताओं, कहा भी तो गया है कि सत्य की डोरी चाहे जितनी लंबी हो, एक दिन सामने आ ही जाती है। नियति ने भी वहीं अपना दांव चला। विषधर का दंश सहकर भी कर्ण की पलकों का न हिलना उस अग्नि का प्रमाण बन गया जो साधारण मनुष्य में नहीं जलती, और उसी क्षण गुरु परशुराम के सामने वह रहस्य खुल पड़ा जिसे कर्ण अपने प्राणों की तरह छिपाए फिर रहा था।
1: श्रोताओं, विश्वास जब टूटता है तो उसकी प्रतिध्वनि पत्थरों में नहीं, हृदय में सुनाई देती है। परशुराम के भीतर भी यही तूफान उठ खड़ा हुआ। एक ओर उनका अटल व्रत, दूसरी ओर पुत्रव्रत प्रिय शिष्य के प्रति उमड़ता वात्सल्य। मानो धर्म और करुणा आमने सामने खड़े हों और दोनों ही पीछे हटने को तैयार ना हो। और कर्ण वो अपराधी की तरह नहीं, तपस्वी की भांति खड़ा है। उसके चेहरे पर भय नहीं, केवल ये पीड़ा है कि जिसने उसे अपने हृदय का स्थान दिया, उसी के विश्वास को वो अनजाने में छल बैठा। यही कारण है कि ये प्रसंग केवल शाप की कथा नहीं बनता, ये मनुष्य के भीतर चलने वाले उस महासंग्राम का स्वरूप ले लेता है, जहां प्रेम और प्रतिज्ञा दोनों अपनी अपनी कीमत मांगते हैं।
2: श्रोताओं, समय का रथ अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां शब्द अंगार बनेंगे, आंखें अश्रु से भरेंगी और नियति अपना कठोर निर्णय सुनाएगी। गुरु का क्रोध वज्र की तरह गिरेगा, किंतु उसके भीतर स्नेह की धधकती राख भी दिखाई देगी। और कर्ण, वह टूटकर भी झुकेगा नहीं, क्योंकि उसके भीतर का स्वाभिमान हिमालय की चोटी की तरह अडिग है। तो आइए अब बढ़ते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 11, 12 और 13 की ओर, जहां करुणा महाकाव्य बनती है, वियोग इतिहास रचता है और गुरु शिष्य का ये संबंध मानवता की सबसे उज्जवल गाथाओं में परिवर्तित हो जाता है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं दूसरे सर्ग के भाग 11 का काव्य पाठ और चर्चा।
1: तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या पता था लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं, लेकिन कहां उतारूं मैं।
2: इस पद पर बोला कर्ण,
3: दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी, पर साई ये अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग कर जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। दंड भोग कर जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा।
2: परशुराम ने कहा,
1: कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा, है ये मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा, उसे भूल तू जाएगा, उसे भूल तू जाएगा।
2: परशुराम आहत है, उन्हें छल से अधिक उस विश्वास के टूटने की पीड़ा है जिसे उन्होंने पुत्रवत संजोया था। और कर्ण अपराधी सा नहीं तपस्वी सा खड़ा है, दंड को दया समझकर स्वीकारने को तत्पर। श्रोताओं, वे बड़े खरे लोग थे जो अपने धर्म से तनिक भी डिगते नहीं थे, प्रेम को अपने स्वार्थ सिद्धि की ढाल नहीं बनाते थे। आज हम सभी इन मानव मूल्यों और नैतिक बल से कितनी दूर निकल चुके हैं। यही श्राप की त्रासदी है जब स्नेह को भी धर्म के आगे झुकना पड़ता है।
1: श्रोताओं, कर्ण पर शाप का वज्र गिरा, पर उसके साथ आशीर्वाद की धूप भी झर पड़ी। कर्ण व्याकुल है, उसे जीवन नहीं साधना के निष्फल हो जाने का दुख साल रहा है। और परशुराम, वे भी पत्थर नहीं है, व्रत की मर्यादा उन्हें कठोर बनाती है, पर भीतर का स्नेह बार बार आंखों तक आ जाता है। वे शस्त्र का तेज हरते हैं, पर कर्ण के पौरुष पर विश्वास भी जताते हैं, दंड देते हैं, पर भविष्य की कीर्ति का वरदान भी। यहीं भाग 12 की भूमि तैयार होती है, जहां शाप केवल क्षति नहीं चरित्र की अग्नि परीक्षा बन जाता है। गुरु और शिष्य दोनों अपने अपने धर्म के प्रति अडिग हैं, पर दोनों के हृदय भीग रहे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं द्वितीय सर्ग के भाग 12 का काव्य पाठ।
2: कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहे,
4: हाय हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारूढ़, लिया नहीं जीवन क्यों हर, वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं।
2: परशुराम ने कहा,
1: कर्ण ये शाप अटल है, सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है, रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से नवीर कोई सब दिन कहलाता है, नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओ। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहां पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच ये बहुत विकल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो, व्रत मेरा मत भंग करो, व्रत मेरा मत भंग करो।
2: यह आत्मसंयम की चरम स्थिति है। गुरु स्वयं को कठोर बना रहे हैं ताकि उनका व्रत न टूटे। यह विछोह करुण और उदात्त दोनों है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोह पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूल गुरुह कृपा। अर्थात गुरु मूर्ति का ध्यान करना ही सभी ध्यानों का मूल है। गुरु चरणों की पूजा करना ही सभी पूजाओं का मूल है। गुरु का वाक्य ही सभी मंत्रों का मूल है और गुरु की कृपा ही मोक्ष के समान है। श्रोताओं, अब यदि हम इस श्लोक की भावना को परशुराम और कर्ण के प्रसंग से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि परशुराम के भीतर केवल क्रोध नहीं था, वहां गुरु का वही विराट स्वरूप उपस्थित था। उन्होंने श्राप दिया क्योंकि व्रत और धर्म उनके लिए सर्वोपरि थे, किंतु कर्ण के प्रति उनका स्नेह कम नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तेज हर लिया पर उसकी कीर्ति का वरदान भी दिया। यह द्वंद नहीं गुरु हृदय की व्यापकता है। कर्ण एकलव्य से कम नहीं था गुरु भक्ति में। श्रोताओं, कर्ण की सबसे बड़ी पहचान उसका कवच कुंडल नहीं, उसकी गुरु भक्ति है। जब सत्य उजागर हुआ, जब श्राप मिला, तब भी उसने दृष्टि उठाकर प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि वह गुरु चरणों में झुक गया। जिसने उसे दंड दिया उसी के प्रति उसका सम्मान तनिक भी कम नहीं हुआ। यही तो शिष्यत्व की पराकाष्ठा है, जहां अहम नहीं केवल समर्पण बोलता है। यही गुरु भक्ति कर्ण को महान बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति विपत्ति में भी अपने गुरु का मान रखे वही सच्चा शिष्य कहलाने योग्य होता है।
1: आज के समय में हम देखते हैं कि कई स्थानों पर शिक्षक पात्र और कुपात्र का विवेक खो बैठते हैं। कहीं स्वार्थ, कहीं पक्षपात, कहीं निजी लाभ शिक्षा के पवित्र संबंध को कलुषित कर देते हैं। गुरु का स्थान तभी ऊंचा है जब वो निष्पक्ष हो, न्यायप्रिय हो और शिष्य के उत्थान को अपने अहम से ऊपर रखे। परशुराम का यह प्रसंग हमें स्मरण कराता है कि गुरु का धर्म कठोर हो सकता है पर उसका हृदय करुणामय होना चाहिए। जहां व्रत और प्रेम साथ चले वहीं सच्चा शिक्षण जन्म लेता है।
2: श्रोताओं, यही से द्वितीय सर्ग के अंतिम चरण की महाकाव्यात्मक भूमिका प्रकट होती है। श्राप और आशीष, त्याग और करुणा दोनों मिलकर इस क्षण को दिव्य वियोग में रूपांतरित कर देते हैं। गुरु शिष्य को दूर भेजते हैं क्योंकि कभी कभी प्रेम का परम रूप विरह ही होता है। आइए अब बढ़ें उस अंतिम प्रसंग की ओर, जहां काल का रथ अविराम है और चलना ही नियति। आइए अब हम बढ़ते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के अंतिम भाग की ओर, भाग 13, जहां करुणा महाकाव्य बनती है और वियोग इतिहास रचता है। परशुराम कहते हैं,
1: हाँ, बुद्धि कहती थी कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा। जाने क्यों जय, अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप, पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए, पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए।
2: इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वही कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान दिया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूली लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरे श्रृंगार से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, जैसे चांद चलता हो गगन में। यह गुरु का आंतरिक द्वंद है, धर्म और स्नेह का संघर्ष। बाहर कठोरता, भीतर करुणा की गंगा प्रवाहित हो रही है। यह मौन विदाई है, शब्द समाप्त हो गए हैं, केवल अश्रु संवाद कर रहे हैं। यह केवल गुरु शिष्य का वियोग नहीं, यह धर्म और प्रेम के बीच की मौन अग्नि परीक्षा है। परशुराम की बुद्धि अडिग है, पर हृदय भीग चुका है। कर्ण की साधना टूट गई, किंतु उसकी श्रद्धा नहीं टूटी। वह चरण धूलि लेकर चला है, मानो अपने जीवन की शेष ज्योति उसी भक्ति से प्रज्वलित करने लगा हो।
1: श्रोताओं, कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस प्रसंग को केवल करुण घटना नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे मनुष्य के भीतर चलने वाले सनातन संघर्ष, कर्तव्य और करुणा, व्रत और वात्सल्य, न्याय और प्रेम का महाभाव बना दिया। यही कारण है कि यह प्रसंग काल की सीमाओं से परे आज भी उतना ही स्पंदित है जितना तब था, क्योंकि मनुष्य का हृदय आज भी उसी द्वंद्व से गुजरता है। श्रोताओं, इसी करुण दीप्त क्षण के साथ द्वितीय सर्ग को प्रणाम। काव्य गुंजन के आगामी अंक में हम इस महाकाव्य यात्रा के अगले चरण की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां नियति का रथ और भी वेग से आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
2: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
1: और मैं संदीप शर्मा,
5: और मैं दीपक नेमा।
2: श्रोताओं, इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं पर विराम लेती है। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें, गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें, तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।